मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शकसों 1948 के श्रावण मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 39 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच टीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
3: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीए ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। एनटीए ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार

0: देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1,242 किलोहर्ट्ज। OTT प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में मूंग की खेती विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम मूंग की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी खेती के लिए हल्की दोमट या दोमट में मिट्टी उत्तम होती है। खेत में अतिरिक्त पानी नहीं लगना चाहिए और यदि लग जाए तो उसे तुरंत निकालना चाहिए। खेत तैयार करने के लिए 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2 जुताई देसी हल से कर लेते हैं। अब जहां तक बात है बीज एवं बुआई की, तो मूंग की अच्छी उपज लेने के लिए इसकी उन्नतशील प्रजातियों को बोना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी जो उन्नतशील प्रजातियाँ हैं उनमें प्रमुख हैं पंत मूंग 2, नरेंद्र मूंग 1, PDM 11, PDM 54, मालवी जनप्रिया और मालवी जागृति। पंत मूंग 2 की पैदावार 6 से 11 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। नरेंद्र मूंग 1 की जो पैदावार है वो 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और मालवी जनप्रिया एवं मालवी जागृति की पैदावार 12 से 15 कुंटल है। तो इनमें से जो भी प्रजातियां मिल जाए लेकर के बुआई करें। इन प्रजातियों की बुआई तैयार खेत में ही करनी चाहिए और खेत को तैयार करने के लिए उर्वरकों का प्रयोग अति आवश्यक है। मूंग की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में 15 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 15 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय कुंडों में दे देना चाहिए, छींट कर नहीं। अगर उर्वरकों को छिटक देते हैं तो इन उर्वरकों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। बुआई के 2 तरीके हैं, एक तो छिटकवा और दूसरा हल के पीछे कुंडों में। छिटकवा तरीका सही नहीं होता है, बुआई कुंडों में ही करनी चाहिए। एक कुंड से दूसरे कुंड की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर रखते हैं। कुंड में बुआई करने से एक साथ 2 काम हो जाते हैं, एक तो उर्वरकों का सही ढंग से प्रयोग होता है तथा दूसरे बीज की सही ढंग से बुआई हो जाती है। 1 हेक्टेयर मूंग की बुआई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बोने से पहले बीज को शोधित अवश्य करना चाहिए। बीज को 2 बार शोधित किया जाता है, एक बार थीरम दवा से और फिर विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से। थीरम एक कवकनाशी रसायन है। इसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त होती है। बीज का जमाव अच्छी तरह हो इसके लिए आवश्यक है कि राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित किया जाए। यदि 10 किलोग्राम बीज है तो 1 पैकेट जो कि 250 ग्राम का होता है इसकी आवश्यकता होती है। इससे उपचारित करने के लिए

0: पहले आधा लीटर पानी की आवश्यकता होती है, उसमें 50 ग्राम गुड़ को घोल लेते हैं। फिर राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट इसमें मिला देते हैं। फिर इसे 10 किलोग्राम बीज पर फैलाकर हल्के हाथों से मिलाते हैं। फिर 10 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद इसकी बुआई करनी चाहिए। तेज़ धूप में बुआई करने पर कल्चर के जीवाणु मर सकते हैं। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए अगर रसायनों का प्रयोग करना चाहते हैं तो फ्लूक्लोरालिन दवा प्रयोग करते हैं। फ्लूक्लोरालिन 45 ईसी की 2 लीटर मात्रा को आवश्यक पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पहले खेत में छिड़काव करना चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन बाद एक निकाई गुड़ाई भी कर देना चाहिए, इससे खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर मूंग की खेती करनी चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में मूंग की खेती विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना।

प्रभु श्री राम हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति में तल्लीन भक्त अपने आराध्य की स्तुति में तल्लीन रहता है और उनके मनोहारी और तेजोमय स्वरूप की स्तुति करता रहता है। आइए स्तुति करें अपने आराध्य की, प्रभु श्री राम की।

राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की छवि अत्यंत मनोहारी है, सुमधुर है। भक्त राधा कृष्ण जी की इस मनोहारी छवि की वंदना करता है, उनके स्वरूप का गुणगान करते हुए भक्तिमय हो जाता है।

प्रभु के नामस्मरण में एक अजीब शक्ति है, एक आकर्षण है। नामस्मरण मात्र से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु के मनोहारे स्वरूप का ध्यान कर भक्त उनकी आराधना में तल्लीन होकर उनका नाम जपने लग जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना। आज इस कार्यक्रम में आपने हरिओम शरण, लता मंगेशकर, शेखर सेन, अपर्णा मयस्कर और श्री गोपाल सिन्हा के स्वरों में भक्ति रचनाएं सुनी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु। विचार बिंदु कार्यक्रम में आज की कड़ी का शीर्षक है भाग्य भाव है कर्म तत्व।
1: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन जी के मन में यह जिज्ञासा होने पर कि भाग्य क्या है और कर्म क्या है, तथा भाग्य से कर्म संचालित होता है कि कर्म से यह भाग्य संचालित होता है, ऐसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह परम प्रभु योगेश्वर परमेश्वर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उनसे कहा, हे प्रभु, यह भाग्य क्या है? योगेश्वर बोले, पार्थ, भाग्य जैसी चीज कोई है ही नहीं। संपूर्ण कर्म ही कर्म है। जो पूर्व के कर्म हैं वही भाग्य के रूप में कहे जाते हैं। पार्थ, यह पूर्व के जन्म इस जन्म में भी पूर्व के कर्म हैं और पूर्व जन्म के भी पूर्व कर्म हैं जो संचित हैं अपने अच्छाइयों में और अपनी बुराइयों में। पार्थ, जिन संचित कर्मों को तू भाग्य बोलता है वह दुर्भाग्य भी होते हैं और सौभाग्य भी होते हैं। जिस संचित संस्कार में कर्म में वर्ण संकरता होती है, दूषित होता है वह कर्म, उसके परिणाम उसके फल भी दूषित होते हैं। पार्थ, तू ऐसा समझ कि जिस तरह से लेखनी के द्वारा पुस्तिका पर शब्द ब्रह्म को उतारा जाता है, उस शब्द ब्रह्म की रचना भाव ब्रह्म में मन में हो चुकी होती है। मन में रचना भाव ब्रह्म की हो जाने के बाद उस ब्रह्म को तत्व ब्रह्म में उतारने पर उसके प्राकट्य में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि हे पार्थ, यह आत्मा जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, यह समय रूपी चादर पर ब्रह्म के बीज बोती है, उसका स्वरूप कैसे है पहले तुझे इसे समझना होगा। पार्थ, मैं तुझे बताता हूं, मैं आत्मा, मैंने पहले चेतन को अंगीकार किया, फिर चेतन से मन बुद्धि अहंकार को स्वीकार किया। जब मेरे पास चार तत्व हो गए तो मैं आत्मा, मैंने पंचभूत गोचर तत्व माया जगत की रचना की। तू इससे समझ कि मन बुद्धि अहंकार और चेतना में जिन भावों का उदय हो गया वे ही भाव भाग्य बन करके पंच महाभूत मायावी संसार में गोचर होने के लिए प्रस्तुत हुए हैं।

0: भगवान बोले, तू पार्थ, तू भाग के चक्कर में मत पड़। तू यदि वेदोक्त कर्म करेगा, तू यदि निष्काम कर्म करेगा, तो भाग्य तेरे कदम चूमेंगे। तू ऐसा कर पार्थ कि भाग्य को बांचने वाला तो साधक होता है, लेकिन भाग्य को बदल देने वाला जिसे बोलते हैं वह कर्म साधक होता है। पार्थ, तू कर्म की साधना कर, वो कर्म जिसे सहज कर्म, स्वधर्मज कर्म और नियत कर्म कहते हैं। पार्थ, वही नियत कर्म जिसे मैंने विकर्म के स्वरूप से प्रतिपादित किया है। क्यों? क्योंकि किम कर्मम किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत ज्ञात्वा मोक्षसे सुभा।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में आज की कड़ी का शीर्षक था भाग्य भाव है कर्म तत्व। आलेख एवं स्वर श्री विष्णुकांत मिश्र का था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रोफेसर टीपी चतुर्वेदी इस समय सीनियर प्रोफेसर हूँ फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज दंत संकाय BHU वाराणसी में। और आज मुझे आपसे चर्चा करनी है कि दांतों का प्रत्यारोपण के बारे में, कि ये कैसे होता है, क्या होता है और कब जरूरत इसकी पड़ती है। दांतों का प्रत्यारोपण, या इसको हम लोग ज़्यादातर बड़े कॉमन यूज में करते हैं डेंटल इम्प्लांट। देख, दांत दो प्रकार के होते हैं। एक दूध वाले दांत होते हैं, बच्चों में शुरू के 6 महीने में आते हैं और एक 6 साल तक रहते हैं। सारे दांत 3 साल तक आ जाते हैं और 6 साल तक रहते हैं। 6 साल के बाद असली दांत शुरू होते हैं निकलना और 12 साल तक निकलते रहते हैं, और अंतिम अक्कलदाड़ जो 18 साल में आती है। तो दो प्रकार के दांत होते हैं, दूध वाले दांत तो एक असली दांत। और दांतों की बीमारियां ऐसी कुछ होती हैं जैसे पायरिया हुआ या डेंटल केरीज, दांतों का सड़ना हुआ, उससे दांत सुरक्षित रहते नहीं है। कभी कभी क्या होता है, दांत को निकालना पड़ता है। और जब दांत को निकालना पड़ता है, और निकालते क्यों है कि जबकि उनको पायरिया हो जाती है ऐसे में। और पायरिया के क्या लक्षण है, जैसा कि आप जानते हैं पायरिया के लक्षण है मुंह से बदबू आना, या तो खून निकलना दांतों मसूड़ों से, और या तो दांत हिलने लगता है, और इसमें दर्द थोड़ा देर से होता है, इसलिए पायरिया का रोग लोगों को बहुत पता नहीं लग पाता है। और इसके अलावा दांत की सड़न होती है, आजकल जो हम लोगों का खान पान हो गया है उसकी वजह से दांत की सड़न होती रहती है। और ये सड़न जो है, कुछ भी हम लोग खाते हैं तो कोई कोई दांतों के में चिपक जाते हैं और उससे सड़न हो, या कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिससे दांत खराब होते हैं, जैसे ऐसी चीजें खाना जो कि दांतों और मुंह के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसे में कभी कभी क्या होता है, हम लोग कोशिश करते हैं जो दंत चिकित्सक कि हम लोग दांत को बचाएं, दांत को सुरक्षित करें, मुंह का स्वास्थ्य रखें, लेकिन कभी कभी दांत को निकालना पड़ता है। और दांत जब निकालते हैं तो दांत एक कोई खराब हो गया जो कि बचने लायक नहीं है, ऐसे में दांत निकालते हैं। दांत एक भी निकल सकता है, दांत कई भी निकल सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग एक डेंटल इम्प्लांट, नई विधा आई है दांत को लगाने के लिए, और उसको इम्प्लांट को मतलब मेटल का है, उसी को प्रत्यारोपण कहते हैं। तो मेटल जो है हम लोग मसूड़ों और हड्डियों में इंसर्ट करते हैं और उसके ऊपर फिर हम लोग दांत लगाते हैं और उससे हम लोगों का चबाना काम होता है। अब ये पूछा जाता है कि क्या यही विधि है या कोई और भी विधि है दांत को लगाने का। देखिए, दांत जब निकले तो एक दांत हो या दो दांत हो या कई दांत निकल गए हों मुंह में, और ज्यादातर अगर उम्र का इफेक्ट है तो बाद में होता है 50-60 साल के बाद कई दांत भी निकालने पड़ सकते हैं। ऐसे में होता क्या है कि जब दांत निकल गए तो उसको 3 तरह से हम लोग लगाते हैं। अगर अगल बगल दांत हो तो उसको हम लोग फिक्स ब्रिज करके लगा देते हैं, मतलब 2 दांतों के सपोर्ट में तीसरा दांत हम लोग लगा देते हैं अगर बीच वाला दांत अब्सेंट है। अगर 3-4 दांत अब्सेंट है लेकिन अगल बगल के उसके दांत तो ठीक है, तो उसको एक ब्रिज बना के एक खंभे की तरह उपयोग करके और फिर उसको लगा देते हैं, तो वो भी फिक्स दांत कहलाता है, फिक्स दांत लगा देते हैं। या दांत 1-2 दांत से ज्यादा है तो हम लोग निकालने लगाने वाला दांत लगाते हैं और वो भी एक स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर दांत फिक्स करना मेटल के, आजकल जो लेटेस्ट आ गया है कि मेटल का दांतों को प्रत्यारोपण करते हैं उसको, कि डेंटल इम्प्लांट है, और डेंटल इम्प्लांट जो है लगा का होता है, मेटल का होता है, टाइटेनियम इम्प्लांट, टाइटेनियम मटेरियल होता है। टाइटेनियम मटेरियल की खासियत ये होती है कि ये हड्डी जैसा हल्का होता है, हड्डी मुंह में कोई रिएक्शन नहीं करता है और मजबूत भी होता है। ऐसे टाइटेनियम इम्प्लांट से हम लोग दांतों को इंसर्ट करके लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन होता है कि क्या सभी में लगाया जा सकता है या नहीं, इसके लिए हम लोग कुछ जांच वगैरह कराते हैं और ऐसे लोगों को जिसमें हम लोग दांत लगा सकें, तो जिसमें कोई बहुत बीमारी ना हो या डायबिटीज ना हो, जैसे डायबिटीज बड़ा सीवियर होती है तो दिक्कत होती है, या तो और कोई बीमारी ना हो, तभी हम लोग ये कोशिश करके लगाते हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज आपने दांतों का प्रत्यारोपण कब और कैसे विषय पर डॉक्टर ठाकुर प्रसाद चतुर्वेदी से ये जानकारी सुनी। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों पश्चात यानी सुबह 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ।

श्री राम के सीता के साथ वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण को अपने तन मन की सुधि जाती रही। वे व्याकुल होकर अग्रज के चरणों में आ गिरे। उदास मुखमंडल, कांपता शरीर, आंखों में उमड़ते आंसुओं ने निःशब्द उनकी पीड़ा प्रकट कर दी। श्री राम ने उन्हें धीरज बंधाया। प्रेमवश अधीर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और स्वामी की सीख मानकर आचरण करते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। हे भाई, भरत और शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं हैं। वृद्ध महाराज मेरे वन प्रवास के कारण बेसुध हैं, अतः तुम्हें यहीं रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले गया तो अयोध्या नगरी एकदम अनाथ हो जाएगी। किंतु आसन्न वियोग की पीड़ा से अधीर लक्ष्मण पर श्री राम के शीतल वचनों का वही प्रभाव हुआ जो पाले का कमल पर होता है। लक्ष्मण की ये वेदना है कि वे दास हैं, और यदि स्वामी उनका त्याग भी कर दें तो वे क्या कर सकते हैं। सच तो ये है कि वे श्री राम के स्नेह से सिंचित मात्र एक शिशु हैं, जो श्री राम के अतिरिक्त गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानते। धर्म और नीति संबंधी उपदेश की आवश्यकता तो उसे होती है जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य और सद्गति की अभिलाषा हो। जो मन, वचन, कर्म से श्री राम के चरणों में प्रेम रखता हो, क्या उसका त्याग किया जा सकता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर और ए हरिहरन। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। बीटिंग वेव 241.54 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम विवरण में आइए सुने आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा आज रात 10 बजे। इस सप्ताह संसद में आप सुनेंगे आज रात 8 बजे। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

साइकिल के बारे में रोचक जानकारी सुनेंगे, साथ ही बच्चे सुनेंगे बाल गीत। अंगनिया कार्यक्रम में 1:15 पर ग्रामीण बहनें सुनेंगी लघु एवं कुटीर उद्योग घर से व्यवसाय तक विषय पर प्रिय सिंह से बातचीत, साथ ही बहनें सुनेंगी गीत संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 12:45 पर और 7:31 पर आप सुनेंगे उपशास्त्रीय गायन, कलाकार होंगे अशोक कुमार झा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 12:30 पर कलाकार होंगी ममता शर्मा। हेलो फोन इन फरमाइश सुनिए 11:00 प्रस्तुति अरुण पांडे की होगी। गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम कहकशा सुनिए 12:00। अंजुमन आप सुनेंगे 9:30 पर। 7:45 पर आप सुनेंगे रसरंग। फिल्म संगीत आप सुनेंगे आज 7:00। 6:10 पर गीतांजलि आप सुनेंगे 2:30 पर। झंकार आप सुनेंगे 10:00। मधुरिमा आप सुनते हैं 8:45 पर। और गुड मॉर्निंग बनारस आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर बाद 7:00। श्रोताओं हम आपको याद दिलाएं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 12:45 पर और 7:31 पर आप सुनेंगे उपशास्त्रीय गायन, कलाकार होंगे अशोक कुमार झा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे आज 10:00। इस सप्ताह संसद में आप सुनेंगे आज 8:00। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। स्वरबेला कार्यक्रम में आज 7:31 पर काव्यपाठ प्रस्तुत करेंगे विकास कुमार पांडे। कृषि जगत कार्यक्रम आज 6:30 पर चारा तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें विषय पर डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह से दिनेश कुमार सिंह की बातचीत प्रसारित की जाएगी। साथ ही किसान भाई सुनेंगे सरोज वर्मा का गाय लोकगीत। इनके गाय लोकगीत आप 1:45 पर और 9:50 पर भी सुन सकते हैं। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। बीटिंग वेव 241.54 यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

स्वर बिला कार्यक्रम में आज शाम 7:31 पर काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे विकास कुमार पांडे। कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर चारा तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें विषय पर डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह से दिनेश कुमार सिंह की बातचीत प्रसारित की जाएगी। साथ ही किसान भाई सुनेंगे सरोज वर्मा का गाय लोकगीत। इनके गाय लोकगीत आप दिन 1:45 पर और समय 9:50 पर भी सुन सकते हैं। युववाणी कार्यक्रम में आज शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात। फोन इन कार्यक्रम यूथ जंक्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। नन्ही दुनिया कार्यक्रम होगा शाम 5:00। इसमें बच्चे

0: याचनाः प्रशासनेन धैर्येण गंभीरतया च श्रुताः। तेनोक्तं यत् प्रतिनिधिमण्डलेन त्रयः प्रमुखाः प्रस्तावाः प्रस्तुताः। प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगस्य निवारणाय कतिपयाः परिष्कारोपायाश्च प्रतिपादिताः। श्रीनड्डा अवदत् यत् प्रशासनं प्रतिनिधिमण्डलेन सह अद्य पुनरेकवारं विचारविमर्शं करिष्यति। नीट प्रश्नपत्रस्य गोप्यता भंग प्रकरणमाधृत्य छात्राणां विरोध प्रदर्शनानि च अधिकृत्य पञ्चमदिवसे अपि निरन्तरं जातेन कोलाहलेन संसदः उभयोः सदनयोः लोकसभा राज्यसभयोः कार्याचरणं सोमवासरपर्यन्तं स्थगितम्। प्रशासनेन पुनः पुनः आश्वासनं प्रदत्तं यत् तत् नीट प्रकरणे सार्थक चर्चायै सज्जमस्ति। तथापि विपक्षेण केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणः त्यागपत्रस्य आग्रहं कुर्वन् स्वविरोधं निरन्तरं प्रदर्शितम्। आर्थिक प्रकरणानां मन्त्रिमण्डलीय समित्या कर्णाटकान्ध्र प्रदेशयोः बल्लारी गुण्टकल रेलखण्डस्य तृतीय चतुर्थ रेलमार्गयोः निर्माणाय आहत्य चतुष्षष्ट्यधिक द्वादशशतकोटि रूप्यकाणाम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनया परियोजनया आन्ध्रप्रदेश कर्णाटकयोः मध्ये रेलसम्पर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस है, 52 माइनर ब्रिजेस है और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है।
0: तेन एतदपि सूचितं यत् देशे त्रयाणां रसायनोद्योगिक संकुलानां स्थापनाय भव्य इति भारतोद्योगिक विकास योजना रसायन इत्येषा योजना मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदिता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः रूमानिया देशस्य बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज इत्यनेन विश्वविद्यालयेन डॉक्टर ऑनरीस कौसा इति मानद विद्या वाचस्पति उपाधिना सम्मानिता। अयं सम्मानः तस्याः लोकसेवायां शिक्षाक्षेत्रे सामाजिक समावेशे च विशिष्ट योगदानस्य भारत रोमानिया देशयोः सम्बन्ध सुदृढीकरणे च मान्यता स्वरूपः प्रदत्तः। सम्मानम् अंगीकुर्वती राष्ट्रपतिः एतत् सम्माननं भारतस्य 1.4 अर्बुदजनेभ्यः समर्पितवती। इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

नमस्कार बनारस, सुबह के 7 बज चुके हैं और आपके रेडियो सेट पर गूंज रहा है आपका अपना पसंदीदा शो गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट शिखा। आज तारीख है 25 जुलाई, खूबसूरत शनिवार की सुबह। दोस्तों, शनिवार के मायने आपके लिए क्या है? कुछ लोगों के लिए ये वीकेंड का आराम, तो कुछ के लिए अपने सपनों की तरफ एक और कदम। कबीरदास जी ने इसी मिट्टी में रहकर कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो बस आज अपनी सोच को थोड़ा और चंगा करते हैं, थोड़ी और पॉजिटिविटी भरते हैं और इस नए दिन का स्वागत एक नई उम्मीद के साथ करते हैं। चाहे जो भी रुकावट हो, याद रखिएगा आपकी ताकत आपकी सोच में है। काशी की मिट्टी का यही तो जादू है दोस्तों। कबीर जी ने सिखाया कि अगर आपकी नीयत साफ है, आपका मन शुद्ध है और आप अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको सुकून ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो। चलिए आज हम ये संकल्प लेते हैं, ये वादा करते हैं, हम अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, अपने मन को चंगा रखेंगे और इस दिन को अपनी

जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन बनाएंगे। तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप हैं इस दुनिया के सबसे जीवंत शहर बनारस में। चलिए अब बात करते हैं हमारी अलहर मस्त और जिंदा दिल काशी की सुबह की। आज 25 जुलाई की सुबह बनारस का मौसम सुहाना बना हुआ है। आसमान में बादलों की आवाजाही थोड़ी बहुत बनी हुई है और जो लोग इस सुहाने मौसम में इस समय घाट पर बैठकर चाय का आनंद ले रहे हैं ना भाई, उनके तो क्या ही कहने। लेकिन हाँ, रिमझिम फुहारों की आशंका बनी हुई है, तो घर से निकलते समय यदि बारिश में भीगने का मन नहीं है ना, तो छाता या रेनकोट जरूर रख लीजिएगा। अब आते हैं आपकी राहों पर, यानी कि ट्रैफिक का हाल। शनिवार की सुबह है तो फिलहाल गोदौलिया, लंका और कैंट स्टेशन की तरफ रास्ते काफी खुले और साफ हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी, इसीलिए कुछ प्रमुख चौराहों पर आपको थोड़ा धीमा होना पड़ सकता है। हमारी सलाह तो यही है कि गाड़ी संभाल के चलाइए, अपनी लेन में रहिए और बेकार में हॉर्न मत बजाइए। आखिर हमारा बनारस अपनी शांति और सुकून के लिए भी तो जाना जाता है, और इसे बनाकर रखना हमारी ही तो जिम्मेदारी है ना? आज गुड मॉर्निंग बनारस में हम एक ऐसी कहानी, एक ऐसी उड़ान के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको गर्व से भर देगी। हम अक्सर कहते हैं ना कि आसमान की कोई सीमा नहीं होती, और इसी बात को सच कर दिखाया है हमारे देश की एक बेहद शानदार स्पेस टेक कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने। जी हाँ, भारत की वो कंपनी जिसने अंतरिक्ष की गहराइयों में हमारे तिरंगे को और ऊंचा लहराया है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करने वाली ये कंपनी हमें सिखाती है कि अगर आपके हौसलों में जान है तो आप जमीन से उठकर सीधे सितारों को छू सकते हैं। आज हम स्काई रूट की इस अद्भुत सफलता, उनकी चुनौतियों और उनकी प्रेरणादायक यात्रा के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन बनारस की सुबह है एक बेहद खूबसूरत और रूहानी गाने के बिना, तो आइए आपको ले चलते हैं सुरों की दुनिया में और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

वेलकम बैक बनारस। सुबह का ये समय सिर्फ जागने का नहीं बल्कि अपने सपनों को सच करने के लिए जी जान से जुट जाने का समय है। और जब सपनों की बात आती है तो आज हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण है जिसने ना सिर्फ पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत से हैरान कर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की उस युवा शक्ति की जिसने अंतरिक्ष की गहराइयों में भारत का नाम हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्काई रूट एयरोस्पेस की। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत के युवाओं ने किसी चुनौती को स्वीकार किया है, उन्होंने असंभव को भी संभव बनाया है। 18 नवंबर 2022 का वो दिन कोई नहीं भूल सकता जब भारत का पहला प्राइवेट सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ था। लेकिन ये सफलता केवल एक बार की कहानी नहीं थी। इस युवा टीम ने अपनी कड़ी मेहनत को जारी रखा और हाल ही में 18 जुलाई 2026 को स्काई रूट एयरस्पेस ने अपने पहले पूर्ण व्यावसायिक ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को भी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर इतिहास दोहरा दिया है। आज भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो चुका है जिसके पास अपने निजी उपग्रह लॉन्च करने की अचूक क्षमता है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, इस जांबाज को टीम की औसत उम्र मात्र 28 वर्ष है। जी हाँ, मात्र 28 वर्ष। दोस्तों, इस अविश्वसनीय सफलता के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो आज देश के हर उस छात्र, हर उस युवा को सुननी चाहिए जो किसी परीक्षा में कम नंबर आने पर निराश हो जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ स्काई रूट के को फाउंडर और CEO पवन कुमार चंदाना की। आज जो इंसान भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रॉकेट फैक्ट्री का मालिक है, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो स्कूल के दिनों में एक बेहद सामान्य छात्र थे। पवन खुद बताते हैं कि 8वीं कक्षा तक पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। यहाँ तक कि हाई स्कूल की एक परीक्षा में उनके मैथ्स में 100 में से मात्र 51 नंबर आए थे और वे एक दूसरे विषय में फेल भी हो गए थे। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गणित में मुश्किल से पास होने वाला ये लड़का एक दिन जटिल ऑर्बिटल मैकेनिक्स और रॉकेट प्रोपल्शन का काम करेगा। लेकिन उनके पिता ने उन पर अटूट विश्वास बनाए रखा। पिता के उसी भरोसे और खुद की कड़ी मेहनत के दम पर पवन ने पहले ही प्रयास में देश की सबसे कठिन परीक्षा IIT को क्रैक किया। उन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, इसरो में वैज्ञानिक बने और फिर देश के लिए खुद की स्पेस कंपनी खड़ी कर दी। पवन चंदाना ने हाल ही में एक बेहद भावुक बात साझा की। उन्होंने कहा कि जब विक्रम 1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचा तो उन्होंने सबसे पहला फोन अपने पिता को किया। फोन पर उनके पिता सिर्फ रोते रहे और वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। लेकिन पवन कहते हैं कि मैं उनके आंसुओं में हर वो बात समझ गया जो वो कहना चाहते थे। ये सफलता इस बात का प्रमाण है कि स्कूल का एक रिपोर्ट कार्ड कभी भी आपके जीवन और आपकी क्षमता का फैसला नहीं कर सकता। पवन चंदाना और नागा भरत डाका ने साल 2018 में जब स्काई रूट की शुरुआत की तो उन्होंने देश की युवा प्रतिभा पर दांव लगाया। इस कंपनी में शामिल 95% इंजीनियर ऐसे थे जो बिल्कुल फ्रेशर्स थे, यानी कि जिन्होंने पहली बार कोई काम किया हो, जिन्हें रॉकेट साइंस का कोई पुराना व्यावहारिक अनुभव नहीं था। इन युवाओं ने दिखा दिया कि अगर इरादे फौलादी हो तो अत्याधुनिक 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट को भी देश के स्थानीय सप्लायर्स की मदद से 100% मेड इन इंडिया बनाया जा सकता है। तभी तो स्वयं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस युवा टीम की सराहना करते हुए कहा कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है और हमारे युवाओं के पास वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता।

करता है। तो दोस्तों और विशेषकर मेरे युवा साथियों, आज स्काई रूट एरोस्पेस की ये कहानी और पवन कुमार चंदाना का ये सफर हमें यही सिखाता है कि आपकी उम्र, आपके कम नंबर या आपके अतीत की असफलताएं कभी भी आपके भविष्य की सीमाओं को नहीं तय कर सकती। यदि आपके पास एक विजन है, अपने काम के प्रति ईमानदारी है और कुछ नया कर गुजरने का साहस है, तो आप भी अंतरिक्ष जितनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो उठिए, अपने सपनों को पहचानिए और पूरे हौसले के साथ अपनी उड़ान शुरू कीजिए। हमारे युवा भारत के पास एक विजन है, नई उड़ान भरने का एक संकल्प है और उसे पूरा करने का साहस है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं शहर बनारस का हालचाल। वाराणसी में गंगा में 5 इलेक्ट्रिक नावों का संचालन शुरू हो चुका है। इसका लोकार्पण नमो घाट पर मेयर ने किया। नाविकों ने इस पहल के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया। वीडीओ उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि प्रथम चरण में 20 नावों को इलेक्ट्रिक प्रणाली में परिवर्तित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पायलट परियोजना की सफलता के आधार पर इसे आगामी समय में व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा। अतिथियों ने इलेक्ट्रिक नाव से नमो घाट से भदैनी घाट तक भ्रमण किया। इस अवसर पर गेल के महाप्रबंधक भी उपस्थित रहे। काशी में गंगा और वरुणा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा में पानी प्रति घंटे 10 मिलीमीटर और वरुणा में 30 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, यानी वरुणा का जलस्तर गंगा की तुलना में 3 गुना तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बृहस्पतिवार को गंगा का जलस्तर 61.02 मीटर और वरुणा का 68.02 मीटर दर्ज किया गया। जलस्तर में हो रही इस बढ़ोतरी के कारण काशी के घाटों की सीढ़ियों तक पानी पहुंचने लगा है। घाट किनारे स्थित कई छोटे मंदिर और विग्रह जलमग्न हो चुके हैं, जिनमें शीतला घाट के नीचे स्थित मंदिर भी शामिल है। इसके साथ ही नदी में बड़ी मात्रा में जलकुंभी भी दिखाई दे रही है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल पुलिस और NDRF की ने सक्रियता बढ़ा दी है। नाव संचालन और गंगा में स्नान करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उधर वरुणा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वरुणा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से कुछ ही दूरी पर पहुंच गया है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लोगों को भी लगातार सतर्क किया जा रहा है। तो बनारस, यदि आप भी गंगा जी के घाटों पर जाना चाहते हैं तो सुरक्षा का अपना जरूर ख्याल रखिए और गंगा मैया की लहरों से इस समय यदि दूर ही रहिए तो ज्यादा अच्छा है। वाराणसी में एयर शो की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस कार्यक्रम में 20 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। वहीं अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं। काशी में प्रस्तावित एयर शो को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एयरफोर्स और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को सर्किट हाउस सभागार में तीसरी बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार एयर शो का आयोजन 3 दिन तक होगा। 23 से 25 अक्टूबर तक होने वाले इस एयर शो के 20 लाख से अधिक लोगों के साक्षी बनने की संभावना है। अंतिम दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं। एयर शो का अभ्यास 20 से 22 अक्टूबर तक होगा। तो ये था शहर बनारस का हालचाल। आइए अब जान लेते हैं कि 25 जुलाई का इतिहास क्या है। भारत के राजनीतिक इतिहास में 25 जुलाई एक महत्वपूर्ण तिथि है। 1977 से नीलम संजीव रेड्डी से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक सभी राष्ट्रपतियों ने इसी दिन शपथ ली है।
ये सिलसिला 1977 से शुरू हुआ और तब से ये भारतीय राजनीति में एक अनूठी परंपरा बन गया और 1813 में कोलकाता की हुगली नदी पर भारत की पहली नौका दौड़ शुरू हुई थी आज के ही दिन। 1941 में अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर उनके अहिंसा आंदोलन की तारीफ की थी आज ही के दिन, यानी कि 25 जुलाई के दिन।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में यानी 7:20 से होंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सब।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कहा, अफवाह फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध की जाए कठोर कार्रवाई। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। वहीं इस मामले पर संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विधेयक के पारित होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के

0: जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
1: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इससे पहले गुरुवार रात प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। इस बीच सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में अहम कदम है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि वह परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम में बदलने के लिए क्या कदम उठा रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
2: श्री नड्डा ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगें रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। दोनों केंद्रीय मंत्री कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक बार फिर चर्चा करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा युवाओं के हितों को ध्यान में रखा है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में समय रहते कार्रवाई के साथ दोबारा परीक्षा भी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने के बजाय सदन में चर्चा करनी चाहिए।
4: युवा हमारा देश का भविष्य और युवा किसी राजनीतिक दल का नहीं है बल्कि देश का एसेट और प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं पे फोकस किया है और हमने देखे होंगे कि नीट परीक्षा के लीक होने के बाद सरकार उस पर सख्त से कार्रवाई भी की। हम विपक्ष से भी कह रहे हैं कि आप आओ सदन में बात करो कि युवाओं के लिए आगे कोई दिक्कत रहा है वैसा जो आपके पास सुझाव हो दें ताकि उसका कानून बनावे नया ताकि आगे से पेपर लीक आओ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी कांवड़ यात्रा और अन्य पर्वों को लेकर कल देर शाम उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा में प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौहार्द बिगाड़ने, अफवाह फैलाने, मिलावट, ओवररेटिंग, अव्यवस्था या अराजकता करने का प्रयास करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और मदिरा की दुकानें बंद रखी जाएं। इसके साथ ही प्रत्येक दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा प्रदेश के किसी एक हिस्से तक सीमित आयोजन नहीं रह गई है। ऐसे में हर जनपद में व्यवस्थाओं पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा से पहले यात्रा मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर लेने के भी निर्देश दिए। इस बीच प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आगामी सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कई विभागों और जनता के बीच समन्वय बनाया जा रहा है।
5: कांवड़ यात्रा को लेके जो भी से जुड़े हुए चाहे वो सरकारी विभाग हों या फिर आम जन हों या जो भी समितियां, उनके साथ एक संवाद स्थापित किया गया है। मुख्य जो घाट हैं जहां से गंगा जल लेके लोग शिवालयों में जाते हैं, वहां का निरीक्षण किया गया, रूट का निरीक्षण किया गया।

0: घाटों पर जहां जहां पे जल पुलिस की सहयोग लेनी है, जल पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस तरह से श्रद्धालुओं को कहीं कोई कठिनाई न हो, इसके लिए हमारे पूरे अधिकारी पूरे अलर्ट मोड में हैं।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के दौरे पर रहेंगे। वह फतेहाबाद रोड स्थित टाटा मैदान में आयोजित जनसभा के दौरान 342 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित गुरसराय नगर पालिका परिषद और गरौठा नगर पंचायत संयुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल, बिजली और आधारभूत ढांचे के विकास पर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। सहारनपुर के गंगोह थाना अंतर्गत ग्राम नयाकुंडा में एक पटाखा फैक्ट्री में कल शाम विस्फोट हो जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कराया। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अयोध्या और बलिया में घाघरा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। बाढ़ की आशंका के दृष्टिगत सभी संवेदनशील जिलों में वहां का प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कहा, अफवाह फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध की जाए कठोर कार्रवाई। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उपशास्त्रीय गायन। कलाकार हैं अशोक कुमार झा। आइए अशोक कुमार झा से पहले सुने राग मिश्र भैरवी में ये ठुमरी। आपके साथ तबला संगति पंडित नंद किशोर मिश्र की है।

राग मिश्र भैरवी में गाई इस ठुमरी के बाद अशोक कुमार झा से आइए सुने राग मिश्र भैरवी में ये दादरा। तबला संगति पंडित नंद किशोर मिश्रा की है।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आपने अशोक कुमार झा की गायी राग मिश्र भैरवी में ठुमरी और राग मिश्र भैरवी में ये दादरा सुना। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाएं, अशोक कुमार झा का उपशास्त्रीय गायन आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन 12:45 पर भी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: हर खर्च के पैसे 2000 जी,
2: ये राशन के 15000, सब्जियों के 2000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
7: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हथकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
8: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
9: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
6: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
10: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि में सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच चार सुझाव हुए।
6: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
11: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखे ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंत्री हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
12: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
13: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिशेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compass. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: रिसेंट इंक्रीज इन फ्लोज,
4: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
3: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डेलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोश्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें करगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। जंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की

0: सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी सीजेपी तस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट अप्रूव्स एंटी पेपर लीक्स ड्राफ्ट बिल फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। लेजिस्लेशन लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थैंक्स यंगस्टर्स फॉर द सजेशंस टू हिज वीडियो ऑन प्रपोज्ड रिफॉर्म्स against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the higher level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. NTA has notified 4 positions for general manager on contract, each for an initial term of 3 years. It said that the engagement of young professionals has been undertaken for the first time. Prime Minister Narendra Modi thanked everyone for the responses and positive suggestions received to his video, where he announced the government's decision to bring

0: First, it's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Abhishek. The students' protests at Jantar Mantar is covered prominently by the dailies. Government steps up, bid to end arm farce. Protesters firm on Pradhan's exit, leads Hindustan Times. Government seeks time for call on Pradhan exit demand, says the Times of India. Cabinet clears bill imposing tougher paper leak penalties, leads the Statesman. 47 officials sacked in major neat paper leak purge. Legal action likely, notice, notes the Tribune. Bill to grant Vande Mataram equal legal protection as national anthem introduced in Rajya Sabha, says the Statesman. The Indian Express, in its editorial piece, Shine On Dick Parry, writes that the brilliantly crafted saxophone lines by Dick Parry, who passed away at 83 this week, were rarely the first thing one noticed in a Pink Floyd song. But imagine the song stripped off his saxophone, and the incompleteness will reveal what he brought to them. In his aching solo on Shine On You Crazy Diamond, written in memory of Sid Barrett, one can feel the instrument channeling the collective grief of the band. Vishwanathan Anand becomes FIDE interim president, reports a pioneer. Jurgen Klopp named new Germany football coach, informs Hindustan Times. And finally, spectacular cultural mix gives Commonwealth Games a fresh start, writes the Asian Age. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves anti-paper leaks draft bill for stricter punishment. Legislation likely to be introduced in Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in the Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा इस्लाहात से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ ताल्लुकात जारी रहेंगे। हुकूमत और सीजेपी आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। भारत ने बहरे अस्वद में कमर्शियल जहाज पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें एक भारतीय मल्लाह की मौत हो गई थी। गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और दौलत मुश्तरक खेलों में झंडू कुमार ने मर्दों के हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग मुकाबले में भारत की तरफ से कांसे का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निमटने और इम्तिहान में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मसौदे को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में बिल के इस मसौदे को मंजूर किया गया। जराए ने हमारे नामनिगार को बताया कि उम्मीद है कि यह मुजवजा बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। इसी दौरान इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली एजेंसी एनटीए ने 47 अफसरान को बर्खास्त कर दिया। जराए के मुताबिक इनमें से कुछ एहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। ये इकदाम एनटीए में मुकम्मल तौर पर तब्दीली लाने का एक हिस्सा है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने जनरल मैनेजर की सतह पर सीनियर पेशावर अफराद के तकरूर के लिए इश्तेहारात जारी किए हैं। उसने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल प्रतिभू सेतु के जरिए 16 नौजवान पेशावर अफराद की खिदमात हासिल करने के लिए भी दरखास्त तलब की है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें
2: 0542227658,
3: 0542227658।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत परांजपे। आज मधुरिमा की इस महफिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सदाबहार फिल्मी गीत, जो पुराने दौर में अपना तहलका मचाए हुए थे और आज भी हमारे दिलों में धड़कते हैं। तो आइए संगीत के सफर की शुरुआत करते हैं फिल्म अगर तुम न होते कि इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

अब जिस फिल्म का हम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, वो फिल्म आई थी साल 1979 में, और ये एक सुपरहिट हॉरर थ्रिलर फिल्म के रूप में जानी जाती है। आप जान ही गए होंगे फिल्म का नाम। इस फिल्म का नाम था जानी दुश्मन, जो अपने समय की एक अनूठी और बेहद चर्चित मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसमें सुनील दत्त, संजीव कुमार, जितेंद्र और रेखा जैसे कई दिग्गज कलाकार शामिल थे। बॉलीवुड में एक नहीं बल्कि कई कई सुपरस्टार्स ने एक साथ एक फिल्म में काम किया है, जिसमें सुनील दत्त, संजीव कुमार, जितेंद्र, रेखा, नीतू सिंह, रीना रॉय, विनोद मेहरा इत्यादि शामिल थे इस फिल्म में। उस दौर में इतने बड़े सितारों का एक फिल्म में आना, एक फिल्म में काम करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म यानी जानी दुश्मन फिल्म का ये सुपरहिट गीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी वाराणसी से अभी आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। मधुरिमा कार्यक्रम के शेष नगमे आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
0: दोस्तों, अब हम जिस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं उसका नाम है धर्मवीर। ये फिल्म 1977 की

बहुत ही प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र और जितेंद्र ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। और इस फिल्म का सबसे दिलचस्प पहलू ये था कि इसमें धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल ने पहली बार पर्दे पर काम किया था, तो उसकी पहली फिल्म ये थी जिसमें वो बाल कलाकार के रूप में था, जिसमें वो धर्मेंद्र के बचपन की भूमिका उन्होंने निभाई थी। ये फिल्म किसी परियों की सी कहानी से लगती है, जिसमें एक्शन, रोमांस और पारिवारिक ड्रामे का एक अनोखा मेल हमें दिखता है। इस फिल्म के गीत आज भी हमारी जुबां पे हैं। ये एक खास, एक प्यारा सा गीत हम आपके लिए लाए हैं इसी फिल्म का, जिसका नाम है धर्मवीर।

इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, और गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए आनंद उठाए इस प्यारे से गीत का।

दोस्तों, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म अर्पण का एक गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़े बहुत ही रोचक किस्से हैं। ये फिल्म 1983 में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म जे ओम प्रकाश द्वारा निर्देशित एक सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें जितेंद्र, रीना रॉय, परवीन बॉबी और राज बब्बर ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी, मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। ये फिल्म अपनी शानदार स्टार कास्ट के साथ साथ बेहद दिलचस्प किस्सों के लिए भी जानी जाती है। निर्देशक जे ओम प्रकाश और अभिनेता जितेंद्र की जोड़ी की ये चौथी फिल्म थी जिसमें रीना रॉय ने मुख्य भूमिका निभाई थी, और ये फिल्म उनके करियर के उस दौर की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी। इस फिल्म के गीत लिखे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, जो आज भी लोगों की जुबां पर हैं।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: अभी आप सुन रहे थे मधुरिमा। अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले होगा।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए मेरठ और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
2: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मेरठ मंडल के पर्यटन और सांस्कृतिक विकास से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में पर्यटन विभाग की कुल 27 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक है। इनमें मेरठ के 2, गाजियाबाद के 4, गौतम बुद्ध नगर के 3, बुलंदशहर के 7 और हापुड़ के 8 प्रस्ताव शामिल हैं। ब्रजघाट क्षेत्र के पर्यटन विकास और गंगा तट से जुड़े स्थलों को भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में विरासत स्थलों को पर्यटन परिपथ से जोड़ने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन को स्थानीय आस्था, सांस्कृतिक विरासत और जन भागीदारी से जोड़ते हुए नए आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में 199 मेधावियों को पदक प्रदान किए। राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह जी का व्यक्तित्व भारतीय लोकतंत्र में सादगी, ईमानदारी, संघर्ष और जनसेवा के अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गाँव, गरीब और किसान के उत्थान के लिए समर्पित किया। राज्यपाल ने कहा कि आज समाज में बिना विचार किए किसी भी विचारधारा या झंडे के पीछे चल पड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। युवाओं को पहले यह समझना चाहिए कि वे जो कार्य कर रहे हैं वह देश हित में है या नहीं। विश्वविद्यालय का दायित्व केवल शिक्षा देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों से सही सोच और राष्ट्रहित की भावना को विकसित करना भी है। श्रावण यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने हेतु शासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन SP गोयल एवं DGP राजीव कृष्ण की संयुक्त अध्यक्षता में कांवड़ यात्रा को लेकर मंडलायुक्त सभागार में मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद मंडल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान राज्यों के वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। वर्चुअल माध्यम से संबंधित समस्त अधिकारी भी जुड़े। पश्चिम उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा कार्यवाही से अवगत कराया गया। बैठक कांवड़ यात्रा के संबंध में आने वाली चुनौतियां एवं उनसे निमटने के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव SP गोयल ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे सफलता पूर्वक संपन्न कराना हम सभी का साझा दायित्व है। इसके लिए सभी विभाग अपने अपने दायित्वों एवं दिए गए निर्देशों का 100% सुनिश्चित पालन करें। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान संपूर्ण कांवड़ मार्ग एवं उससे

0: जुड़े सभी प्रमुख स्थलों पर नियमित साफ सफाई, स्वच्छता एवं सैनिटेशन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कांवड़ शिविरों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए। शिविर के लिए आवश्यक अनुमति, विद्युत कनेक्शन, अग्नि सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं अन्य सभी सुरक्षा मानकों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
1: कांवड़ यात्रा सकुशल बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो सके, किसी भी कांवड़िया को कहीं कोई कष्ट न हो, चार रूप से ये कार्यक्रम संपन्न हो, उनका सम्मान के साथ सारे लोग योगदान करें।
0: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त हुई हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया में हुनरमंद महिलाओं ने रोजगार शुरू किया और कामयाबी के कदम चूमे। मेरठ की ममता गर्ग ने घर से ही हैंडीक्राफ्ट का कार्य शुरू किया। उन्हें स्टैंड अप इंडिया योजना में 10 लाख का लोन मिला, जिससे ममता गर्ग ने काम को आगे बढ़ाया। आज वह भगवान की पोशाक, लड्डू गोपाल के सिंहासन, पालने, बंदर विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं बना रही हैं। खुद सशक्त बनने के साथ ही उन्होंने अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया। आज उनका हैंडीक्राफ्ट भारत ही नहीं अन्य देशों में भी पसंद किया जा रहा है।
2: मेरी काफी सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम की मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें कि मैं भगवान के पालने, सिंहासन ये सब बनाते हैं, बंधनवार बनाते हैं, और पूजा के लक्ष्मी गणेश और होली से रिलेटेड सामान सभी कुछ हमारे यहाँ बनता है।
0: मेरठ में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना के शुभारंभ अवसर पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, सांसद अरुण गोविल मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव संबोधन भी सुना गया। कार्यक्रम में शिक्षकों को मुख्यमंत्री कौशल कैशलेस योजना का कार्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं, जिससे छात्र छात्राओं और शिक्षकों को अच्छा शिक्षा का माहौल और शिक्षा का स्तर मिल रहा है।
3: मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीराम राय का।
4: पिछले दिनों गाजीपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने स्वामी विवेकानंद के गुरु पौहारी बाबा के आश्रम में दर्शन पूजन के बाद केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। पद मिलने के बाद गाजीपुर में प्रथम आगमन पर कृष्ण बिहारी राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं, महिलाओं, गरीबों एवं जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर आयोजित प्रदर्शनी एवं कार्यक्रमों में जितना जनता उत्साह से भाग ले रही है, उससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के नगर विकास राज्य मंत्री उमेश राय का भी आगमन गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के पैतृक गांव पलिया में हुआ। पलिया पहुंचने पर उमेश राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय से पूरे भारत में उत्साह का माहौल है। गाजीपुर में किसान कल्याण के लिए जगह जगह कैंप लगाकर किसानों को वैज्ञानिक खेती तथा केसीसी के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कृषि निदेशक विजय कुमार ने कहा कि धान के मौसम में किसान नर्सरी के बजाय सीधे खेतों में नमी के बीच बीज बोकर खेती कर सकते हैं, इससे उपज अच्छी होती है। उन्होंने सूखे को ध्यान में रखते हुए किसानों से बाजरा, ज्वार, मक्का आदि की खेती करने की भी अपील की। वहीं अग्रणी जिला प्रबंधक यूनियन बैंक राजदेव ने कहा कि मात्र 4% ब्याज दर पर सभी किसानों का केसीसी कार्ड बनाया जा रहा है एवं केसीसी बन जाने पर सभी किसान फसल बीमा का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने गाजीपुर के सभी किसानों से अपने निकटतम बैंक से केसीसी बनवाने की अपील की। आगामी कांवड़ यात्रा एवं सावन माह में भगवान शिव के जलाभिषेक के मद्देनजर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने गाजीपुर के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा, स्नान, जल लेने या जलाभिषेक मेले के समय न हो इसके लिए पूरे जनपद में प्रसिद्ध देवालयों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा गंगा घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।
5: श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए ये हम लोग की व्यवस्था है कि आवागमन में कोई दिक्कत न हो कि उनके रहने के लिए बैठने के लिए स्नान करने के लिए प्लस जल लेने के लिए कोई दिक्कत न हो भीड़ का नियंत्रण ठीक से हो।

0: और लाइटिंग की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, यही सब देखा जा रहा है।
1: गाजीपुर के विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद की अध्यक्षता में निपुण भारत मिशन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि अभी प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने वाले निपुण भारत मिशन के तहत जनपद के 30% स्कूल ही आच्छादित हो पाए हैं। ऐसे में जिले के सभी विद्यालयों को निपुण बनाने पर जोर दिया जा रहा है। निपुण भारत मिशन के तहत विद्यालयों में कक्षा 3 तक के बच्चों को पढ़ने लिखने और बुनियादी गणित की जानकारी देने का लक्ष्य निर्धारित है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 9:25 पर आप सुनेंगे कोई भी व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। श्री नरेश यादव ने ग्राम अघौली थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री आस्था यादव दिनांक 21 मई 2026 से कहीं गुमशुदा है। आस्था यादव के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 14 वर्ष, कद करीब 5 फीट, इनका चेहरा गोल है, रंगे हुआ है और आंखों और बालों का रंग काला है। इन्होंने गुलाबी रंग की कुर्ती, काला प्लाजो और सफेद रंग का दुपट्टा पहना है। कुमारी आस्था यादव के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम कुमारी आस्था यादव है। श्रीमती नीता पत्नी स्वर्गीय नागेश्वर गुजर ने ग्राम मझगवा थाना हलिया जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री मांडवी दिनांक 9 जून 2026 से कहीं गुमशुदा है। मांडवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 19 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, इनका रंग सांवला है, चेहरा गोल है और एक अहरा बदन है। इनकी आंखों और बालों का रंग काला है और बाल लंबे हैं। इन्होंने आसमानी जीन्स और टी शर्ट पहनी है, साथ में लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ी है और इनके पैरों में सैंडल है। मांडवी के बारे में अगर आपको कोई जानकारी मिले तो कृपया थाने में संपर्क करें।

श्री श्याम बिहारी पुत्र संत लाल विश्वकर्मा ने ग्राम निनवार उत्तर थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पत्नी श्यामा देवी दिनांक 24 अप्रैल 2026 से कहीं लापता है। श्यामा देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 31 वर्ष, कद 5 फीट, इनका रंग सांवला है और इन्होंने नीले रंग की साड़ी पहनी है। ये दिनांक 24 अप्रैल 2026 को रात्रि 8 बजे से कहीं लापता हैं। श्यामा देवी के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम श्यामा देवी है। गायत्री तिवारी ने ग्राम व पोस्ट बांसडीह थाना बांसडीह कोतवाली से हमें सूचना दी है कि उनके पति अशोक तिवारी दिनांक 7 मार्च से लापता हैं। अशोक तिवारी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 36 वर्ष, कद 6 फीट, इनका रंग गोरा है और इन्होंने नीला जीन्स, गुलाबी शर्ट और सफेद रंग का जूता पहना है। ये हिंदी बोलते हैं। अशोक तिवारी के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना नरही जनपद बलिया उत्तर प्रदेश से संपर्क करें। कोई भी व्यक्ति का नाम अशोक तिवारी है। अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों

के संबंध में सूचनाएं। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

नेत्रदान का संकल्प आज ही लें। ज्योति वो अमूल्य उपहार है जो आप ही दे सकते हैं। दृष्टि के आनंद को बांटिए। जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। नेत्रदान महादान। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मृतक देह कुछ नहीं खोती। नेत्रदान से मिले ज्योति, जीवन का अमूल्य वरदान। नेत्रहीन को करें नेत्रदान, नेत्रदान करेंगे दुनिया फिर से देखेंगे। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 9:30 होने वाले हैं। अगला प्रोग्राम लखनऊ केंद्र से रिले होगा।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आपके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान फरीदुल्ला खान हाजिर है, सलामे अदब के साथ आकाशवाणी रामपुर के मरकज से। सामीन, आज 25 जुलाई है और आज ही के दिन यानी 25 जुलाई को होता है आकाशवाणी रामपुर का यौमे तासीस। तो हमारी जानिब से इस यौमे तासीस के मौके पर आप सबको बहुत मुबारकबाद कबूल हो। जब से इसका आगाज हुआ तब से आज तक आकाशवाणी रामपुर ने अपने प्रोग्राम के ज़रिए खूब तरक्की की है और दुआ भी यही है, ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। एक बार फिर आप सबको बहुत मुबारकबाद कबूल हो। और आइए, आज हमने अपने स्टूडियो में एक शेरी नशिस्त का इनेकाद किया है। इसमें जो शोरा इकराम शामिल हैं उनके अस्माए ग्रामी कुछ इस तरह हैं: जनाब अकील मियां अकील नुमानी साहब, मोहतरमा आमना बेगम खुशबू रामपुरी साहिबा और डॉक्टर इसरार अहमद असरार नसीमी साहब। तो समात करते हैं ये शेरी नशिस्त।
2: मोहतरम सामईन इकराम, आज की शेरी नशिस्त आकाशवाणी रामपुर पर मनक़द की गई है, तो आइए बिला किसी ताखीर के आज की इस शेरी नशिस्त का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले मैं अपने गज़ल का मतलब पेश करता हूँ, समाप्त कर। कोई साथी कोई हमदम नहीं है, कोई साथी कोई हमदम नहीं है, खुदा का शुक्र फिर भी गम नहीं है, खुदा का शुक्र फिर भी गम नहीं है। सानी मतला इस तरह है कि मोहब्बत के लिए ये कम नहीं है, मोहब्बत के लिए ये कम नहीं है, किसी से कोई भी बरहम नहीं है, किसी से कोई भी बरहम नहीं है। और शेर इस तरह है कि हमारी कौम के जो जख्म भर दे, हमारी कौम के जो जख्म भर दे, किसी के पास वो मरहम नहीं है, किसी के पास वो मरहम नहीं है। ये ख़ास तौर से शेर के ज़रूरी तो नहीं वो शादमा हो, ज़रूरी तो नहीं वो शादमा हो, बज़ाहिर जिसको कोई गम नहीं है, बज़ाहिर जिसको कोई गम नहीं है। सरासर झूठ पर मबनी है किस्सा, फसाने में तेरे कुछ दम नहीं है, फसाने में तेरे कुछ दम नहीं है। मक्ता इस तरह है कि वही असरार है दुनिया की हर शय, वही असरार है दुनिया की हर शय, मगर पहले सा वो आ

0: आलम नहीं है, कोई साथी कोई हमदम नहीं है, खुदा का शुक्र फिर भी गम नहीं है। लबो लहजे को बाजारी न करना,
1: क्या अच्छा मिसरा है,
2: लहजे को बाजारी न करना।
0: लबो लहजे को

0: में मोहतात
1: सदा तहरीर में
0: रहना,
1: मोहतात रहना।
0: सदा तहरीर में मोहतात रहना।

0: और ये शेर बतौर खास
1: जी
0: ये राज़े शौके आईना न पूछे।
1: वाह वाह वाह।

بہت شکریہ. آخری شعر. مقام دل ہے کیا ان کو بتا دو.

अब हरम तक आ गए हैं। मक्ता पेश करती हूँ। तेरे आंसू तेरी आँखों से खुशबू।

0: जाए कभी वो शायद,
1: मेरे दिल से तो चला
0: मेरे
1: जाए
0: दिल से
1: कभी
0: तो
1: वो
0: चला जाए
1: शायद।
0: कभी वो शायद, उम्र भर फिर भी मेरे जहन से जाने का
1: अरे
0: नहीं।
1: वाह वाह वाह वाह, हा हा हा हा,
0: उम्र भर फिर भी मेरे जहन
1: जहन से
0: से
1: जाने का
0: जाने का नहीं,
1: नहीं। क्या कहने क्या कहने,
0: कोई
1: वाह
0: किरदार अब आवाज उठाने का नहीं,
1: वाह वाह वाह।
0: सच कहानी में कभी सामने आने का नहीं।
1: हजरत अकील नोमानी साहब की इस गजल के साथ

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थीं सरोज वर्मा। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाएं, इनके गाए लोकगीत आप दिन 1:45 और कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार।

सुरेश वाडकर के स्वर में अभी आपने फिल्म सन्नी का ये गीत सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। आइए अब सुनते हैं फिल्म जुबैदा का ये गीत। आवाज कविता कृष्णमूर्ति की, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार ए आर रहमान।

यह आवाज़ थी कविता कृष्णमूर्ति की, फिल्म का नाम जुबैदा, गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत दिया था एआर रहमान ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की का गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

शत्रुघ्न सिन्हा और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं फिल्म नरम गरम का गीत। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

सलमा आगा और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में अभी आपने फिल्म पति पत्नियों तवायफ का गीत सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आइए अब सुनते हैं फिल्म इज्जत के लिए। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और ये है आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम रोटी, आवाज किशोर कुमार की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही आज का झंकार कार्यक्रम समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, आज की प्रस्तुति अरुण पांडेय की।

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी,
2: हाँ बोलना।
3: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
4: सलाम।
0: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से।
5: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
6: नमस्कार सर।
5: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
6: जी मैं चंदूपुरा 89 से राहुल कुमार बोल रहा हूँ।
5: राहुल जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है? अब तो मौसम अच्छा हो गया, बारिश शुरू हो गई है।
6: जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला मौसम।
5: तो घूमने फिरने निकलते हैं कि नहीं, कि दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं?
6: नहीं, निकलते हैं संडे को।
5: जी, और आज इस कार्यक्रम में कौन से गाने की फरमाइश है आपकी?
6: आशिकी 2 का गाना है सर।
5: जी,
6: कोई सा भी सुना दीजिएगा, बहुत अच्छा गाना है।
5: और अब तो राहुल जी आपको प्रोग्राम के जरिए भी आपके दोस्त मित्र बहुत आपको पहचान गए होंगे।
6: जी सर। हाँ हाँ
5: हाँ, तो इस कार्यक्रम से क्या फायदा हुआ?
6: फायदा यही हुआ कि लोग जुड़ रहे हैं हमसे।
5: जी जी।
6: हाँ, और 9 तारीख के सर हमारे घर के पास से यात्रा निकल रहा है आदमपुरा का।
5: जी जी बिल्कुल,
6: सावन का।
5: तो अब हम आपको गाना सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर, फिल्म है आशिकी 2। नमस्कार राहुल जी, शुक्रिया।

0: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी नमस्कार, जी नमस्कार। ग्राम चमड़वा जिला संभल से ब्रजेश सिंह बात करते हैं।
0: ब्रजेश सिंह, आप हमारे कार्यक्रम के श्रोता हैं, कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको?
1: जी एक से बढ़कर एक कार्यक्रम है, सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं वाराणसी से।
0: बहुत बढ़िया, और अपने बारे में कुछ बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जी हमारी काफी पहले बात हुई थी अरुण पांडे जी से।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और एक दीदी से बात हुई थी।
0: जी जी बढ़िया लगता है कि दूर दराज के आप जैसे श्रोता
1: सालों से जुड़े हुए हैं आकाशवाणी वाराणसी।
0: बहुत बढ़िया, और कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं। और आज किस गाने की फरमाइश है इस कार्यक्रम में आपकी?
1: जैसे ये कार्यक्रम जैसे जुड़े रहते हैं हम लगातार।
0: बहुत बढ़िया।
1: और एक दूसरे से मैं तो बताते रहते हैं वाराणसी से जुड़िए।
0: बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया कि आप अपने साथ साथ बाकी
1: 7 बजे आता गुड मॉर्निंग बनाना।
0: जी जी।
1: और पूरे दिन का जानकारी का कार्यक्रम रहता है एक से बढ़कर एक।
0: जी जी, वो प्रोग्राम ऐसा है कि आपको सुबह सुबह देश भर की और खासतौर से बनारस और आसपास की तमाम गतिविधियों की खास बातों की जानकारी सुबह मिल जाती है मनोरंजक रूप से।
1: आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं अरुण पांडे ही बोल रहा हूँ। किस गाने की आज फरमाइश है आपकी?
1: आज की आवाज़ कैसे चेंज हो रही है?
0: थोड़ी सी इसमें नेटवर्क वगैरह की दिक्कत आज चल रही है, आप लोगों की भी आवाज़ सही नहीं आ रही है।
1: अच्छा।
0: जी जी, तो कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको?
1: जी फिल्म का नाम है अनोखा अंदाज। गाने के बोले आपसे पहले आपके बाद याद कोई आया ना आएगा।
0: अच्छा।
1: जी की आवाज।
0: जी जी जी।
1: और नाम लेना चाहेंगे? जी बीवी का नाम कविता, बेटी का नाम वैष्णवी, बेटे का नाम दिव्यांग, भाई किशन व सोमपाल, सह परिवार से आकाशवाणी वाराणसी से गाना सुनना चाहते हैं।
0: गीत आपको सुनवा रहे हैं
1: श्रोता ब्रजेश।
0: बिल्कुल ब्रजेश जी, गीत आप तक पहुँच रहा है, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी हेलो,
1: फोन इन फरमाइश।
0: जी जी नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं रईस खान अम्बेवली महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ।
0: तो बारिश कुछ रुकी या फिर बारिश?
1: नहीं सर, बारिश तो लगातार चालू ही है।
0: तब तो आपके आसपास नदियाँ तालाब इस तरह की चीजें होंगी बड़ी बड़ी?
1: जी हाँ, अभी भी चालू है बारिश, तो आपसे बात कर ली है।
0: जबकि हम लोग के यहाँ इस तरह से लगातार बारिश नहीं हो रही, रुक रुक करके दो चार दिन के अंतराल पे हो जाती है।
1: यहाँ तो चार पांच दिन से लगातार चालू है, मगर रुक रुक कर बीच बीच में रुक रहे।
0: तो जी हम लोग तो ठीक ठाक हैं, और इधर भी थोड़ी अच्छी बारिश हो जाए, क्योंकि बनारस और आसपास बरसात कम हुई है पहले कई साल की अपेक्षा।
1: जी हाँ, इंशाल्लाह होने वाली हो जाएगी।
0: जी, और अब बता दें कौन से गाने की आज फरमाइश है आपकी?
1: फिल्म का नाम है लफंगे और गाने के बोल है आपकी कसम एक दिन सनम, 1975 की आपकी कसम एक दिन सनम, ये गुस्सा प्यार में बदल जाएगा।
0: आइए गीत सुनवा रहे हैं। जी बिल्कुल, गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: थैंक यू।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो
0: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्कार।
1: मैं नंदिनी से बात कर
0: तो रही। नंदिनी जी बहुत स्वागत है। कहाँ थी आप, जमाने के बाद आई हैं। जो वो गाना है वो आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है।
1: यस सर, मैं ट्राई तो कर रही थी।
0: नहीं ट्राई तो आपने इधर हमें लग रहा है कि एक आध हफ्ते पहले से इस दो प्रोग्राम से किया है, लेकिन एक आध दो साल हो गए आपसे बात हुए।
1: जी सर, कुछ दिन पहले मैंने थोड़ा रेडियो कम बंद कर दिया था, फिर
0: तो पढ़ाई लिखाई कर रही थी या कुछ और खास काम कर रही थी आप?
1: नहीं अभी फिलहाल में पढ़ाई तो मैंने बीएससी फाइनल की है।
0: जी जी,
1: तो वही की पढ़ाई चल रही।
0: हाँ अच्छा, आपने रेडियो का साथ छोड़ दिया था इसका मतलब कुछ दिनों के
1: नहीं,
0: लिए?
1: नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सुनती थी।
0: लेकिन समय नहीं निकाल पाती थी। कम
1: हाँ।
0: कम। तो कैसे याद आई खासतौर से इतनी दूर, क्योंकि आप तो सागर में हैं।
1: जी सर, हमने पहले भी कॉल किया है एक दो बार।
0: और बिल्कुल आपका नाम याद है हमें, आपने कई बार फोन किया है और आपकी सखियां या सिस्टर भी आपकी बात करती थी पहले।
1: जी बिल्कुल, और वो भी कॉल करेंगी।
0: तो इतने दिनों क्या किया आपने, अभी बताइए।
1: मैं दोनों तो कुछ नहीं, बस घर के काम में लगे रहते हैं।
0: हाँ तो कैसे याद आई अचानक से कि इस प्रोग्राम की याद आपको कैसे आ गई?
1: मुझे लगा कि मतलब अच्छा लगता है मुझे वहाँ का प्रोग्राम। जी सर।
0: और वैसे आपका नजदीक का केंद्र भोपाल है?
1: जी बिल्कुल, भोपाल हम सुनते हैं क्योंकि वो मतलब हमें पसंद है।
0: जी
1: और
0: जी
1: जी सर,
0: और कुछ आप बताएंगे या फिर आज कौन सा गाना सुनना है ये बताइए।
1: गाना है, मूवी का नाम है किसी का भाई किसी की जान। और सॉन्ग है नहीं वो लगदा दिल तेरे बिना, अच्छा लगता है। अभी वो
0: तो
1: 24 या 25 में आई थी मूवी।
0: हाँ, और कुछ गाने वगैरह का भी शौक है कि नहीं आपको?
1: गाने मैं सुनती हूँ जब मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गाने सुनने चाहिए, तो मुझे नींद नहीं आती तो मैं गाने सुन लेती हूँ।
0: और गाना भी चाहिए ये कभी नहीं लगता है?
1: गाना चाहिए कभी कभी, मूड करता है तो गा भी लेते।
0: तो अच्छा अभी मूड नहीं है आपका गाने का?
1: नहीं अभी तो फिलहाल मैंने आपसे बात करने के लिए कॉल किया है।
0: तो अब बातें तो हो गई, अब हम आपको गीत सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते,
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश से।
0: आज तो हमारे कुछ ऐसे श्रोता बड़ी दूर दूर से फोन कर रहे हैं जो अचानक से कुछ समय के लिए लापता हो गए थे, तो आप कहाँ थी इतने दिनों तक?
1: मैं मतलब थोड़ा बिजी हूँ, मतलब प्रोग्राम सुनती हूँ आपका।
0: हाँ, ये है कि समय के साथ साथ रेडियो का थोड़ा स्थान जो है, चूंकि इंटरनेट मोबाइल और इन चीजों के आ जाने से व्यस्तता हर किसी की बढ़ गई है, और सोशल मीडिया के जमाने में हाथ फोन, जैसे ही हाथ फोन तक पहुंचता है आदमी उसमें वक्त इन जगहों पर देने लगता है।
1: और आपके क्या हालचाल है?
0: हम लोग तो ठीक ठाक हैं और श्रोताओं से जुड़े रहते हैं, उसमें कुछ श्रोता कभी थोड़े से गैप ज्यादा हो जाता है, उसमें आप भी हैं। तो इतने दिनों तक क्या किया आपने और व्यस्त थी आप बता रही हैं?
1: हाँ, मेरे भाई की शादी थी।
0: जी जी,
1: तो बस उसी की तैयारी में लगे।
0: हाँ, तो वो तो भाई एक लंबा और बड़ा काम होता है, तो उसकी तैयारियों में लगे रहना पड़ता है।
1: जी जी, और बस घर गृहस्थी में बिजी थे। अब हमें आज याद आ गई तो हमने कॉल कर लेते।
0: बहुत बढ़िया। तो अब तो आपके यहाँ सावन के महीने की खास बात क्या है? कुछ आसपास ऐसा पूजा पाठ मेला वगैरह होता है?
1: मेला तो नहीं लगता, लेकिन हाँ मंदिर स्पेशली मैं जरूर जाती हूँ। वैसे मंदिर नहीं जाती हूँ, लेकिन सावन के महीने में मंदिर जाती हूँ।
0: जी जी, सावन में जो तमाम भोलेनाथ के तीर्थ हैं वहाँ का महात्म्य अलग ही होता है, और खासतौर से हमारे यहाँ तो विशेष रूप से देश भर के तीर्थयात्री आते हैं।
1: और मुझे तो झूला झूलना भी बहुत पसंद है।
0: हाँ, वो तो सावन का झूलों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, कई गाने हैं सावन के झूले पड़े। तो सावन का महीना तो है और बारिश अच्छी हो रही है। आपके इलाके में क्या स्थिति है बारिश की?
1: अभी तो सर कल से मतलब लाइट लाइट बारिश शुरू हुई है, हल्की हल्की मतलब।
0: जी जी
1: हाँ,
0: तो इसमें क्या गाना आप सुनेंगे इस मौसम में?
1: हाँ, मुझे सुना दीजिए, मुझे सावन का सॉन्ग सुना दीजिए। मूवी का नाम तो मुझे पता नहीं, बट गाने के बोले तुम्हें गीतों में ढालूंगा सावन को आने दो।
0: हाँ, ये तो फिल्म का नाम ही सावन को आने दो है, तो
1: इसमें एक सॉन्ग है ना।
0: बिल्कुल, टाइटल सॉन्ग है।
1: जी जी, सॉन्ग आपको डेडिकेट रहेगा, आनंद जी को रहेगा और युगेश को रहेगा, और जो सुन रहे हैं तमाम श्रोताओं को भी।
0: हाँ, तो सावन को आने दो फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाजें हैं। और बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपने बातें की हमसे, बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: सर मैं मुरलीधर गुप्ता है, तो कैसे बोल रहा हूँ सर?
0: तो मुरलीधर जी थोड़ा आराम से बोलिए, आपकी आवाज कट कट जाती है, हालांकि नेटवर्क की समस्या है।
1: जी
0: मुरलीधर जी, तो कोर्ट कचहरी जाना हो रहा है आपका?
1: जी सर कचहरी तो जा रहा है।
0: हाँ हाँ, ये श्रोताओं को बता दें, हालांकि श्रोता जानते हैं कि मुरलीधर जी एडवोकेट हैं। हाँ, तो ये तो जैसे हम लोग रोजी रोटी के लिए नौकरी चाकरी और अपने दुकान प्रतिष्ठान लोग जाते हैं, तो आप वहाँ पर कचहरी और कोर्ट जिसे कहते हैं वहाँ जाते हैं। तो अब तो इसका सामान्य समय हो गया होगा, क्योंकि बहुत गर्मियों में आपका जो कोर्ट है वो सुबह का होता है।
1: जी सर, मई और जून दो महीना सर।
0: जी जी, तो आपके यहाँ परिवार में व्यवसायिक कार्य भी है, दुकान प्रतिष्ठान जैसा?
1: नहीं सर, दुकान तो नहीं है, सब अपने अपने सर धंधे में लगे हुए हैं। भैया LIC और जीवन बीमा का एजेंट है सर।
0: जी जी,
1: डॉक्टर हो गए, छोटे भाई डॉक्टर साहब हैं।
0: तो अच्छी जगह है, आप तो प्रकृति के बीच हैं, दुधी नगर उटारी ये इलाका है।
1: जी सर
0: जी, और आपका तो सोन तो आपका सोनभद्र में है?
1: जी सर हम सोनभद्र में हैं, झारखंड से सटे हुए हैं सर।
0: हाँ बिल्कुल, आप सटे हुए हैं, वो जो गढ़वा पलामू इलाका है।
1: जी जी, 10-15 किलोमीटर आगे जाएंगे सर पूरब साइड में, तो वो वहाँ से झारखंड शुरू हो जाता है सर।
0: बिल्कुल बॉर्डर पर
1: किलोमीटर
0: है।
1: इधर दक्षिण साइड में जाएंगे तो वहाँ से सर छत्तीसगढ़ MP चालू हो जाएगा।
0: जी जी, ये बिल्कुल बॉर्डर है दोनों प्रदेशों का। और वो जो नगर उटारी में जो मंदिर है वो कितनी दूरी पर है आपके यहाँ से?
1: यहाँ से सर 30 किलोमीटर है।
0: अच्छा अच्छा, हाँ क्योंकि वो बड़ा प्रसिद्ध है, उसके बारे में आपने भी बताया था।
1: जी जी, वहाँ बहुत बढ़िया है सर, हम लोग तो हमेशा जाया करते हैं सर।
0: जी, आज कौन से गाने की फरमाइश है मुरलीधर जी?
1: कुदरत फिल्म है सर।
0: जी,
1: वो बहुत सा खूबसूरत गाना है सर, उन्हें वो रंगीले
0: कैसा जादू किया। हाँ हाँ हाँ हाँ,
1: राजेश खन्ना है, मालनी फिल्माया गया सर।
0: जी जी, राहुल देव बर्मन का संगीत है। हम अच्छे से हैं, और
1: कई प्रोग्राम में मेरा फोन नहीं लगा सर।
0: हाँ फोन थोड़ी सी लाइनों में भी खराबी आ रही है, और श्रोताओं की भीड़ भी, फोन ही नहीं व्हाट्सएप वगैरह में भी अब तादाद बढ़ रही है ज्यादा।
1: और एक हमारे सर बहुत आज करीब 2 साल से जुड़े हुए हैं, परवेज अहमद बनारस से। हमारे हमको फोन किए थे सर, तो बताए कि अब मेरा नाम भी बोल दिया करिए, मेरा फोन लगता नहीं है। तो अच्छा, सर से बात होगी तो मेरा नाम जरूर बोल दीजिएगा।
0: हाँ, तो परवेज अहमद हमारे यहाँ यहाँ के श्रोता हैं, और ये अच्छा है कि थोड़ा सा सोशल मीडिया मोबाइल के युग में श्रोता भी आपस में जुड़े हुए हैं, और वरना खतों के दौर में तो ये थोड़ा सा संभव नहीं था। तो गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपके दोस्तों को भी। बहुत शुक्रिया मुरलीधर जी, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मौनी बाबा धाम चोशकपुर बाजार जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी बोला हूँ।
0: क्या कहने राम सकल जी, हमें भी अच्छा लगता है। हालांकि ये कौन सा हफ्ता है लगातार?
1: छठा हफ्ता सर, छह बेर हो गया लगातार।
0: वाह, बिल्कुल आपने जो है हाईएस्ट जो है सिक्सर लगा दिए।
1: जी सर।
0: हाँ, तो
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया।
1: आप बताइए, आकाशवाणी परिवार के लोग कैसे हैं और आप कैसे हैं?
0: हाँ, ये अच्छा है कि आपको तो बिल्कुल ही हरगिज शिकायत नहीं होगी कि फोन नहीं लगता है।
1: नहीं सर, शिकायत कुछ भी नहीं है, व्हाट्सएप भी करते, उसमें भी शामिल होता रहता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, ये करिए कि चोचकपुर से एक ही साथ तीन चार नाम एक बार ही शुरू में भेज दिया करिए।
1: जी सर, भेज देते हैं, तीन चार में शुरू भेजते हैं, आ जाता है सर।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ तो अब तो बारिश अच्छी हो रही है और खेती बाड़ी वगैरह का कामकाज भी आपके इलाके में भी शुरू हो गया होगा।
1: सर धान की रोपाई भी चल रही है, खेती बाड़ी सर, ठंडा मौसम भी हो गया सर।
0: और आप भी वहाँ पर हैं, जैसे हम लोग के यहाँ बाबा विश्वनाथ का धाम है तो आपके भी आसपास उधर कैथी है जहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं इस अवसर पर, सावन के महीने में खासतौर से।
1: सावन के महीने में तो कैथी बाबा विश्वनाथ भी जाते हैं लोग हमारे गांव से, और केदारनाथ जो है बैद्यनाथ धाम भी जाते हैं यहाँ से।
0: जी जी, ये विशेष महीना है भोलेनाथ का और तमाम जगहों पर लोग जाते हैं कावड़ यात्रा और बाबा के दर्शनों के लिए। तो कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको?
1: जी सर, सावंत माला चढ़ने वाला है एक हफ्ते बाद
0: जी,
1: तो उसी का ये वाला है ना, दूल्हा गंगा पार की फिल्म है ना,
0: बोल बम का नारा बा।
1: हाँ, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है सर।
0: और ये भी बिल्कुल वो कावड़ यात्रा वाला ही गीत है।
1: जी सर।
0: हाँ, तो दूल्हा गंगा पार के फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गीत संगीत लक्ष्मण शाहबादी के और महेंद्र कपूर और उषा मंगेशकर की आवाजों में गीत है। शुक्रिया, नमस्कार।
1: जी सर, दो लोगों का नाम लेना चाहते हैं सर।
0: जी बताइए।
1: एक हमारे भास्कर दुबे चाचा लगते हैं चोचकपुर से, और चंदौली जिले के हैं सर, वो भोला नाथ यादव जी।
0: अच्छा, जिनके नाम आप भेजते हैं हमें।
1: भेजते हैं, वो हमेशा हाल चाल लेते रहते हैं सर।
0: बहुत बढ़िया
1: जी, और आपकी प्रस्तुति सभी कार्यक्रम बहुत अच्छी लगती है, श्रोताओं की भी मोह लेते हैं आप बातें कर कर।
0: ये आप लोगों की मोहब्बत है और हमें भी अच्छा लगता है कि श्रोता कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं।
1: जी सर, हम तो मान लो 8-9-10 बजे से हालो फोन फरमाइश में लगातार फोन करते रहते हैं।
0: जी जी,
1: और अभी तक तो मतलब प्रोग्राम सुने लेकिन रिकॉर्डिंग हुई है, बाकी सुनाया गया है सर अब तक ले। जी सर, इसके लिए आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: हमारे यहाँ ये खास चीज है कि जिसका भी कॉल लगता है हम लोग किसी कॉल को हटाते नहीं है।
1: जी सर।
0: हाँ हाँ सर।

0: सभी को शामिल करते हैं।
1: और एक बात भी है, आकाशवाणी परिवार जो फरमाइश करते हैं, गाना भी आप लोग पूरा सुनवाते हैं सर।
0: जी जी बिल्कुल,
1: कटौती नहीं करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल ही नहीं, ऐसा हम लोग करते हैं। और गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है दूल्हा गंगा पार के। नमस्कार, शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।

श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से 10:50 के बीच। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222-1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 यानी 0542। 2221052 के अलावा आप 2221050 पर भी ट्राई कर सकते हैं और उम्मीद है आप तमाम सुनने वालों से हमारी बातचीत हो और आपकी फरमाइशें हम पूरे करें। ये कार्यक्रम प्रसारित होता है शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे तक। अब आज का प्रोग्राम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आज की प्रस्तुति अरुण पांडे की थी। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम का जो हिस्सा आपने सुना उसका शेष भाग आप कल दिन में 12 बजे से सुन पाएंगे। हमारे केंद्र से जुड़ी कार्यक्रमों की प्रतिक्रियाएं आप हमें भेज सकते हैं pkldaiarvaranasi@gmail.com पर, pkldaiarvaranasi@gmail.com। और पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम जिसमें आपके मेल शामिल होते हैं प्रतिक्रियाओं के, वो रविवार शाम 7:31 पर प्रसारित होता है।

कार्यक्रम बुधवार और गुरुवार को दिन में 11 बजे प्रसारित होता है। मेल आधारित जो भी प्रोग्राम है उसमें आप कभी भी हमें मेल भेज सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के जितने प्रोग्राम हैं वो उसी वक्त आपको फरमाइशें भेजनी होती हैं।

लेकिन उस मेल आईडी पर फरमाइशें न भेजें, वहां आई हुई फरमाइशें हम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम में शामिल नहीं करते। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस की मेल आईडी है airvnsfgexp@gmail.com airvnsfgexp@gmail.com और फरमाइशी गीत एक्सप्रेस

0: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
1: हम गवन मना ही जईबे बिना रे झूलनी, हम गवन मना ही जईबे बिना रे झूलनी।
2: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी, अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती है आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर, कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां हैं आप वहीं हमारा साथ। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज, DTH, DRM, वेव्स OTT और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 हैं। कहकशां कार्यक्रम में आज हम आपको गजलें सुनवा रहे हैं। पहले सुनिए मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में इब्राहिम अश्क की लिखी गजल।

अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में इब्राहिम अश्क की लिखी गजल। और अब सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को, शायर हैं एक बार फिर से इब्राहिम अश्क।

कहकशां कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं कतील शिफाई का कलाम, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें हैं।

और अब आज के कहकशां प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। शायर हैं इब्राहिम अश्क और फनकार मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह।

0: शायर इब्राहिम अश्क का ये कलाम अभी आप सुन रहे थे मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में। कहकशां प्रोग्राम अब खत्म होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: कार्यक्रम में कलाकार हैं ममता शर्मा। पहले सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना।

और अब सुनिए, ममता शर्मा के स्वर में सुमित्रानंदन पंत की रचना।

सुमित्रानंदन पंत की रचना भी आप सुन रहे थे, कलाकार थी ममता शर्मा। सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है अशोक कुमार झा का उपशास्त्रीय गायन। लीजिए सुनिए इनकी गाही राग पीलू में ठुमरी। तबले पर संगति की है डॉक्टर प्रवीण उद्धव ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अशोक कुमार झा की गायी राग पीलू में ठुमरी। तबले पर संगति की डॉक्टर प्रवीण उद्धव ने। यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1 बजने को है, अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक

की थी, श्री नड्डा ने इस बैठक को सकारात्मक बताया था। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक

0: बार सुझाव हो ताकि उसका कानून बनावे नया ताकि आगे से फीफा लीग ना।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर अपने मन की बात प्रोग्राम में आवाम के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम की 136वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आने वाले कांवड़ यात्रा और दीगर त्यौहारों के सिलसिले में कल देर शाम एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग के दौरान उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर अकीदतमंद की हिफाजत सहूलत और एहतराम अव्वलियन तरजीहात है। वज़ीर आला ने कहा कि हम आंगी में खलल डालने, अफवाहें फैलाने, मिलावट करने, हद से तजावुज करने, इंतशार फैलाने या अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने हिदायत की दी कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में गोश्त और शराब की दुकानें बंद की जाए और हर दुकान पर ऑपरेटर का नाम वाज़ेह तौर पर जाहिर होना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि कांवड़ यात्रा अब रियासत के किसी एक इलाके तक महदूद नहीं रही, इसलिए हर जिले में इंतजामात पर

0: अंगने या कार्यक्रम सुनने वाली सब बहनी लोगन के नमस्ते आ गुंजा तोहरो के नमस्ते हो।
1: नमस्ते हो लाली दीदी, नमस्ते। हमरे ओरी से भी बहनी लोगन के नमस्ते।
0: और बतावा का हाल चाल, घर परिवार में सब कुशल मंगल से हो न?
1: हाँ दीदी, सब कुशल मंगल से हो। ए घड़ी त दाउ भी कुशल मंगल से कर ले हुए, काहे से कि देखत हूँ ना, तनिके तनिके देर में एकदम छा जाता हूँ, तो तनिके तनिके देर में घमा भी देता हूँ एकदम।
0: देखा, ये तो प्रकृति का जौन तालमेल है ना, कब्बो घाम कर दी है, कब्बो मौसम ऐसन कर दी है, मने यही में अझुरायल रहेला, मगन हो के अपन कुल काम करत रहेला। आ ई जौन सुहावना मौसम होला ना बरखा बुन्नी वाला, इमन देखा हाथ गोर भी चलेला, बड़ी फरहरी रहेले शरीर।
1: हाँ भाई, फरहरी तो रहबे करेला। आ कितना नीक समय आ गए दीदी कि देखा हो बरखा बुन्नी हो, ऐसने में हम लोगन देखा घर गृहस्थी के काम से तनको अगर समय मिलत हो तो अपन एक ठे बढ़िया सा देखा वातावरण पर्यावरण के ओर ध्यान भी दे सकीला और ओके सुरक्षित भी कर सकीला। काहे से कि भाई अब आज का दिन तो जानते हो ना का हो
0: कहा हो बता दा
1: भाई,
0: तुम्हीं।
1: आज हो हरि शयनी एकादशी। माने कि
0: अच्छा।
1: आज से अपन जो प्रभु हवन विष्णु भगवान ऊ

0: मांगलिक कार्य जो होला ना वो रोक लग जाला ओ पे, माने कि ए समय ना केहू का बियाह होई ना शादी होई ना छेक ना छेकैया होई, तो ए घड़ी ई कुल से मनाई बचल रहे कुल मना रहेला। लेकिन हाँ ए समय देखा हो जोन वर्षा ऋतु शुरू हो जाला ना, तो ऐसने में इतना अच्छा मौसम में भाई लोग अगर जागरूक हुए ना तो अपने अगल बगल पेड़ पौधा लगा के ओके अपने प्रकृति के बढ़िया बना सकेलन, वातावरण के शुद्ध कर सकेलन।
1: बिल्कुल सही बात कहत हुआ जाला। तो हमारे गाँव में का है ना कि आरी आरी सड़की के किनारे किनारे देख ली ना कि गड्ढा खोद खोद के तनी तनी पेड़ लगावे बदे पौधा रोपे बदे जगह बहनी लोगन तैयार कर ले हैं, भैया लोगन तैयार कर ले, और भैया बहनी के साथे साथे हाई ननकवन के देख ली ना नन का पौधा निकाल के लिए आवत हुआ कि हम लगाई भी हमार पौधा बड़ा हुई तो पेड़ बन जाए, तो इतना देख के अच्छा लगल ना। देखा ई कुल जो जागरूकता है ना ये भैया बहनी लोगन के देख देख के ही लेकिन बच्चन में भी आवेले। तो देखा सब कुछ अपने ही करे के है, हाँ अगर आप करम ना तो आपका देख के आगे वाली पीढ़ी भी सीखबे करी। अब साथे में भावना ये होए के चाहिए कि परोपकार का, ये ना सोचे कि भाई हम का करे लगावे जाई ऐसे हमार का फायदा है। देखा फायदा तो ये है ना, हम लोगन के जोन पुरखा पुरनिया लगौले रहलन तो ओकर आ छाव हम लोगन लेते फल हमन खाते ओकर सब तरह से लाभ हमन लेते हैं, तो हमहू लगन लगाए तो आगे वाली पीढ़ी आवे वाली पीढ़ी बदे तो छोड़ के जाए ना कुल।
0: भाई सही बात,
1: सोचे के चाहिए मने कि हमेशा निजी स्वार्थ से हटके परोपकार के बारे में सोचे के चाहिए, और ये प्रकृति भी खाली परोपकारी सिखावे ले हमन के।
0: भाई प्रकृति से जब हम लोगन के इतना कुल चीज मिलत हो तो हम लोगन का भी फर्ज बनेला कि ओके सुरक्षित रखी, ओके संभार के रखी, कैसे कि आगे आए वाली पीढ़ी जब पूछी केहू से कि हमार दादी हमार बब्बा का छोड़ के गैलन, हम लोगन के लिए का पेड़ पालो लगा के गैलन, तो उन लोगन के पास इस देखे के मिले कि हाँ हमार भी जोन पूर्वज रलन पुरखा पुरनिया रलन हम लोगन के लिए कुछ कई के गैलन है।
1: इकरे साथे साथे जाना तो यही पौधा में जो नान नान तुलसी का जो पौधा हो,
0: हाँ
1: देखा ए पौधा के भी अजुए से लगावे का एक ठे विधान आध्यात्मिक विधान बनल हो। भाई हर चीज का नियम बनल हो के वैज्ञानिक तथ्य से जोड़ल गयल है, यही से नियम बनल है, एमन कोनो तरह का अंधविश्वास नहीं है। तुलसी के पौधा का तो महात्म तू जनते हो,
0: हाँ
1: भाई अगर लाइन से लगा दिहल जाए ओके ढेर का तुलसी का पौधा, तुलसी बन जहाँ बन जाएला वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध होला गुंजा।
0: आ देखा हो लाली दीदी जब हम लोगन के ऑक्सीजन चाहला ना हर घड़ी हम लोगन सांस लेला, बिना सांस के तो जिंदगी ना चले वाला हो, तो ये ऑक्सीजन मिली हम लोगन के ये वातावरण के शुद्ध करी, तो एक खातिर ये तुलसी का पौधा आज से लगाए का विधान बनल हो। तुलसी का पौधा खाली देखा ये हम अगर लग जाए तो खाली दो दिना चार दिना महीना भर के लिए नहीं, ये लग गेल तो फिर समझ ला जब तक पौधा रही तब तक हम लोगन के कुछ ना कुछ देत रही।
1: बिल्कुल सही बात है, देखा सर्दी खोसी का परेशानी होले ना तो उमन भी एकर काढ़ा बना के पिए में लाभ मिलेला। हाँ एक साथ जब खाए पिए का बात करो थी ना तो ए समय में ए मौसम में जौन परिवर्तन का मौसम हो गए खाए पिए में भी बहुत चीज बरजल जाला ना।
0: बहुत चीज बरजल जाला भाई, एमे देखा विधान भी ये हो कि हरा पत्तेदार सब्जी हो या दही हो दूध हो ई कुल चीज ना खाए के चाही, और काहे ना खाए के चाही एकर वैज्ञानिक विधान ई हो कि एमे जौन हो ना संक्रमण का खतरा रहला, देही के संक्रमण हो जाए ए खातिर एमे मना करल गए हो कि ई कुल से दूर रहे के चाही। एगो और बात ई कहल गए ना कि अगर हम लोगन प्रकृति से जुड़ के रही तो अपन स्वास्थ्य ऐसे ही बनल रही, काहे कि देखा बतावल भी गए हो कि एमे ई कुल चीज खाए से दूर रहे के चाही, अब भुइया में शयन करे के चाहिए मने सुत्ते के चाहिए भुइया में, कहे से कि हम लोगन का देही हो जब वो भुइया में सुतब हम लोगन तो वो प्रकृति से जुड़ल रही, तो ये जो चातुर्मास हो ना ये हम लोगन के सीधे सीधे अपने प्रकृति से अपने पर्यावरण से जोड़ के रखेला।
1: बिल्कुल ये तो बहुत पते का बात कहलू है, अब बहनी लोगन सुनत हैं तो उन लोगन के भी निक लगत हुई हम लोगन के बत कही, लेकिन हम लोगन और भी निक निक बत कही करब इस संदेश के बाद।
2: डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं, इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: एक प्रकार से पीएम जय

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत।
1: उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ। 0542227658।

0: गुंजा
1: हाँ
0: सनेस तो हो गई। आ हम लोगन कहत रही ना कि बहनी लोगन से और निक निक बत कही करब, तो अब बतावा तू का लेके आयलू बहनी लोगन बदे।
1: भाई बहनी लोगन के लिए तो लेके आए ली एगो ऐसा चीज जेके सुने के बाद बहनी लोगन के बड़ा लाभ मिली। कैसे की देखा हो लाली दीदी, जब घर गृहस्थिन के से काम करे के बाद जब समय बचेला ना, तब बहनी लोगन अगर ओकर सदुपयोग करें तो देखा हाथ में तनी पैसा भी आ जाए, और जब पैसा आई तो भाई आर्थिक रूप से परिवार मजबूत होई, और परिवार का जोन बचल खुचल काम जोन की पैसा ना रहले से रुक जाला वो भी पूरा हो
0: ई तो
1: सकी।
0: बिल्कुल सही बात कहलो हो गुंजा। अपने खूटे अगर पैसा रहेला ना तो बहुत ताकत रहेले। हाँ माने अपन पैसा अपन ताकत रहेले, अपन शक्ति रहेले, तो हर केहू के भाई आत्मनिर्भर रही के चाहिए।
1: तो यही खातिर देखा बहनी लोगन के लिए जो बत कही लेके आ गया आवल जाएला ना, तो ओकर विषय है आजकल लघु एवं कुटीर उद्योग घर से व्यवसाय तक। अप्रिया सिंह से बतियावत हैं शिखा श्रीवास्तव बहनी, तो एके बहनी लोगन सुने।
0: श्रोता बहनी, आज का जो महिला है, चाहे वो गवई कहो चाहे शहरे कहो, सब केहू घरे के साथे साथे बहरे भी काम करत है। आज हम अपने कार्यक्रम में बुलवले हई प्रिया सिंह जी के, ई शोध वैज्ञानिक हैं साई ग्रामीण विकास संस्थान बाबतपुर वाराणसी में, और आप लोगन के जानकारी दी है लघु और कुटीर उद्योग कैसे कल जा सकेला, कैसे आप एके व्यवसाय के बढ़ा सकेलिन, आगे ले जा सकेलिन अपने आप के और आत्मनिर्भर बन सकेलिन। तो बहनी आपका अपने कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करत है।
2: धन्यवाद आपका।
0: आप बहनी लोगन के पहले ये बताई कि ई लघु और कुटीर उद्योग का होला, कौन कौन चीज के व्यवसाय से जोड़ के हमन लघु और कुटीर उद्योग के श्रेणी में शामिल कर सकी।
2: जी, सबसे पहले मैं कुटीर उद्योग के बारे में बता दूं। कुटीर उद्योग वो होते हैं जिनको हम घर से, जो भी बिजनेस हम घर से शुरुआत

0: कर सकते हैं। जैसे आप में हुनर है अचार पापड़ बनाने का, ब्यूटी पार्लर हुआ, ट्यूशन हुआ, या ऑनलाइन कुछ कोर्सेज को हुआ, या घर पे आप हर्बल चीज़ों, जो भी उत्पाद आप घर पे बना सकते हैं उसको हम कुटीर उद्योग कहते हैं। वही लघु उद्योग मतलब वही आप बिजनेस थोड़े बड़े में, इसमें आपको कुछ मशीन की और कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, मतलब ये थोड़ा बड़े लेवल पे होते हैं, तो वो लघु उद्योग कहलाते हैं।
1: अच्छा, तेमन पूंजी का कितना अनुपात रहत हुई कि कितना पूंजी लग
0: जी,
1: जाएगा?
0: कुटीर उद्योग में पूंजी, इसमें यही सबसे बड़ी फायदा है कि पूंजी बहुत कम लगती है। आप इस व्यवसाय को अपने घर से शुरू कर सकते हैं। जैसे आप अगर चाहे, अगर आपके हाथों में हुनर है अचार अच्छा बनाने का, पापड़ बनाने, या बरी, या कुछ भी खाद्य उत्पाद हुआ, अगर आप में हुनर है तो आप उसको घर पे रहकर आप कम पूंजी में वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी
1: तो ऐसे मतलब एक सफल व्यवसाय शुरू कर जा सकेला।
0: जी इससे महिलाओं को भी और युवाओं को भी ये फायदा है कि आपको नौकरी के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और आप अपने घर को भी देख सकते हैं और इस व्यवसाय को भी शुरू कर सकते हैं कम पूंजी में, सीमित संसाधन में, और आपके जो

0: कौन बात पे ओके ध्यान देवे के चाही कि हम ई शुरू करे जाते त ए तरह से शुरू करी ई बात पे हमके ज्यादा विचार करे के।
1: सबसे पहले तो अपनी रुचि को पहचानिए, आपका हुनर किस में है, कि मैं क्या चीज़ अच्छा कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं घर से ये काम अच्छे से बरी हुआ, या जो भी हुनर आपके अंदर, सिलाई कढ़ाई बुनाई या बेकरी का काम या भोजन बनाना, तो टिफ़िन सर्विस जैसे हुए, ये सब आप पहले आप पहचानिए कि आपके हुनर क्या है, आपके अंदर गुण क्या है। उसके बाद आप थोड़ा बाजार का अध्ययन कीजिए कि बाजार में किस तरह की डिमांड है, और अगर आपने इन सब चीज़ों का अध्ययन कर लिया तो आपको ये देखना होगा कि उसकी पैकेजिंग कैसे करें, मतलब डिमांड जैसा है उसके अकॉर्डिंग उसका पैकेजिंग, उसका ब्रांड बनाना, उसका तैयारी करना, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। और सबसे बड़ी बात कि कम पूंजी से स्टार्ट करें, एक साथ पहले ही बार में बड़ी पूंजी लगाना ये सही नहीं है, थोड़ी पूंजी से स्टार्ट करिए। उसके बाद जब आपका बिजनेस थोड़ा बढ़े, ग्राहक बढ़े आपके, तो जो भी आपको पूंजी मिले उसको वापस उसमें ला कर अपने बिजनेस को और बड़ा बना सकती हैं आप।
0: जब बड़ा बनावे का बिजनेस आप बात करत हैं, तो बड़ा बनावे बदे का उनके अलग से कुछ प्रयास करे कि होई भाई, कबो कबो तो ऐसा होला ना कि बहुत बहने लोगन के देखी ला कि वो काम शुरू कर देती, लेकिन उनकर बिजनेस बढ़त नहीं है, वो व्यवसाय जहाँ पर से शुरू कैलिन है वहीं पर धीरे धीरे धीरे धीरे चलत हो, उतने पर तो वो आगे बढ़ावे एकरे बदे का करे के होई।
1: सबसे बड़ा रोल इसमें मार्केटिंग का है। अगर आपका मार्केटिंग अच्छा हो रहा है, आपके ग्राहक जुड़े हुए हैं, जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए आपने अपने घर से अचार पापड़ या छोटा मोटा काम आपने शुरू किया, आपका क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन ग्राहक कम है, तो अपने ग्राहक को बढ़ाए, उसके पैकेजिंग पे ध्यान दीजिए। और ग्राहक बढ़ते हैं तो आज के समय में मोबाइल ही आपका सबसे बड़ा दुकान है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप उस चीज़ों का प्रचार करके उन चीज़ों को पहले अपने मार्केट में, मार्केट से शहर में, शहर से आप सिर्फ घर बैठे मोबाइल से ही आप पूरे देश में, इवन विदेशों तक अपने सम प्रोडक्ट का प्रचार कर सकती हैं। जी, इसका डिमांड भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि इसको पहले एक दो महिलाओं ने ही शुरू किया था, धीरे धीरे कर करके मेहनत से और क्वालिटी पैकेजिंग पे ध्यान देकर इसको पूरे देश भर में ये प्रसिद्ध हो गया।
0: अच्छा, लघु और कुटीर उद्योग अगर केहू बहिन शुरू करत हैं, तो का उसमन स्वयं सहायता समूह का भी कुछ योगदान होला, भूमिका ले
1: जी
0: सकेली?
1: जी बहुत ही योगदान है, स्वयं सहायता समूह आपको छोटे मोटे लोन देने में भी आपकी मदद करती हैं, और कई इसमें कई सारे महिलाओं का मिलकर एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकती हैं, या परिवार के सहयोग से, या आप इन महिलाओं के सहयोग से, ऐसे कई सारे महिलाएं हैं जिन्होंने अभी भी हर्बल साबुन का बिजनेस जिन्होंने शुरू किया है, एक दो महिलाओं ने ट्रेनिंग लिया, उसके बाद उन्होंने स्वयं सहायता समूह से संपर्क किया, अभी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अगरबत्ती, धूप बना रही हैं, साबुन बना रही हैं, उसको मार्केट तक ले जा रही हैं, तो इसका उनको बहुत लाभ हुआ है, इनके परिवार को और उनको, और आगे भी महिलाएं से जुड़ रही हैं।
0: आप
1: जी
0: तो प्रशिक्षण देते हैं एक
1: जी
0: घड़ी, तो
1: जी
0: कितना महिला आप लोगों से जुड़ सकल जुड़े हैं अभी ले?
1: बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने, जो अक्सर कहती हैं कि मैंने यहाँ से स्टार्टिंग किया था और मैं यहाँ तक पहुँच गई, आज मैं अपने अपने बलबूते अपने बच्चों का फीस दे रही हूँ, अपने लिए स्कूटी खरीद ली, या मैं अपने लिए आज मैं अपने पैरों पे खड़ी, मैं अपने परिवार में आर्थिक योगदान में सहयोग कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे लिए।
0: अच्छा, इतना बात आप अगर बतावत हैं तो चुनौती भी तो बहुत होत हुई उन लोगों के आगे।
1: चुनौती जी है इसमें है कि पूंजी की कमी, बहुत सारी महिलाओं का कहना है कि हमें उतनी पूंजी नहीं मिल पाती, और मार्केटिंग की कमी, ज्ञान की कमी, या बाजार में किस चीज़ का डिमांड अधिक है, और इस इन सब चीज़ों को, या कंपटीशन बहुत है। लेकिन अगर आपके मन में विश्वास है कि नहीं मुझे करना है और मैं समय समय पे प्रशिक्षण लूंगी, उन लोगों से मिलूंगी जी जो ये काम पहले से कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड किस चीज़ का है, किस तरीके से है, और अपने पैकेजिंग, और सबसे बड़ी बात कि अपने ग्राहकों का विश्वास और क्वालिटी पे ध्यान देंगे, तो ये चुनौती ही आपकी आगे सफलता का माध्यम बन सकता है।
0: बहुत
1: जी
0: नीक नीक जानकारी आप देत हैं बहनी लोगन के, और अगर केहू बहनी ए तरह का व्यवसाय शुरू करी चाहत हैं तो उनके ऐसे लाभ मिली ये जानकारी से आपके। अच्छा, एक जानकारी और हम जानल चाहते कि अगर कोनो बहनी लोगन हैं जौन केहू नाम से अपन खोलल चाहत हैं कुटीर उद्योग या लघु उद्योग, तो ओकरे बदे उनके का करे के होला?
1: इसमें आपके देखिए सरकार भी बहुत सहयोग दे रही है, इसमें ऐसा MSME के द्वारा आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना होगा
0: अच्छा
1: अपने, जी आपके नाम

0: से उसमें आपको रजिस्ट्रेशन वो हो जाएगा, तो आपका प्रधानमंत्री मुद्रा लोन और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे कई सारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, और उसमें आपको सरकार लोन देती है। अगर आपको कहीं से भी मतलब आपको कमी हो तो आप वहां से लोन लेकर अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ दिक्कत है, मतलब कुछ समस्या आ रही है, तो आप अपने नज़दीकी जिला केंद्र पर जाके, जहाँ सरकारी ऑफिस है वहाँ पर जाके आप अपनी जानकारी या अपनी समस्या वहाँ पर आप सुलझा सकते हैं। जी
1: अच्छा, मतलब इतना करी हैं, पहले रजिस्ट्रेशन कराई हैं तब वो नाम रख सकेले अपने
0: हाँ
1: ऊपर,
0: हाँ
1: और ओकरे गुणवत्ता के जांच कौन के करेला?
0: गुणवत्ता की जांच के लिए भी आपके बहुत सारे उसके डिपार्टमेंट हैं, लेकिन
1: अच्छा।
0: अगर आप रजिस्ट्रेशन एक बार करवा सकते हैं, तो अगर करवा लेंगे तो उससे आपको आसानी रहेगी। आपका क्वालिटी, ये तो आपको सबसे पहले खुद आपको ही ध्यान देना होगा कि अगर आपकी क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी रहेगी तभी आपके ग्राहक जुड़ेंगे, और ग्राहक जुड़ेंगे तभी आप सफल व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। संतुष्ट हैं अगर ग्राहक आपके।
1: आपके संस्थान में ये घड़ी कौन कौन तरह का चीज बनावल जाता, और व्यवसाय आपका कितना आगे
0: जी
1: बढ़ता
0: हमारे
1: जा?
0: यहाँ हर्बल साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, तेल हो गया, अगरबत्ती, धूप, हवन कप, प्राकृतिक कलर, रंग जैसे कि फूलों को सुखाकर।

0: शैम्पू हो गया, तेल हो गया, अगरबत्ती, धूप, हवन कप, प्राकृतिक कलर, रंग जैसे कि फूलों को सुखाकर, और जो धूप अगरबत्ती है वो भी फूलों को, मंदिर में जो फूल चढ़े हुए होते हैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उनको सुखाकर उससे धूप अगरबत्ती बनाए जाते हैं, जैसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जो बन रहे हैं।
1: अच्छा, कितना दिन से आपका ये चला था संस्थान?
0: ये तो कई सालों से चल रही हैं, मतलब काफ़ी साल हो गए, बहुत सारी महिलाएं ट्रेनिंग लेकर इसको अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर ली हैं, और वो सारी महिलाएं अभी भी जुड़ी हैं, वो कहती हैं कि हमने ट्रेनिंग लिया तो इसका हमने, मतलब एक सफल हुआ हमारा ट्रेनिंग लेना, क्योंकि हम अपना व्यवसाय खुद शुरू किए और खुद के साथ साथ हम दूसरों को भी रोजगार देने में सक्षम हैं। अब हमें नौकरी ढूंढने की या बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है।
1: बिल्कुल सही बात है। अच्छा,
0: जी
1: कितना दिन का प्रशिक्षण आप दे ला वही लोगन के?
0: जी आपके प्रोडक्ट, जैसे कि आप अगर एक या दो प्रोडक्ट चुन रहे हैं तो उसके लिए हफ्ते भर, 10 दिन, या अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट या मतलब सीखना है तो उसके लिए आपको महीने भर भी लग जाते हैं।
1: फिर उसके बाद उनके आप प्रमाण पत्र भी दे ला?
0: जी, उसका प्रमाण पत्र भारत सरकार की तरफ से उनको मिलता है, जिसकी मदद से वो, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना उनके लिए आसान हो जाता है।
1: अच्छा, व्यवसाय की अगर बढ़ावल चाहते हैं बहनी लोगन, तब पूंजी कहाँ तक सरकार से मिल सकेला?
0: जो सरकार इसमें कई सारी की योजनाएं चला रही हैं, जैसे मैंने बताया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आपका मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की जी की तरफ से कई सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं आजीविका से संबंधित।
1: मतलब जितना बहनी लोगन
0: जी
1: अगर शुरू करल चाहती तो वो हिसाब से लोन ऋण का जोन है मांग
0: हाँ
1: कर
0: हाँ
1: सकेलिन, तो
0: जी
1: मिली उनके।
0: जी जी
1: अच्छा, बहुत निक लगा था और निक निक जानकारी आप बहनी लोगन के दे थे, लेकिन समय भी बहुत अब कम रह गईला, तो चलत चलत बहनी लोगन के बदे आपका का संदेश?
0: जी मेरा यही संदेश है कि सबसे पहले अपने रुचि को, अपने कौशल को पहचानिए कि आपका रुचि किन चीज़ों में है, आप क्या चीज़ अच्छा कर सकती हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आप बिस्किट केक बना सकती हैं तो आप उसमें अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं, या अचार पापड़ हो गया, या धूप अगरबत्ती हो गया, तो सबसे पहले उसको पहचानिए और अपनी रुचि के अनुसार अगर आप काम करेंगी तो वो व्यवसाय सफल होने की संभावना ज़्यादा है।
1: बहुत
0: और
1: बढ़िया
0: इस
1: बात।
0: बात का ध्यान रखिए कि कोई भी बड़ा बिजनेस एक छोटे प्रयास से ही शुरू हुआ है, तो आप एक छोटा प्रयास करिए और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए, क्वालिटी पे भी ध्यान दीजिए और अपनी रुचि को पहचानिए।
1: बहुत अच्छी
0: धन्यवाद।
1: बात आप बतौलिन हा प्रिया सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में एलिन, और लघु और कुटीर उद्योग कैसे घर से व्यवसाय तक ये जुड़ल जा सकेला, ये विषय पर इतना निक जानकारी देलिन, ये जानकारी देवे बदे आपकी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
1: गुंजा देखा बहनी लोगन, अभी सुनत रहीन हा इन्हीं के कब्बत कही, लघु और कुटीर उद्योग घर से कैसे व्यवसाय तक जुड़ल जा सकेला, प्रिया सिंह से बतियावत रही हा हम। लेकिन बत कही जब हो जाला ओकरे बाद मन डोले लगेला कि कुछो मन मनसायन भी हो जाए।
2: तो हम समझत हई ना कि तू का कहल चाहत हऊ।
1: तो
2: अब भाई
1: समझत
2: बहनी
1: हम
2: लोग,
1: तो
2: बहनी लोगन भी अपन यही जोहत हईन कि आज लाली और गुंजा मिल के का सुनवावत हईन हम लोगन के, तो चला बहनी लोगन के साथ मिल के सुनल जाए ई गीत।

0: गुंजा,
1: हाँ
0: नीके का गीत रहल हा, मन तो बहुत करत रहल हा कि और सुनत जाए सुनत जाए, लेकिन देखा ना बीचे में घड़ी भी आ जाए ले कहे ले कि चले के बेरा होता, लेकिन चले से पहले बहन लोगन के चेता दिहल जाए कि बरखा बुन्नी का मौसम जितना निक लगेला ना
1: हाँ
0: उतना उमन संभर के भी रहे का जरूरत होला, काहे कि जौन भी जीव जंतु होला ना ईरा बिछी अगर
1: हाँ
0: बिली के अंदर लुकायल रहले ना तो यही मौसम में कुल निकल के बहरी आवेला।
1: तो भाई ऐसने में अपन सुरक्षा जरूरी हो और लइकन बच्चन का भी सुरक्षा जरूरी हो। कहाँ से कि भाई लइकन बच्चन त जब मान ल सुत जइहन त सुते जइहन, फिर उनके के काटत हो कैसे काटत हो के हो कौन कीड़ा बिछी हो भाई लइकन बच्चन त ना बता पइहन, लेकिन एकर पूरी जिम्मेदारी महतारी पे के बनेला कि भाई अपने लइकन बच्चन और संगे संगे अपने परिवार के कुल जनी का सुरक्षा करके रहे।
0: एकरे साथे साथे स्वच्छता का भी विशेष ध्यान देवे का ए समय में जरूरत होली। ए मौसम में इतना माछी लगेलिन, इतना मच्छर आवेलन कि अगर साफ सफाई से न रहे मने तो वो बहुत नुकसान कर सकेला उनके स्वास्थ्य के।
1: हाँ आ संगे संगे बहनी लोगन अपने खायल पियल का भी ध्यान रखें, हल्का खाना खाएं और ताजा खाना खाएं।
0: फिर चेते चेतावे बदे हमन आइब जा, अब देखा चले का बेरा होता ना तो चला चलल जाए, बहनी लोगन से कहल जाए
1: नमस्ते।

ग्रामीण महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम मंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हुए हैं। लोक संगीत कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है लोकगीत। कलाकार हैं सरोज वर्मा। पहले सुनिए इनका गाया एक दादरा।

0: इस कजरी के साथ ही आज का लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम में कलाकार थीं सरोज वर्मा। इनके गाए कुछ और लोकगीत आप शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं।
1: पर मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते

0: CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates four special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. And in men's cricket, India to take on host Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई, 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों में राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
3: सीआरपीएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थयात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार

0: बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ AI का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और AI द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे

0: और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
1: और अभी अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे News1 AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र के बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा JP सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर DP सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को News on AIR ऐप और News on AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और CGP के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष

गीतांजलि आप सुन रहे हैं शिखा के साथ, और आज की ये गीतांजलि हम लेकर आए हैं जिंदगी से भरे कुछ गीतों के साथ। जी हाँ, जिन गीतों में जिंदगी लफ्ज आता है और जो जिंदगी के फलसफे बयां करते हैं, कुछ ऐसे ही गीत आज आप सुनेंगे आज की इस गीतांजलि में। अब जिंदगी का पहला जो उसूल है, खुसरो साहब फरमा गए हैं ना कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो जिंदगी के दरिया में तो आपको गहरे उतरना ही पड़ता है, मझधार ही सही आपको आपकी मंजिल आपके किनारे तक पहुंचाती है। आइए आपको फिल्म आंधी से एक गीत सुनवाते हैं।

जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है। आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ और है। जिंदगी के कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम ढूंढते रहते हैं। जवाब मिलता भी है, पर तब तक कई और सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में यहाँ। किसी का काश तो किसी का अगर छूट ही जाता है, और ये जिंदगी एक पहेली जैसी रह जाती है।

0: कभी तो हंसाए।
1: जिंदगी की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। कोई कहता है कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, तो कोई कहता है जिंदगी एक ट्रेन की तरह है जो समय की पटरी पर तेजी से दौड़ रही है और हमें राह में कई लोग भी मिलते हैं, उनसे जान पहचान होती है, कुछ दूर तक साथ भी होते हैं और फिर वो अपनी मंजिल की तरफ और हम अपनी मंजिल की तरफ। एक शायर की नजर से देखें तो जिंदगी एक नगमा है, प्यार का नगमा है।

जिंदगी में कई ऐसे मुकाम आते हैं जब फैसले लेते समय हम कई बार सोचते हैं कि दिल की सुने या दिमाग की। दिल से लिए हुए फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन उनका कभी अफसोस नहीं होता। अगर हम कोई भी फैसला अपने दिल से लेते हैं तो अपना खुद का फैसला होता है, वो किसी का थोपा हुआ नहीं होता। हम उस पे दिल से ही काम करते हैं और खुश रहते हैं। तो अच्छी जिंदगी जीने के लिए यकीन मानिए, दिल से ही फैसले लेने चाहिए। एक ना एक दिन आपको लगेगा कि हाँ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, फिर भले ही उस फैसले के पीछे पूरी दुनिया की नाराजगी ही क्यों ना रही हो। एक दिन जिंदगी में सब अच्छा हो ही जाता है।

अक्सर हम बड़ी खुशियों का पीछा करते करते छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जिंदगी में बड़ी खुशियां, बड़े लक्ष्य जरूरी तो हैं, पर उन्हें पाने की कोशिश में छोटी छोटी खुशियों को नहीं खोना चाहिए। बड़े सपने, बड़े लक्ष्य हमें संतुष्टि तो देंगे, लेकिन जिंदगी की जो सच्ची खुशी है ना, वो छोटी चीजें ही देती हैं। जैसे हम बच्चों के लिए बचपन से ही बड़े बड़े लक्ष्य तय करते हैं, पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर। ये लक्ष्य पूरे होने पर जिंदगी मुकम्मल भी लगने लगती है, पर दिल को खुशी मिलती है दोस्तों से मिलकर, उनके साथ मस्ती करके, या मनपसंद संगीत सुन के, या फिर परिवार के साथ बैठकर मनपसंद डिनर करके। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी खुशियां हैं जो आपके दिल के करीब हैं, और ये ही खुशियां जिंदगी के असल मायने सिखाती हैं। तो

फिर परिवार के साथ बैठकर मनपसंद डिनर करके। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी खुशियां हैं जो आपके दिल के करीब हैं, और ये ही खुशियां जिंदगी के असल मायने सिखाती हैं। तो बड़ी खुशियों के पीछे छोटी खुशियों को छोड़ देना, ये तो गवारा नहीं है हमें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि, प्रस्तुति शिखा श्रीवास्तव की थी।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं, आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलो हर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। प्रस्तुत है नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: नन्हे मुन्ने साथियों,
1: जय हिंद।
0: जय हिंद तंजिल दीदी।
1: जय हिंद कंचन दीदी।
0: कैसी हैं आप?
1: मैं तो अच्छी हूँ
0: भाई। मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद है हमारे नन्हे साथी भी अच्छे होंगे। आजकल खाने की तो बहुत सारी वैरायटियां आ गई हैं, तरह तरह की सब्जियां। भाई मक्का पसंद है बच्चों को, यानी कि स्वीट कॉर्न। तो इनसे तो हम बहुत सारे पौष्टिक नाश्ते टिफिन के लिए और घर पे भी बना सकते हैं ना।
1: बिल्कुल।
0: और हमारे नन्हे साथियों को ये पसंद भी आते हैं। तो नन्हे साथियों को बाहर का कुछ भी खाने की बजाय अपने घर में ही बना करके खाना चाहिए।
1: हाँ कंचन दीदी, बिल्कुल। क्योंकि जैसे हमारे नन्हे मुन्ने जो साथी हैं, उनके खिलौने होते हैं ना, टॉय वाली जो कार होती है तो उसमें बैटरी लगती है, तो अगर हम उसकी बैटरी निकाल दें तो क्या वो चलेगी? नहीं ना। तो ठीक कंचन दीदी, उसी तरह हमारा जो शरीर होता है वो भी गाड़ी की तरह काम करता है। अगर सोच लीजिए, हम अगर अच्छा खाना नहीं खाते, हमें ताकत नहीं रहेगी, तो क्या हमारा शरीर काम करेगा?
0: बिल्कुल नहीं करेगा। तो नन्हे साथियों, अच्छे से घर का बना हुआ खाना खाइए। बाहर की चीजों की जिद अब थोड़ी कम करिए। अगर आपको कुछ खाने का मन भी कर रहा है कभी कभार, तो आप उसे घर में बनवाइए। मम्मी से कहिए, दीदी से कहिए, और खाने पीने में बिल्कुल भी नुक्स मत निकालिए, है ना दीदी?
1: देखा बच्चों, कंचन दीदी ने कितनी अच्छी बात बताई है। बारिश का मौसम चल रहा है, तो ऐसे मौसम में तो बाहर के खाने से बिल्कुल दूरी बनाकर रहें, क्योंकि अगर आप बाहर का खाना खाएंगे तो आप जल्दी बीमार पड़ेंगे।
0: भाई इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो पनपते हैं, तो ऐसे में जो भी चीजें बाहर बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं, हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, और अलग अलग तरह के घी तेल का भी इस्तेमाल होता है, और जो चीजें बनती हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। भाई बाहर की चीज अगर खानी भी है आपको, तो फल खाइए, आम खाइए, अमरूद खाइए, केले खाइए, है ना दीदी?
1: बिल्कुल।
0: और इन्हें भी घर लाकर अच्छे से धुल करके, साफ सुथरा करके, काट करके तब खाइए, है ना दीदी?
1: क्योंकि सोचिए, अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो फिर आप खेले कूदेंगे कैसे?
0: और खेलना तो बहुत जरूरी है दीदी।
1: जितनी पढ़ाई जरूरी है, उतना ही बच्चों के लिए खेलना भी जरूरी है।
0: बच्चे खेलेंगे तभी तो उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, स्फूर्त रहेगा, और दिमाग भी अच्छा होगा,
1: पढ़ाई में भी मन लगेगा।

0: नन्हे साथियों, बाहर जाके खेलना बहुत जरूरी है। घर में तो आप पूरे टाइम रहते हैं, स्कूल जाते हैं, सुबह उठते हैं तब भी आप घर में ही रहते हैं, आपके पास समय नहीं होता कि आप बाहर जाके खेल पाएं। लेकिन जब आप स्कूल से आते हैं तो शाम में थोड़ा समय अपने खेलने के लिए बाहर अपने मित्रों के साथ जरूर निकालिए। और बाहर खेलेंगे ना तो आपको ज्यादातर अलग से व्यायाम भी नहीं करना पड़ेगा, है ना दीदी?
1: लेकिन कंचन दीदी, आजकल तो बच्चे स्कूल से आते ही बस मोबाइल लिए और उनको मोबाइल के साथ ही खाना है, तो उनको बताइए ये कितना गलत है।
0: गलत तो है भाई, मोबाइल की आदत होना ये ही अपने आप में एक बहुत बड़ी गलत बात है। बच्चे आजकल हर चीज मोबाइल से करते हैं, उनको कुछ भी करना है तो वो मोबाइल की जिद करते हैं, और माता-पिता उनकी जिद मान भी लेते हैं, क्योंकि इस व्यस्ततम जीवन में वो भी सोचते हैं कि मेरा काम अच्छे से हो जाए, कोई हमें परेशान ना करे। तो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए अधिकतर माता-पिता बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। लेकिन नन्हे साथी, आपको तो सोचना होगा ना कि मोबाइल बहुत ही हानिकारक है आपकी आंखों के लिए, आपके दिमाग के लिए, है ना दीदी?
1: बिल्कुल कंचन दीदी, बातें तो बहुत हो गई, अब अपने नन्हे साथियों को एक प्यारा सा गीत सुनवा दिया जाए।

0: दीदी भला आँख में चोली, दाई आँख बंद की बाई आँख खोली।
1: किसने?
2: मैंने?
1: नहीं तो?

0: हमारे नन्हे साथियों ने गीत तो सुन लिया। भाई तंजिल दीदी, रोचक दीदी भी तो आके बैठी है ना अपनी जानकारी का पिटारा लिए।
1: हाँ दीदी,
0: तो चलो नन्हे साथियों को सुनवाते हैं रोचक जानकारियाँ रोचक दीदी से।
2: बच्चों नमस्ते, आ गई है रोचक दीदी फिर एक बार लेकर जानकारियों का पिटारा। ये आवाज सुनी आपने? ये घंटी की आवाज किसकी है? ये आवाज पहचानिए पहचानिए तो। ये है आपकी हमारी प्यारी साइकिल की घंटी। बच्चों हम सभी को साइकिल चलाना बड़ा अच्छा लगता है ना? तीन पहिया साइकिल हो या दो पहिया, छोटी हो या बड़ी, गियर वाली हो या बिना गियर वाली, हम सभी को बड़ी प्यारी लगती है अपनी साइकिल। सरपट दौड़ती हमारी साइकिल जब हवा से बातें करती है तो यूं लगता है मानो हमें पंख लग गए हैं। वैसे बच्चों ये सामान्य से दिखने वाली हमारी साइकिल आज हमें जैसी दिखती है ये पहले ऐसी नहीं थी। कई लोगों के प्रयासों के बाद समय के साथ साइकिल के डिजाइन्स में कई सारे बदलाव किए गए, तब कहीं जाकर आज हम जो साइकिल चलाते हैं ये साइकिल बनी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शुरुआती दौर में साइकिल जो थी लकड़ी की हुआ करती थी और इसमें पैडल भी नहीं होते थे। बताइए लकड़ी की साइकिल बिना पैडल वाली तो फिर ये चलती कैसे थी? अरे पैरों से ढकेल कर चलाना पड़ता था इसे। उफ बाप रे, अच्छी खासी कसरत हो जाती होगी चलाने वाले की। और इसे क्या कहा जाता था बताऊं? इसे कहा जाता था काठ का घोड़ा। है ना मजेदार? और धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ और फिर बनी पैडल वाली साइकिल। वैसे साइकिल के डिजाइन्स में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। ऐसी भी साइकिल थी जिसके आगे के जो पहिए थे वो पीछे के पहियों से बहुत बड़े होते थे। अब पीछे के पहिए छोटे, आगे के पहिए बड़े। सोचिए जरा, ऐसी साइकिल पर एक स्टैंड के सहारे उछल कर बैठना पड़ता था और चलाते समय आगे अगर कोई रुकावट आ जाए तो ब्रेक लगाने पर चालक जो था गिर जाता था। और सबसे कठिन काम जो था वो था ऐसी साइकिल से नीचे उतरना। तो भाई आज की जो हमारी साइकिल है जिसे आप हम सरपट दौड़ाते हैं, जिसे आसानी से हम कहीं भी ले जा सकते हैं, और तो और बच्चों साइकिल चलाने से सेहत भी अच्छी रहती है। तो जब भी आपको समय मिले खेल कूद के लिए तो मोबाइल और लैपटॉप से थोड़ा सा दूर हटिए, बाहर निकलिए अपनी साइकिल लेकर अपने दोस्तों के साथ, बड़ा मजा आएगा। फिलहाल मैं अपनी साइकिल लेकर जा रही हूँ, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तो रोचक दीदी कहती है आप सभी बच्चों से बाय बाय।
1: अभी हमारे नन्हे साथी सुन रहे थे रोचक दीदी को।
0: दीदी इस समय सबसे ज्यादा जरूरी एक बात और भी है,
1: साफ सफाई।
0: साफ सफाई से अगर रहेंगे ना तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे
1: और स्वस्थ रहेंगे,
0: जो कि बहुत जरूरी है हमारे नन्हे साथियों के लिए। उनको स्कूल जाना है, उनको पढ़ाई करना है, अगर वो बीमार हो जाएंगे तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे, और सबसे जरूरी वो खेलने कैसे जाएंगे।
1: तो साफ सफाई में सबसे जरूरी है कि सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखें। रोज सुबह उठकर सबसे पहले नहाएं और ब्रश रोज करें, वो भी एक बार नहीं दो बार, और अपने हाथ के नाखूनों की सफाई जरूर करें।
0: तंजिल दीदी कहना चाहती हैं कि अपने नाखून बाल इसकी देखभाल करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नाखून नहीं काटेंगे तो नाखूनों में जो गंदगी भरेगी वो हमारे पेट में जाएगी, क्योंकि बच्चे अक्सर अपनी

0: बीमारियों को मुंह तक ले जाते हैं, जो कि उन्हें नहीं भी करना चाहिए, है ना दीदी?
1: लेकिन कंचन दीदी, हमें अपनी सफाई के साथ साथ अपने घर, अपने स्कूल, आसपास की जगहों को भी ध्यान देना है कि ये सभी साफ सुथरे रहें।
0: हमने अपने नन्हे साथियों से तो बहुत सारी बातें कर ली दीदी, अब हम फिर मिलेंगे उनसे, क्योंकि घड़ी दीदी हमसे कह रही हैं कि अब समय हो चला है बच्चों से अनुमति लेने का। तो नन्हे साथियों, अनुमति दीजिए अपनी दीदी कंचन को,
1: अपनी दीदी तंजील को।
0: जय हिंद।

नन्हे मुन्ने बच्चे अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है युवा साथियों का प्रोग्राम युवावाणी।

0: जब नाम तुम्हारा खोजा जाए और काम तुम्हारा जग परछाए, उत्कृष्टता का तुम उदाहरण बनो, आम जन में असाधारण बनो।
1: बिल्कुल दोस्तों, कभी भी हमें दूसरों की तरह नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने खुद की एक अलग पहचान बनानी चाहिए। साथ ही अपने दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहना चाहिए।
0: हाँ, क्योंकि खुद की मेहनत से दुनिया में अपना नाम बनाना सभी के लिए एक उदाहरण होगा।
1: इन्हीं बातों के साथ स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूँ आपकी दोस्त आलिया।
0: और मैं स्मृति।
1: नमस्कार।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
7: 0542227658।
4: 0542227658।
5: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।
8: दोस्तों आज हम मना रहे हैं विश्व डूबने से बचाव दिवस यानी वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। यह दिन हर साल 25 जुलाई यानी आज के दिन मनाया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अप्रैल 2021 में घोषित किया गया था।
9: इस वैश्विक अभियान का मुख्य उद्देश्य पानी में डूबने से होने वाली मौतों को रोकना और जल सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। डूबना एक गंभीर लेकिन रोकथाम योग्य सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है।
8: दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार पिछले एक दशक में डूबने से लगभग 25 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। यह दुनिया भर में 1 से 24 वर्ष की आयु के लोगों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है।
9: डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए कई कम लागत वाले और प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे तैराकी और जल सुरक्षा। स्कूली पाठ्यक्रम में तैराकी और बचाव कौशल को शामिल करना चाहिए।
8: बिल्कुल, और इसके साथ अवरोध यानी कि बैरियर्स लगाने चाहिए। जब भी स्विमिंग पूल हो तो वहाँ अगर छोटे बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ कुछ बैरियर्स की व्यवस्था हो, या अगर कोई खुला जल स्रोत है तो उसके चारों ओर बाड़ लगानी चाहिए।
9: हाँ, और प्रशिक्षण आसपास के लोगों को सुरक्षित बचाव और CPR का प्रशिक्षण देना चाहिए।
8: बिल्कुल, और साथ ही खास करके दोस्तों ये ध्यान रखें कि अगर बच्चों के साथ आप जा रहे हैं तो पानी से उन्हें दूर रखें किसी सुरक्षित क्रेच या डे केयर में, ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे।
9: इस वर्ष की थीम है एकजुट होकर परिस्थिति का रुख बदलें।
8: और दोस्तों कार्यक्रम में अब वक्त है जानने का कल का सवाल और उसका सही जवाब देकर विनर्स बने लोगों के नाम। तो हमारा कल का प्रश्न था, भारत के पहले और सबसे गहरे जियोथर्मल कुएं का कुआं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किए गए हैं? इसका सही जवाब है लद्दाख।

0: और सही जवाब देकर जो विनर बने हैं,
1: उनके नाम हैं प्रवीर चौहान खरगोन मध्य प्रदेश, मुकेश प्रजापति सिगरा वाराणसी, चंदा चंदौली ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से, प्रेमलाल वर्मा वेदिका वंश निकेश धर्मेंद्र मेघा नंदिनी हर्षिता और ममता बाई वर्मा रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से, सूरज वर्मा नीरज शिवम धीरज चिंता वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा नेपा नगर मध्य प्रदेश से, प्रभु दयाल शिवदे शिवा बसंती बाई और गणेश शिवदे संगीत की नगरी खंडवा से श्यामा बाई रायकवार।
0: आप सभी दोस्तों को ढेरों शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे ही जवाब देकर विनर्स बनते रहेंगे।
1: हाँ, और अब सुनिए हमारा आज का सवाल। सौर मंडल में सौंदर्य का ग्रह किसे कहा जाता है?
0: दोस्तों सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सौर मंडल में सौंदर्य का ग्रह किसे कहा जाता है? आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं हमारी इंस्टा आईडी यूथ AIR वाराणसी पर या हमारी ईमेल आईडी यूथ AIR VNS @gmail.com पर। और अब एंजॉय करिए एक सॉन्ग।

0: दोस्तों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है हमारे और आपके पसंदीदा सेगमेंट यूथ जंक्शन का, जहां हमने बात की है हमारे दोस्तों से कि उनका पसंदीदा त्यौहार कौन सा है, और सभी ने बहुत ही अच्छे से बताया और अच्छे अच्छे जवाब दिए हमें।
1: बिल्कुल, और हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि त्योहारों में क्या क्या तैयारियां वे करते हैं और वो कैसे हर त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे आलिया, ये बताओ कि तुम्हारा पसंदीदा त्योहार कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा त्यौहार तो सारे ही त्यौहार मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि देखो स्मृति, हर त्यौहार में हमें मिठाई खाने को मिलती है, और जिसकी भी मिठाई पसंदीदा है उसे त्यौहार ऑटोमेटिकली पसंद आ जाते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब हम ही बातें करते रहें या फिर अपने श्रोताओं को भी सुनाते हैं हमारी बातचीत?
0: बिल्कुल।
2: हेलो।
1: हेलो, हाँ जी, स्वागत है आपका यूथ जंक्शन में। आप अपना नाम
2: हाँ
1: बताइए और
2: जी,
1: कहाँ से बात कर
2: नमस्ते
1: रहे हैं आप?
2: जी। हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। जी
1: अच्छा जी, आज का, जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक
2: जी
1: है कौन सा त्योहार आपको प्रिय है और क्यों है, तो बताइए कौन सा त्योहार आपको बहुत पसंद है?
2: सबसे ज्यादा अच्छा तो बचपन से दीपावली का त्योहार ही लगता आया है,
1: अच्छा,
2: और कारण तो यही है, उजाले का प्रतीक है, और हमेशा जब भी दीपावली आता है तो जो एक अंधेरे में भी उजाले का मतलब अनुभव होता है।
1: जी, बहुत सही बात कही आपने। तो ये बताइए कि दिवाली के दिन आप क्या क्या करते हैं, जैसे पटाखे फोड़ना, मिठाइयाँ बांटना?
2: और जो पकवान वगैरह बनते हैं तो
1: हाँ,
2: मित्रों को घर पे बुलाना, उनके यहाँ खाने जाना, ये सब मतलब सद्भाव चलते रहता है।
1: तो आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं।

0: ये सब मतलब सद्भाव चलते रहता है।
1: तो आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं इस वक्त आपका?
0: हमारा मूल काम खेती बाड़ी है।
1: अच्छा अच्छा जी, बहुत खूब। और ये बताइए कि क्या खास होता है उस दिन, मतलब क्या किस पर्पस से होता है दिवाली?
0: पर्पस तो यही मान्यता है कि राम जी उस समय मतलब वापस आए थे, और जो ये त्योहार मनाया जाता है प्रायः ये अक्टूबर और नवंबर ये दोनों के आसपास में होता है।
1: हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या सिर्फ दिवाली या और भी कोई त्योहार है जो आपको बहुत पसंद है?
0: नहीं, सभी त्योहार अच्छे लगते हैं, होली भी अच्छे लगते हैं,
1: जी
0: और जो राष्ट्रीय पर्व वगैरह है वो तो फिर उनकी तो बात ही अलग है।
1: और दिवाली हो या कोई भी त्योहार हो, देखिए मजा तो सबको आती है, लेकिन ये बताइए कि
0: जी,
1: आप तैयारी कैसे करते हैं त्योहारों पर, मतलब क्या खास बनाते हैं?
0: अब घर में तो सब बनता है, जो पकवान होते हैं पूरी भजिया, और
1: हाँ
0: जो और पारंपरिक पकवान होते हैं इरसा हो गया, मुठिया हो गया, गुजिया, ये सब बनते हैं।
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप अपनी फरमाइश का कोई गाना बताइए जिसे हम आपको जरूर सुनाएंगे।
0: एक प्यारा सा गीत सुनवा देंगे फिल्म जीवन मृत्यु से। झिलमिल
1: जी
0: सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा।

0: हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका यू जंक्शन में। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ, रहता हूँ अहमदाबाद में, और मेरा नाम धीरज लबारी है। गांव डेर तहसील जिला पाटन।
0: जी, आपको पता है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कौन सा त्योहार आपको सबसे ज्यादा प्रिय है और क्यों है?
1: ये देखा जाए तो दीपावली का त्योहार है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें सभी यानी हमारे जो सगा संबंधी परिवार के सब इकट्ठे होते हैं,
0: जी,
1: और दीपावली भारत का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा त्योहार है।
0: हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बताइए कि आपके पसंदीदा त्योहार की कौन सी परंपरा है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती
1: में खाने की मिठाइयाँ ज्यादा बनती है, इसीलिए ये त्योहार
0: है?
1: मुझे बहुत
0: हाँ हाँ
1: पसंद है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: क्योंकि खाने का एक रीजन रहता है, वजह रहती है। तो त्योहारों में ज्यादातर खाने का मिलता है, या कोई हमारे घर मेहमान आए तब मिलता है।
0: जी बिल्कुल। तो अब जब खाने की बात हो रही है तो ये भी बता दीजिए आपका पसंदीदा पकवान कौन सा है जो आप अक्सर दिवाली पर खाते हैं?
1: हमारे यहाँ शीरा बनता है,
0: अच्छा,
1: यानी वो मीठी वानगी है,
0: हाँ,
1: जो यानी जो गेहूं का है, सोजी है, उससे बनाया जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो देखा जाए तो गुजरात के सभी मिठाई है, यानी खाने की वानगियां है सबसे
0: हाँ
1: बढ़िया, लेकिन यहाँ मीठापन ज्यादा रहता है, यानी चीनी ज्यादा रहती
0: जी
1: है, यानी
0: बिल्कुल
1: गुड़ और
0: बिल्कुल,
1: चीनी।
0: हाँ, गुजरात की तो बात ही अलग है, वहाँ की तो मिठाइयाँ त्योहार पकवान अलग अलग काफी स्वादिष्ट होते हैं।
1: और मिर्च मसाला में भी गुजरात फर्स्ट नंबर है, खाने में तो फर्स्ट नंबर है।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: और उद्योग में और व्यापार में भी गुजरात के जो भी लोग हैं वो चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं, और उसमें आगे भी है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये बताइए कि पहले के समय में जो दिवाली मनती थी और अब के समय में जो दिवाली मनती है उसमें आपको कोई फर्क नजर आता और है तो क्या
1: बहुत
0: क्या
1: बहुत
0: फर्क है?
1: बहुत फर्क नजर में आता है। पहले इंसान में स्नेह था, लगाव था, अभी खाने की व्यंजन ज्यादा पड़े सब कुछ, लेकिन जो
0: जी
1: भाव है वो पहले जैसे भाव नहीं है। भाव में कमी आई है, खाने में मिष्ठानों में कमी नहीं है, लेकिन जो भाव रहता था वो भाव में बहुत कमी आ गई।
0: और मैं आपसे अंत में ये पूछना चाहूंगी कि आप अपने फरमाइश का कोई हमें गाना बताइए जिसे हम आपको सुनाएंगे।

0: हेलो, स्वागत है आपका यूथ जंक्शन में। आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जी, मेरा नाम है श्रुति पांडे और मैं चौगाघाट से, बनारस से बात कर रही हूँ।
0: श्रुति, कैसी हैं आप बताइए।
1: बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए फिर।
0: हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए श्रुति कि आज जो हम अपने श्रोताओं से पूछ रहे हैं कि आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है और क्यों है, तो आप बताइए श्रुति, आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है?
1: जी, मैं जैसे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा तो जो फेस्टिवल है फेवरेट, वो है छठ।
0: अरे वाह, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो क्यों है
1: जी,
0: आपका पसंदीदा, कुछ बताइए हमें उस त्योहार के बारे
1: क्योंकि
0: में।
1: ये हमारे मतलब बहुत ही पुराने समय से इसको फॉलो किया जा रहा है और इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि इसमें सूरज की पूजा होती है, डूबते सूरज की भी और उगते सूरज की भी, इसीलिए काफी लोकप्रिय त्योहार है ये यूपी और बिहार वाले लोगों के लिए।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो श्रुति, ये बताइए कि उस दिन क्या खास बनाते हैं आप लोग, क्या खाते हैं?
1: जी, वैसे तो ये त्योहार 4 दिनों का माना जाता है। जैसे पहले दिन में आप लौकी की सब्जी, रोटी, ये सारी आम चीजें खाकर और व्रत की शुरुआत करते हैं। और फिर उस दिन माताएं बहनें हमारी व्रत करके सूर्य को अर्घ देती हैं, दूध का, जल का।
0: जी, अब श्रुति हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप अपनी फरमाइश का कोई हमें गाना बताइए जो हम आपको सुनाएंगे।
1: जी, मेरी फरमाइश की गीत है।

0: वैसे आलिया, तुमने ये चीज नोटिस किया कि हमारे सारे श्रोताओं को ना दिवाली बहुत पसंद है। तुम्हें पता है इसका रीजन क्या है?
1: बिल्कुल, इसकी रीजंस हैं। एक तो ढेर सारी मिठाइयाँ मिलती हैं, दूसरे बच्चे और बड़े सभी को एंजॉय करता है, तीसरा पटाखे फोड़ने को मिलते हैं। स्मृति, तुम भी पटाखे फोड़ती हो क्या?
0: मुझसे सच पूछो तो मैं बहुत कम ही फोड़ती हूँ, पर फोड़ती तो हूँ क्योंकि मजे आते हैं।
1: बिल्कुल, मज़ा तो आता है, लेकिन इससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो दोस्तों, एक बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम कोई भी त्यौहार मनाएं, हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पर्यावरण को या हमारे आसपास के लोगों को या जानवरों को उस हमारे मनाने के स्टाइल से परेशानी ना हो, उन्हें किसी तरह का कोई दुख ना पहुंचे। क्यों स्मृति?
0: बिल्कुल सही कहा तुमने आलिया।
1: अब दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं शब्दों के बारे में, क्योंकि दोस्तों शब्दों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये शब्द ही हमें बोलने का कॉन्फिडेंस देते हैं और हम अपनी बातें सही ढंग से सबके सामने रख पाते हैं।
0: बिल्कुल आलिया, और इसी विचार के साथ हम लेकर आए हैं युट डायरी, जहां हम हर रोज नए शब्द सीखते हैं।
1: बिल्कुल, और आज का हमारा हिंदी शब्द है विचक्षण था। इसका अर्थ है किसी विषय में पारंगत, कुशल, विवेकी या गहरी परख रखने की अवस्था या गुण। इसके पर्यायवाची हैं बुद्धिमान, विशेषज्ञ, दक्ष। इसका वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि कठिन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की विचक्षणता ही उसकी सही निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाती है।
0: और दोस्तों, आज का हमारा अंग्रेजी का शब्द है यील्डिंग, YIELDING, जिसका मतलब होता है गिविंग वे या सरेंडरिंग। और इसका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, दिस लैंड इज यील्डिंग अ गुड क्रॉप, या फिर द यील्डिंग फार्मर गेव वे टू द हैवी ट्रैफिक।
1: तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के यूथ डायरी के शब्द विचक्षणता और यील्डिंग। उम्मीद है कि आप इन्हें अपने डेली

0: लाइफ में यूज़ ज़रूर करेंगे। और दोस्तों कहते हैं ना कि इतिहास केवल पुरानी घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि हर तारीख अपने साथ कई ऐसी कहानियां लेकर आती है जिन्होंने देश और दुनिया की दिशा को प्रभावित किया।
1: हाँ आलिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। और आज की तारीख यानी 25 जुलाई भी इतिहास के पन्नों में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए दर्ज है। तो आइए जानते हैं आज के दिन इतिहास में क्या-क्या हुआ था। 1835 में आज ही के दिन जेम्स बोमैन लिंडसे ने स्कॉटलैंड के ड्यूनडी में एक सार्वजनिक सभा में एक निरंतर विद्युत प्रकाश का प्रदर्शन किया। 1837 में विलियम कुक और चार्ल्स विस्टन द्वारा लंदन में विद्युत टेलीग्राफ के पहले कमर्शियल यूज का प्रेजेंटेशन किया।
0: और दोस्तों वर्ष 1925 में सोवियत संघ की टेलीग्राफ एजेंसी TASS की स्थापना की गई थी, और 1973 में सोवियत संघ का Mars 5 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था।
1: और दोस्तों इसी के साथ अब बात करते हैं विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र की। 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुईस ब्राउन का जन्म हुआ। ये चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
0: और दोस्तों इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण घटना है। 25 जुलाई 1976 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान Viking 1 ने मंगल ग्रह की सतह की एक प्रसिद्ध तस्वीर खींची, जिसमें एक चट्टानी संरचना मानव चेहरे जैसी दिखाई दी। इसे बाद में फेस ऑन मार्स के नाम से जाना गया। साथ ही दोस्तों अगर बात करें भारत के इतिहास की, तो 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने भारत की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, और वे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी।
1: अब दोस्तों बारी है, हम एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: दोस्तों, आज हम लाए हैं रोजगार सूचना में आपके लिए देश और प्रदेश की महत्वपूर्ण भर्तियों की जानकारी। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारियाँ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं।
1: तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी भर्ती के बारे में। पहली वैकेंसी है पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB में लोकल बैंक ऑफिसर यानी LBO के पदों पर भर्ती। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस भर्ती के तहत कुल पद हैं 545 और इच्छुक योग्य अभ्यर्थी 20 जुलाई 2026 से आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
0: और दोस्तों, इच्छुक अभ्यर्थी इसकी ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.punjabandsindbank.co.in पर विजिट करके आगे की जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण वैकेंसी की ओर।
1: दूसरी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC की PCS परीक्षा 2026। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है और कुल 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख है 27 जुलाई 2026। इसलिए जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं उनको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करना चाहिए, जो है www.uppsc.up.nic.in।
0: और दोस्तों, अब हमारी जो तीसरी और अंतिम रोजगार सूचना है वो है भारतीय वायुसेना से। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन इंटेक के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि है 2 अगस्त 2026। तो आपके पास समय कम है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है indianairforce.nic.in। यानी अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं और भारतीय वायुसेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। और अब जान लीजिए हमारा आज का प्रश्न एक बार फिर से।
1: सौर मंडल में सौंदर्य का ग्रह किसे कहा जाता है?
0: तो दोस्तों, हमें अपना जवाब भेजना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब हम जाते जाते आपको बस इतना ही बताना चाहते हैं कि कमाई चाहे छोटी हो या बड़ी, समझदारी वही है जो आज से थोड़ा बचाए और कल को बेहतर बनाए।
1: बिल्कुल आलिया, और अक्सर हम सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसे होंगे तभी बचत करेंगे, लेकिन असल में बचत ज्यादा पैसे होने से नहीं बल्कि अच्छी आदत होने से शुरू होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। कई बार हम क्या करते हैं, ये ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, छोटी छोटी ज़रूरतों और इच्छाओं के लिए हम ये भूल जाते हैं कि हमें भविष्य के लिए बचाना भी ज़रूरी है। और दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे स्मृति और आलिया को। अब हमें दीजिए इजाज़त।

0: युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना प्रोग्राम युववाणी। मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से प्रसारित भोजपुरी में समाचार।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचार के साथ हम वैष्णवी त्रिपाठी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपन इस्तीफा सौंप दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री प्रधान कहने कि पिछला 10 दिन से छात्रन के विरोध प्रदर्शन के बाद बनन हालत से उन्हें दुख भइल बा, आई उनके प्रतिष्ठा के सवाल नहीं हो। उन्होंने कहने कि नई दिल्ली के जंतर मंतर आज देश भर में बनन हालत के फायदा उठावे वाला राष्ट्र विरोधी ताकत के रोकले के साथ ही ये सुनिश्चित करे बदे कि कौनो छात्र के भविष्य कानूनी पेचीदगियन में न फंसे, उनके प्रधानमंत्री के अपन इस्तीफा सौंपने के फैसला कहने। श्री प्रधान कहने कि नीट यूजी परीक्षा 2026 में अनियमितता के बाद सरकार जांच CBI के सौंप दिलस आ परीक्षा रद्द कर दिलस, दोबारा परीक्षा बदे नया तारीख के घोषणा कैलस। उन्होंने कहने कि सरकार अगला साल से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड में परीक्षा आयोजित करने के फैसला कैले हवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक मामला में कड़े कानून ले आने के लेके जारी कर गए अपनी वीडियो समीक्षा पर मिलर प्रतिक्रिया और सुझावन बदे देश के नौजवानों के धन्यवाद दिए हमें। श्री मोदी नौजवानों के मजबूत समर्थन बदे आभार जताने।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक यू एवरीबॉडी, ये आपका प्यार बना रहेगा।
1: यूजी परीक्षा 2026 में अनियमितता के बाद सरकार जांच CBI के सौंप दिलस आ परीक्षा रद्द कर दिलस, दोबारा परीक्षा बदे नया तारीख के घोषणा कैलस। उन्होंने कहने कि सरकार अगला साल से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड में परीक्षा आयोजित करने के फैसला कैले हवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक मामला में कड़े कानून ले आने के लेके जारी कर गए अपनी वीडियो समीक्षा पर मिलर प्रतिक्रिया और सुझावन बदे देश के नौजवानों के धन्यवाद दिए हमें। श्री मोदी नौजवानों के मजबूत समर्थन बदे आभार जताने।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक यू एवरीबॉडी, आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
1: प्रधानमंत्री कहने कि पेपर लीक जैसन घटना पर रोक लगावे, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई बदे विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगला हफ्ता पेश करी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीट परीक्षा प्रकरण पर कहने हमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नकल माफिया के खिलाफ कड़ी कानून ला रहा है, इसके अंतर्गत दोषियों के कम से कम 10 वर्ष की सजा और 2 करोड़ रुपया तक के जुर्माना के प्रावधान हो। मुख्यमंत्री आज फतेहपुर में 489 करोड़ रुपया के बहुत सारा विकास परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के संबोधित करत गए। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करे वाला अब बच न पाए हैं।
3: हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। मान करके चलिए माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी मिलने से।
1: फतेहपुर से पहले मुख्यमंत्री जालौन में 1774 करोड़ रुपया से अधिक के लागत वाला कई को विकास परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास कहे। जालौन में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री

0: यानी बुंदेलखंड आज जालौन के पिछड़ा सूखा के चपेट वाला और बीहर मान के उपेक्षित छोड़ दिहल गए रहे वो अब विकास के नया बुलंदियन के छू रहा है।
1: बलंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीहर के मेरे को एक और करते हुए आज इसको विकास की रोशनी में हमारा बुंदेलखंड जगमगा रहा है और जालौन उसका प्रवेश द्वार बनकर के तैयार हो गया है। देश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में। 550 मेगावाट का सोलर एनर्जी उत्पन्न करके 1,00,000 घरों को रिन्यूएबल एनर्जी देने का केंद्र बिंदु बन रहा है आपका जालौन जनपद।
0: मुख्यमंत्री आगरा में 342 करोड़ रुपया के कई गो विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वां जयंती के मौका पर भारतीय जनता पार्टी देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करी। इस बारे में आज वाराणसी में जानकारी देते प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण बतौले कि 28 और 29 जुलाई के संत रविदास के जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में खास आयोजन हुई। जन्मस्थली की पावन माटी के पूजन करके ओके 131 कलशा से संग्रहित कर जाये। एक कलशन में देशभर में ले जाके संत रविदास के समरसता समानता और सामाजिक न्याय के संदेशा के प्रचार प्रसार करी जाये। प्रदेश के कई जिलों में भारी बरखा पैराजन से पानी छोड़ाई ले के नाते कुछ जिलों में नदियों के जलस्तर बढ़ने लागल बा। बाराबंकी में घाघरा नदी खतरा के चिन्ह से ऊपर बहे उन्हें उन्नाव में गंगा नदी के जलस्तर में आज बढ़ोतरी देखल गई। बाढ़ की अनेसा के देखकर सज्जो संवेदनशील जिलों में प्रशासन अलर्ट बा। मौसम विभाग आने वाला 5 दिन में प्रदेश के पूर्व और पश्चिमी इलाकन के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्लुक से लेकर मध्यम बरखा के पूर्वानुमान जतौले है। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 8 बजे इस सप्ताह संसद में और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में चारा तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें विषय पर डॉक्टर अमरीश कुमार सिंह और दिनेश कुमार सिंह की बातचीत के अलावा सुनिएगा सरोज वर्मा का गाया लोकगीत। शाम 7:31 पर स्वरबेला कार्यक्रम में विकास कुमार पांडे के काव्य पाठ का प्रसारण होगा। रात 8:15 पर भारतीय ज्ञान परंपरा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषय गोष्ठी पर आधारित रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण होगा। वाचन स्वर आशुतोष, प्रस्तुति चंदन सिंह और संयोजन प्रफुल्ल कुमार सिन्हा। रात 9:30 पर कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला के अंतर्गत सुनिएगा पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में मेजर डीपी सिंह से आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे और 7:45 पर रसरंग कार्यक्रम के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें कल यानी 26 जुलाई सन 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से करेंगे मन की बात कल दिन में 11 बजे। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में सामयिक कृषि कार्य विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम आराधना के अंतर्गत प्रातः 6:10 पर। प्रातः

कर 35 मिनट पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में दांतों का प्रत्यारोपण कब और कैसे विषय पर लीजिएगा जानकारी, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ठाकुर प्रसाद। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ आप सुनते हैं प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 7 बजे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 7:31 पर सुनिएगा पंडित बाला साहब पूंछ वाले का गायन। दिन में 12 बजे हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होगा, प्रस्तुति अरुण पांडे की होगी। दिन में 1:15 पर आज इतवार है कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा झलकी हो जाने दो शादी, आलेख गुलाब सिंह, प्रस्तुति डॉक्टर वरुण श्रीवास्तव की होगी। दिन में 2:30 पर स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का प्रसारण होगा। शाम 5 बजे बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल का प्रसारण होगा। युवा साथियों का प्रोग्राम युववाणी का प्रसारण होगा रोज की तरह शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में टमाटर की खेती से अधिक आय कैसे विषय पर डॉक्टर जगेश कुमार तिवारी और दिनेश कुमार सिंह की बातचीत के अलावा सुनिएगा पारसनाथ बागी और साथियों का गाया लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 9:50 पर। शाम 7:31 पर पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। रात 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम की कलाकार होंगी आबिदा परवीन। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: अलीशा चिनाय और जुबिन गर्ग की आवाज में ये सुनते हैं फिल्म क्रिश 3 का गीत। शब्द रचना समीर की है और संगीत राजेश रोशन का।

0: भेजने दे जरा। जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन अद्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने स्वत्यागपत्रं प्रदत्तम्। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयेन परीक्षा प्रश्नपत्र अवैधरीत्या प्रकाशन संबद्ध अनियमितताम् आलक्ष्य चतुर्णाम विशिष्ट ट्रैक न्यायालयानाम स्थापना विहिता। जम्मू कश्मीरे वार्षिकी अमरनाथ यात्रा अथ च श्रीमातुः वैष्णोदेव्याः पवित्र यात्रा अद्य 6-दिवसीय स्थगनानन्तरं पुनः समारब्धा। असमराज्ये जलाप्लावनेन मृतकानां संख्या 1 जाता, यत्र 1,00,000+ जनाः साहाय्योद्धार शिविरेषु आश्रयम् अगृह्णन्। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना सर्वविध साहाय्यस्य आश्वासनं प्रदत्तम्। भारतीय स्क्वैश क्रीडिका अनाहत सिंहः ऐतिह्यं विरीच्य जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप श्रृंखलायाः महिला एकल निर्णायक द्वन्द्वे स्वीय स्थानं रक्षितवती। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारत जिम्बाब्वे देशयोः मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रचलति। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन अद्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने स्वत्यागपत्रं प्रदत्तम्। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे श्रीप्रधानेन निगदितं यत् गत 10 दिवसेषु प्रचल्यमाणानां स्थितिमालक्ष्य तेन मन्त्रीपदमिदं त्यक्तम्। छात्राणां प्रदर्शनपुरस्सरं सुरक्षास्थितिं च मनसि निधाय शिक्षामन्त्रिणा त्यागपत्रं प्रदत्तम्। तेन प्रतिपादितं यत् नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तरस्थले अशेषे देशे हि परिस्थितिम् आलक्ष्य त्यागपत्रमिदं प्रदत्तम्। तेन प्रधानेन प्रोक्तं यत् तेन प्रधानमन्त्रिणः विश्वासं सहयोगं च सम्मानितम्। तेन भणितं यत् देशस्य सेवा एव तस्य सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यते। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयेन परीक्षा प्रश्नपत्र अवैधरीत्या प्रकाशन सम्बन्ध अनियमिततां आलक्ष्य चतुर्णां विशिष्ट ट्रैक न्यायालयानां स्थापना विहिता। न्यायालयेन निर्दिष्टं यत् आरोप पत्राणां नामांकनस्य 3 तेषां प्रकरणानां निवारणं भवितव्यमेव। जम्मूकश्मीरे वार्षिकी अमरनाथ यात्रा अथ च श्रीमातुः वैष्णोदेव्याः पवित्र यात्रा अद्य 6-दिवसीय स्थगनानन्तरं पुनः समारब्धा। कश्मीरस्य संभागीय आयुक्तेन अंशुल गर्गेण आकाशवाण्या सह वार्तालापे सूचितं यत् बालटाल पहलगाम मार्गयोः यात्रा पुनः समारब्धास्ति। अत्रान्तरे 79,200+ यावत् तीर्थयात्रिणां समूहः अद्य प्रातः भगवती नगर यात्रिनिवास जम्मूतः प्रस्थितः। असमराज्ये जलप्रलये 15

0: रामेश्वर भैया।
1: हाँ रामेश्वर भैया,
0: का हाल चाल बा खेती बाड़ी का भैया?
1: भैया हमार देखा धीरे धीरे रोपनी भी सफरल जाता, खाली बिजड़ा बाकी रह गल है। और वही में भगवान देखा पानी दे गई ना, हमार रोपनी का जुगाड़ हो
0: गल बा भैया। आज जेकर भैया हो पहले ही से मनसा स्पष्ट रहला कि हमके आगे का खेती आगे करे के बा, तो अपन ईयर बहुत से किसान भैया लोग देखे रोपनी के काम से खाली हो गल, उनकर खेत डाण कुल चौचक हो गल बा।
1: होई के चाहिए भाई, देखा समय से अगर खेती बारी है, समय से अगर धान का रोपाई हो गल है, तो देखा अगली फसल के लिए भी तैयारी करे के है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: दूसर बात की धान का फसल का पैदावार भी बढ़िया होई। और रमेश्वर भैया, जब पैदावार के बात चला ला हो, तो हमेशा हमन के लड़कैया वाला बात याद वाला घूर गड्ढा वाला खाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, जौन बात कहत हुआ खादे का ना समझ
1: हाँ
0: में आ गल भैया। आ वह खाद में पुष्टई रहे, वही खादे के अनाज में स्वाद रहे
1: अरे
0: समारू
1: क्या
0: भैया।
1: मत पूछा भैया,
0: जौन जैविक खाद, कंपोस्ट खाद, हरियरी खाद, ये कुल जौन खाद पहले पड़े
1: हाँ
0: ना,
1: हाँ
0: तो जान लें कि जौन
1: इतना स्वाद
0: तर
1: रहे।
0: तरकारी मिले
1: मत
0: ओमन
1: पूछा।
0: स्वाद आवे। आ जौन अपन अनाज का भी फसल है, जितना कम रसायन का प्रयोग हो। हमके याद समारू भैया, जब मेहमान आवे तब कुछ विशेष चावल जो मेहनका रहे हो
1: बनाए
0: वो रोज तो बने ना।
1: सही
0: जब
1: बात
0: मर
1: है।
0: मेहमान आवे, तीज त्योहार हो तब बने, या कभो कभार जब जाऊर बने का मन हो
1: हाँ तब बने।
0: तब
1: हाँ
0: बने, तब वो कोठिला से चाउर निकले। आ जान लें कि जब वो निकले चाउर तब से महके शुरू करे। आ
1: गम गम
0: खात
1: गम गम
0: खात तक
1: गम।
0: जान लें कि मतलब ये जान लें कि वो दिना का थरिया गढ़ू हो ही जाए।
1: तो यही बात कहा जाला कि भाई आज भी अभी कुछ ना बिगड़ल है,
0: हाँ, जब
1: अभी
0: जागा तब सवेरा।
1: सवेरा
0: हाँ
1: अब हम के चाहिए कि अब रसायन से मोह भंग हो
0: हाँ हाँ हाँ
1: है,
0: हाँ
1: और पुनः अपने
0: चलो
1: जैविक में
0: प्रकृति की ओर।
1: चलो प्रकृति की ओर भैया।
0: हाँ
1: और जब बात चला कंपोस्ट के खाद का,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: एमन बहुत महत्वपूर्ण खाद एक है बर्मी कंपोस्ट,
0: हाँ बिल्कुल भैया,
1: मतलब
0: बर्मी
1: नहीं
0: कंपोस्ट, केचुआ खाद के
1: जिके कहा जाला केचुआ वाली खाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: ऐसे भी रमेश्वर भैया केचुआ देखा किसानन के मित्र हुआ
0: हाँ हाँ हाँ
1: है,
0: हाँ
1: लेकिन रसायन का प्रयोग करत करत देखा उनका संख्या भी घटे लगा धीरे धीरे
0: हाँ, बिल्कुल का है।
1: है।
0: आई केचुआ जान ले कि हमन के माटी का ना प्राण हवा, इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये कुल

0: अच्छा, माटी का चलनी करना मतलब नीचे का हवा ऊपर जाए, ऊपर का हवा नीचे,
1: हाँ, हवा
0: मतलब
1: का आदान प्रदान एक केचुए की
0: हाँ,
1: वजह से
0: जोन
1: हो रहा है।
0: कल्टीवेटर मशीन या जोन भी अपन खेती का संयंत्र हवा, उनकर काम पहले जमाने में यह केचुए कर रहे हैं।
1: तब का
0: माटी का पलटी इन्हीं के
1: हाँ
0: माध्यम से हो जाए, मित्र कीट कहल जाला केचुआ के।
1: तो ये भी किसानन के मित्र कहे के लिए जवान, तो
0: हाँ
1: ये भी कहा जाला कि भाई बर्मी कंपोस्ट का उपयोग करे के चाहिए अपनी खेती किसानी में, और बर्मी कंपोस्ट बनाओ के भी साधारण विधि है, जानकार लोग भी हुआ
0: हाँ।
1: है
0: अपने
1: उन।
0: कार्यक्रम में भी विशेषज्ञ भैया लोग आवन भैया, तरह तरह का विधि
1: हाँ
0: बतावन
1: तो
0: हो।
1: विधि बतावा तो वो विधि के गुणी लोग से सुन लें,
0: बिल्कुल
1: समझ
0: बिल्कुल
1: लें और
0: हाँ।
1: बना करके अपने खेती में उपयोग करें।
0: बिल्कुल। आप देखें जैसे ना आप अब सहेजना है कि मोह भंग हो, रसायन का प्रयोग जितना कम से कम खेते में हुई, विशेषज्ञ भी ये लोग बतावन है कि माटी माई का उर्वरा शक्ति उतना बरियार हुई, उतना लंबा समय तक चली, हमन का माटी माई कम बीमार हुई है, रसायन का प्रयोग कम हुई था, पैदावार में पुष्टि आई, स्वाद में पुष्टि आई। ये सुमारू भी है ये
1: भैया
0: समय तक बाजारे में ऐसन ऐसन भी बुद्धिमान किसान भी ये लोग हवा, जो अपने सौदा के आगे लिख देते हवा
1: हाँ
0: कि
1: कि जय
0: जैविक खाद द्वारा
1: हाँ
0: उत्पादित, मतलब उत्पाद
1: उत्पाद लिखा तो ओकर 2 पैसा अधिक मिलतो। हाँ
0: हाँ, मन जो न जानकार होशियार समझदार ग्राहक हवा, जाहिर सी बात है कि उस सौदा तनी जैसे लौकी बा, नेनुआ बा,
1: हाँ
0: पालक बा,
1: हाँ
0: चौराई बा, तनी देखे में हो सकाला उन्हीं से लगे, कहे दे कि जो भैया खाद वाला बा तनी ढेर चिकन बा, लेकिन
1: हाँ
0: जितने मतलब अपने हिसाब है भर नेनुआ, अभी नहीं कि नेनुआ का जो आकार हो लौकी के बराबर हो जाए, मतलब
1: नहीं
0: दुहाक का
1: नहीं
0: हो
1: नहीं
0: जाए,
1: तो
0: भिंडी मतलब छोट रहला तो बढ़िया
1: हाँ
0: लगा ला, नेनुआ छोट रहला स्वाद रहला, पालक चौराई के पतई जितना नरम जितना मतलब छोट रही देसी रही कहला। अब जैसे
1: हाँ
0: कटुई धनिया और देसी धनिया के भैया चटनी बना दे,
1: हाँ दोनों में अंतर आ
0: जमीन
1: जाए।
0: आसमान का अंतर आवे लगा ला।
1: सही
0: तो
1: बात
0: ऐसा ही
1: है।
0: बहुत सा जो ना एक तरीके से हम कहब कि वैज्ञानिक तरीके से कृषि वाला प्रगतिशील किसान हवा, जो
1: हाँ
0: अपने
1: हाँ
0: सौदा के आगे लिखत हवा कि हमारे जो सौदा है वो जैविक उत्पाद के द्वारा तैयार है, आ जो विश्वास है भैया वो एक बेरी के बाद दो बेरी के बाद ग्राहक लोगन के जम जाता, अब 5 रुपया 2 रुपया जोन भी है वो बेसी दे के वो सौदा के खरीदत हवा, और किसान भैया का नाम भी होता, बाजारे में दाम भी बढ़िया मिला था।
1: कैसे समझा तो कि भाई जैविक जो विधि से प्रयोग भल है
0: हाँ
1: तो उस शरीर में पुष्टि काम करी।
0: हाँ देही के नुकसान नहीं, नहीं
1: अब देखा याद करा
0: हाँ
1: लड़कियां में हमन जब धनिया खोटल जाए तो
0: हाँ
1: एक बार खोटले पर कितना हाथ गम कहे।
0: हाँ तो वो तो चटनी बाद में मिले, हाथ है गम के और के सुंघल
1: तो
0: जहाँ की महकत है।
1: का रालू कंपोस्टर रहना मन
0: बिल्कुल
1: का।
0: बिल्कुल उकुल देसी भैया, मन रसायन का नाम न पड़े कोई
1: हाँ
0: मतलब, कम से कम पुदीना में, धनिया में,
1: हाँ
0: पालक
1: हाँ
0: में, चौराई में, तो वह राखी लोग डाल दे तो डाल दे, नहीं तो वह जो अपन गोबर खाद रहा है। आए सुमारू भैया
1: भैया
0: समय कहा तो कुछ संदेश का तो हो जाए,
1: हो
0: अब
1: जाए
0: सुन ले बन जाए एक संदेश।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: सनेस तो होगल भैया।
1: सनेस हो गल आ देखा वर्मी कंपोस्ट पर जोन भी हमन किसान भैया लोगन के सहेजे कर हलु निहोरा हो गल
0: नहीं हो
1: आ
0: रहा हो
1: अब
0: गल।
1: आगे आज कार्यक्रम में का हुई भैया।
0: देखा सबसे बड़ी बात हमन के जान लिया कि पहले घरे पर दुधारू पशु होना
1: हाँ
0: तो उनके चारा हम दे रह जा,
1: बिल्कुल
0: चारा
1: बिल्कुल
0: तैयार होला।
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: चारा तैयार करते समय हमन के क्या क्या बात ध्यान देवे के चाहिए,
1: सावधानी
0: सावधानी का होक चाहिए,
1: हाँ
0: यही पर डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह से दिनेश कुमार सिंह भैया के बातचीत सरपंच भाई
1: सुन
0: सुना।
1: लिया भैया।
2: डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह, आप वैज्ञानिक होंगे कृषि विज्ञान केंद्र गाजीपुर में। आज हम आपसे चारा के बारे में जानना चाहा।

0: कौन पशुपालक भाई बाटे पशुअन के चारा अगर दे हैं तो उनका कौन कौन सी बात ध्यान में रखे की चाहिए?
1: पशुपालक भाइयों, पशुओं को चारा खिलाते समय ध्यान ये देना चाहिए कि चारा जो है किस स्थिति में पशु है। अगर पशु दूध दे रहा हो तो उसके लिए अलग तरह का चारा बनेगा, और पशु गर्भवती है, गर्भ में बच्चा पल रहा है तो उसके लिए अलग चारा होता है
0: जी।
1: और पशु अगर दूध देना बंद कर दिया हो उसके बाद का चारा अलग होता है। और इसके बाद जो है पशुओं को जो है चारे में जो है कई चीज़ देखनी होती है, जैसे कि सूखा चारा भी होना चाहिए एक भाग, उसका हरा चारा भी होना चाहिए, उसमें कंसंट्रेट मिक्स है मतलब कि दाना होना चाहिए, रती भी जिसको बोलते हैं, दाना मिश्रण भी होना चाहिए।
0: तो सूखा हरा में अनुपात का हो इसे?
1: जैसे कि सूखा चारा है तो मोटा मोटा किसान भाइयों को जैसे हम बता दें कि अगर पशु दूध उत्पादन कर रहा हो तो उसके दूध उत्पादन के हिसाब से जो है पहले हम उसके दूध की गणना करते हैं। जैसे माना कि अगर पशु जो है 10 लीटर दूध दे रहा है तो 10 लीटर दूध दे रहा है तो उसको जो है पोषक तत्व जो है अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में अगर हम पोषक तत्व नहीं देंगे तो दूध उत्पादन भी घट जाएगा और समय से जो है पशु गर्भधारण नहीं करेगा।
0: अच्छा,
1: तो उसके लिए जो है जैसे कि माना मैंने बताया कि जैसे अगर पशु 10 लीटर दूध दे रहा है तो 2.5 से 3 लीटर दूध पर 1 किलो दाना औसतन देना चाहिए। तो 10 का मतलब हो गया कि 3×9 = 3.5 किलोग्राम दाना जो है देना चाहिए, और 1 किलोग्राम जो है दाना उसको निर्वाह के लिए देना चाहिए। जैसे दूध दे रहा हो चाहे नहीं दे रहा हो, मतलब कि अगर जिंदा है तो भी उसको 1.5 किलोग्राम दाना रोज देना चाहिए। और कुछ पशुपालक भाई ये करते हैं कि जैसे पशु दूध देना बंद कर दिया तो केवल सूखा और हरा चारा के उनको हरा चारा खिला के पालते हैं, ऐसी कंडीशन में पशु जो है कमजोर हो जाता है और जो है समय से गर्भधारण नहीं करता है। तो जैसे मैंने बताया कि
0: तो अगर दूध ना दे दे तब तो खाली जीवन निर्वाह के लिए दिन
1: बस 1.5 किलोग्राम
0: 1.5 किलो दे।
1: हाँ, जैसे माना जिसको भी सुखना कहते हैं, दूध देना बंद कर दिया तो 1.5 किलोग्राम जो है उसको दाना दीजिए और कम से कम 20 से 25 किलोग्राम तक हरा चारा दीजिए।
0: अच्छा,
1: और आप जो है 5-6 किलोग्राम भूसा जो होता है वो तो आवश्यकता अनुसार है, पर 1.5 किलोग्राम दाना और 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा निश्चित रूप से दे, और उसमें जो है 4-5 किलोग्राम भूसा मिला ले, तो इस प्रकार जो है पशु का जो है
0: दिन भर का
1: 10-12 किलोग्राम हो जाता है।
0: और उनमें और भी तो सब गुड़ उड़ भी लावत है लोग,
1: जैसे मैंने बता दिया कि ये तो इस तरह से एक साधारण मैंने बता दिया कि 5-6 किलोग्राम भूसा हो गया और हरा चारा हो गया और दाना हो गया। लेकिन जैसे दाना बनाते हैं तो दाना बनाते समय भी उसमें कई चीजों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे दाने का एक भाग जो है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा से मिलना चाहिए।
0: अच्छा।
1: जैसे ऊर्जा मिले, दूसरा जो है प्रोटीन से होना चाहिए, उसमें प्रोटीन मिलाना चाहिए, और तीसरा जो है वसा होता है जिसको पशुओं के दूध में उससे घी पैदा होता है, वसा मिलाना चाहिए। उसके बाद पेट को साफ करने के लिए लैक्टुलेटिव कहते हैं, उसमें चोकर वोकर के रूप में हम लोग मिलाते हैं, और दूध में जैसे पोषक तत्व तो बहुत निकलता है, सूक्ष्म पोषक तत्व तो जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब तत्व तो भी दूध में निकलते रहते हैं। तो उसके लिए खनिज तत्व तो आता है जैसे कि बाजार में भी मिलता है पाउडर के रूप में, उसको भी मिलाना चाहिए, और नमक भी रोज पशुओं को 30 ग्राम देना चाहिए।
0: अच्छा।
1: तो हमने जैसे बता दिया तो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होना चाहिए कि एक भाग जो है अनाज, जैसे गेहूं है, जव है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इसका जो है दर्रा बनाना चाहिए, आटा ना होने पाए, इसको ऐसा करते कि 2-3 टुकड़े में टूट जाए, उसको दर्रा बोलते हैं।
0: अच्छा।
1: तो इससे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, और एक भाग जो है उसको जो है प्रोटीन के लिए हम जो है खलीस है, उसमें घी भी होता है, वसा भी होता है और प्रोटीन भी होता है।
0: अच्छा।
1: प्रोटीन तो कार्बोहाइड्रेट वाला जो दाना बताए इसमें भी होता है, लेकिन प्रोटीन जो है पर्याप्त मात्रा में खली में मिलता है, नहीं तो दलहन का चूरा होता है, जैसे
0: चूनी,
1: जैसे कि दलहन, जैसे दाल अरहर हो गया, चना मटर मसूर की जो चुन्नी होती है, इसमें प्रोटीन अच्छी होती है। तो एक भाग जो है दलहन इसे खली से मिलाना चाहिए, कुछ भाग जो इसमें दलहन की चुन्नी भी डाल देना चाहिए अगर आवश्यकता अनुसार अगर उपलब्ध हो तो, नहीं उपलब्ध हो तो भाई सस्ता खली पड़ता है तो खली डालिए।
0: खली में तो वह सरसों ही रहा,
1: अपने इलाके में जैसे कि बहुत से किसान भाई तीसी और मूंगफली की खली खरीदते हैं, तो और बाजार में बहुत महंगी है क्योंकि हमारे यहाँ मूंगफली और

0: तीसी वगैरह ज्यादा नहीं पैदा होता है। हमारे यहाँ सरसों की खेती ज्यादा होती है,
1: जी
0: तो किसान भाइयों से आग्रह है कि वो आप लोग जो है ज्यादा इधर उधर की बातें न सुनते हुए सरसों की खली ही आप मिलाइए। और एक
1: अच्छा,
0: भाग
1: कुछ लोग जैसे ज्यादा डाल देते हैं खली वगैरह, तो उसका कुछ गलत असर पड़े शरीर पे?
0: नहीं, जैसे मैंने इसीलिए बताया ना कि दाना में, जैसे कि अब तो मैं देखते हम लोग जाते हैं किसान भाइयों के यहाँ, तो किसी के यहाँ चोकर है तो केवल चोकरे खिला दे रहे हैं, किसी के यहाँ गेहूं ज्वार बाजरा बचा हुआ है तो उसी को दर्रा डाल के खिला दे रहे हैं, तो किसी के पास खली है तेल पेरा कर तेल एल ज्यादा यूज है तो खली खिला रहे हैं। तो ये जो है संतुलित नहीं है। संतुलित के लिए जैसे मैंने बताया, मोटा मोटा बता दिया कि जैसे कि एक भाग जो है दाने से डालिए, दूसरा भाग जो है मतलब कि खली से डालिए, तीसरा भाग जो है दलहन की चुन्नी से डालिए, और चौथा भाग जो है खली से हो गया, और गेहूं का चोकर जो कि पेट को साफ करने में सहायता करता है और पाचन में मदद करता है, तो गेहूं का चोकर डालिए और खनिज तत्व मिलाइए। तो जैसे अगर हम 100 किलोग्राम दाना बना रहे हैं तो मोटा मोटा किसान भाइयों को बता दें हम कि 30 से 35 किलोग्राम जो है उसमें दाना डालिए, जो कि ज्वार बाजरा मक्का और गेहूं जो भी हो सकता है आपके पास, और 30 से 35 किलोग्राम उसमें खली मिलाइए, सरसों की खली है आपके पास सरसों की खली मिलाइए, और हो सके अगर ज्यादा महंगा ना हो तो दलहन की चुन्नी अगर 10 से 15 किलोग्राम तक मिला सकते हो तो उसको मिलाइए, और नहीं महंगा हो रहा है तो खली और ये अनाज इसी से आप पूरा कर लें,
1: जो दाना वाला
0: दाना
1: मिश्रण।
0: वाला जो है। और फिर जो है चौथा कंपोनेंट इसमें गेहूं का चोकर होता है, इसमें 15 से 20 किलोग्राम आप गेहूं का भी चोकर मिला लीजिए। और खनिज तत्व जैसा कि मैंने बताया है कि दूध जब जानवर देता है तो कैल्शियम फास्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक तत्व तो शरीर से ज्यादा निकलता है, तो ऐसी कंडीशन में पशुओं में बांझपन की समस्या भी आ जाती है, गर्भधारण नहीं करते हैं पशु, तो उसमें जो है आप खनिज तत्व 2 किलोग्राम मिला लीजिए
1: अच्छा।
0: और 1 किलोग्राम नमक, ये मिला के जो है 100 किलोग्राम आप दाना बना लीजिए इस तरह से। इसी दाने को जो है जैसे मैंने बताया कि निर्वाह के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम, या पशु जो है गर्भधारण कर चुका हो, जैसे कि पशु दूध देना बंद कर दिया आज, तो 4-5 महीना जो उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है उसको खास जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है पोषक तत्वों की, तो उसमें 1 से 1.5 किलोग्राम अगर दाना आप खिला रहे हैं तो जो है वो आवश्यकता पूर्ण कर लेता है। अगर 5 महीने से ऊपर का बच्चा हो गया है पेट में
1: तो ज्यादा
0: हाँ,
1: दे।
0: उसके लिए जो है अगर आपको सफर है तो 1.5 किलोग्राम निर्वाह का और 1 किलोग्राम बच्चे के लिए, तो 2.5 किलोग्राम अगर दाना अगर 4-5 महीना बियाने से पहले खिला देंगे तो अगली जो ब्यात होती है उसमें जो पशुपालक भाइयों की बड़ी शिकायत रहती है कि साहब 10 दिन दूध देने के बाद दूधेड़ भैंस ने तोड़ दिया चाहे गाय ने, तो वो अगर ढंग से अगर आप गर्भावस्था में है, 4-5 महीने का गर्भावस्था हो गई है, तो बियाने से 4 से 5 महीने पहले पर्याप्त मात्रा में 2.5 किलोग्राम दाना, 20 किलोग्राम हरा चारा, आप भूसा वूसा जो भी आप 5 किलोग्राम 6 किलोग्राम मिला सकते हैं जितना खा ले हो खिला के जो है, अगर इस तरह से करेंगे तो अगला ब्यात भी उसका बढ़िया होगा।
1: अच्छा, जब बरसात का सीजन चलते बाटे तो इसमें कुछ और सावधानी बरतनी पड़े, गैस वैस बना लगा तो?
0: बरसात के सीजन में पशुपालक भाइयों को ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप चरा रहे हो, पशुओं को चराते हैं बहुत लोग 6-7 घंटे चरा लेते हैं, तो चराने से उसका निर्वाह तो पूरा हो जाता है। जैसे कुछ लोग जो है पशुओं को किसी के यहाँ चारे की कमी है किसी के यहाँ मतलब कि भूसा नहीं है, हरा चारा की सुविधा नहीं है, तो ऐसे पशुपालक क्या करते हैं कि दिन भर चराते हैं, तो पशुओं को अगर 7 से 8 घंटा खूब चरा ले रहे हैं तो जब पशु चर के आता है तो उतने में अपना शुष्क जो मैंने बताया ना कि जो रफेज होता है सूखा और चारा और हरा चारा, तो इससे आपूर्ति तो 8 घंटा 7 घंटा चलेगा, वो 6 से 8 घंटा के बीच तो पूरा कर लेता है, लेकिन जब घर आता है तो उसको 1.5 किलोग्राम निर्वाह के लिए जरूर दाना देना चाहिए, और दूध दे रहा हो तो जैसा दूध दे रहा हो मतलब 2.5 से 3 लीटर दूध पर 1.5 किलो, ये जो दाना बताया है मैंने इसके अलावा 3 लीटर, 1 किलो दाना, 6 लीटर दे रहा है तो 2.5 किलो दाना, ऐसे कर करके आप जो है 2.5 से 3 लीटर दूध पे 1 किलो दाना आपको देते ही रहना है।
1: और कुछ चारा वारा भी देख पड़े फिर
0: चारा तो मैंने बताया दिया कि अगर दिन भर चर रहा है
1: तो
0: जानवर
1: पूरा हो
0: तो फिर कोई
1: जाएगा।
0: दिक्कत नहीं है।
1: और खनिज उन्हें देख पड़े।
0: हाँ, खनिज तो जो दाना दिए हैं उसमें है ही है। हाँ, अगर माना कि कुछ पशुपालक भाई सोचते हैं कि अलग से खिलाएं तो अलग से खनिज तत्व तो खिलाना चाहते हैं, तो जो पाउडर आता है उसको बाजार से खरीद लें, उसको 50 ग्राम 40 से 50 ग्राम के आसपास और 30 ग्राम नमक रोज उसी दाने में मिला लीजिए, और उसी का जो है सानी बना के पशुओं को भूसे के साथ खिला दीजिए, तो पूरा खनिज तत्व तो और जो नमक है वो चला
1: तो
0: जाएगा।
1: जो पशुओं में गैस बनने की समस्या रहा थे, तो
0: हाँ
1: कोनो विशेष
0: देखिए,
1: कारण
0: हाँ
1: से?
0: देखिए मैं बता दिया ये

0: छूट गया था कि जैसे अगर पशुपालक भाई अगर आप जानवरों को चरा रहे हैं तो ऊपरवार जमीन में चरा है, तालाब वालाब अगर हो कहीं पोखरा वोखरा हो जैसे बोलते हैं वहां बाढ़ का पानी हो तो वहां देखिए कि वहां चराने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वहां पर जो है लीवर फ्लूक जो होता है घोघा होता है, घोघा के शरीर में जो है ये रहता है, तो ये जो है वहां से निकल के जो है बाढ़ आड़ में से निकल के वो घासों पर चिपक जाता है। तो जब गाय या भैंस हमारा दुधारू जानवर जो भी जानवर उसको चरता है तो उसी घास के साथ वो पेट में पहुंच जाता है और पेट में पहुंच के लीवर में जाके उसको नुकसान करता है। तो लीवर फ्लूक से बचाव का तरीका है कि आप जो है बाढ़ के समय में तालाब और पोखरे के आसपास न पशुओं को चरावें। और चूंकि दूसरी चीज है गैस की, तो गैस का ये है कि जैसे कि पशु के जो है चारे दाने में अचानक नहीं खिलाना चाहिए, जैसे माना कि आप दाना कभी नहीं दे रहे हैं, पता चला 3 किलोग्राम दाना एक दिन में खिला दिए, अब हरा चारा नहीं दे रहे केवल भूसा दाना दे रहे हैं तो 20 किलोग्राम हरा चारा ही खिला दिए, तो ऐसा अचानक कर देने से, या कुछ किसान भाई जैसे कि कोई शादी विवाह में जैसे कि पकवान वगैरह जो बच जाता है उसको ज्यादा खिला देते हैं, तो पशु का जो है पेट उस चीज के लिए अभ्यस्त रहता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप खिला देते हो तो पशुओं के पेट में गैस बन जाती है, तो गैस बन जाती है तो उसके लिए जो है आप सोडा वोडा खाने वाला जो सोडा होता है घरेलू उपचार के तौर पे, उसको 30 से 40 ग्राम सोडा जो है पानी में घोल के पिला दें पशुओं को, और नहीं तो फिर ज्यादा अगर स्थिति खराब होती है तो आप पशु चिकित्सक से मिलकर उसका इलाज कराइए, तो अचानक चारे दाने में परिवर्तन न करें। और दूसरी चीज हरे चारे में जब पानी से खूब भींग गया हो तो थोड़ा सा उसको पानी निछाड़ लें ऐसे उसको खिलाएं। और बाढ़ के इलाके में भी देखा गया कि जैसे खेत में पानी घुस गया है और नीचे का चारा गल गया है, माना 1 फीट पानी भरा है, तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं ना कि उसको उस जो गला हुआ चारा है उसको भी खिला देते हैं, उसको न खिलाएं, जो पानी के ऊपर है उसको काट लें, ऊपर से ही काटें, उसको साफ सुथरा खिलाएं, गले हुए चारे को एकदम न खिलाएं, गले हुए चारे को खिलाने से भी गैस और अपच की समस्या हो जाती है जिसको कि अफरा कहते हैं पशुओं में।
1: तो ये सब बात अगर ध्यान में रखे थे किसान भाई तो निश्चित रूप से उनके जानवर स्वस्थ रहें, उनसे ज्यादा उत्पादन मिले। आप जानकारी दें चारा तैयार करे के बारे में, जानकारी देवे के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
2: भैया। कितना बढ़िया बातचीत भयल रहा डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह से, दिनेश कुमार सिंह भैया बतियों ना कि भाई अपने पशु के जब चारा तैयार कर रहे थे का का बात ध्यान देवे के चाही। एक बात तय भाई कि देखा दुधारू पशु हो तो ओ हिसाब से जैसे दूध उनका रहा ओ हिसाब से डॉक्टर साहब भैया बताओ चारा देवे के चाही है कि नहीं।
3: बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये समय जो ना समय चलत बा, देखा इस समय बारिश का समय है, तनी मौसम नरम रहला, मच्छरन का प्रकोप रहला, तो जौन भी अपन पंच भैया लोग 2 मुड़ 4 मुड़ गैया गोरु रखले हव तनी सब दलाने में धुआं कर दें और साफ सफाई का विशेष याद रख ख्याल रखें। अब भैया देखें जब गोबर हो जाला तो समय समय पर अगर वो कछा जाला तुम्हारू भैया
2: फरुई उठावे भैया
3: कर दोहरा लाभ होला, लोग एक जाना न दोहरा लाभ ही होला कि पहला तो अधिक से अधिक मात्रा में गोबर मिल जाला तो ओकर खादे में बढ़ जाला या गोईठा पासत हव तो वहाँ अब तो भैया गोईठो भी आग बेचब में आय का एक बढ़िया साधन हो गया तुम्हारा भैया।
2: बहुत बढ़िया भैया बट्टी चोखा ही बरसात जो
3: गांव में भैया कुछ ऐसन घर तीन लोग हैं ऐसन होशियार किसान भैया लोग हव जौन एक तरीके से जैसे बैंक में कुछ पैसा लोग रखा ना इमरजेंसी बदे वैसे ही इसमें लोग गुड़हुर बना करके रख ले हव ओके बढ़िया से ढाक तोप के पन्नी से लगा के अपने दलाने में जहाँ भी कोठा पर जहाँ रख दिले हव कि भैया हो जब कहीं 2 पैसा की जरूरत पड़ी
2: तो बेचब
3: तय के बेचब। पहले का हो लोग ऐसे चाउर धान रखें गेहूँ
2: हाँ हाँ हा।
3: अब ऐसे गोईठा रखत हव कि अब गोईठा भी भैया बढ़िया दाम में बिकत है बाजारे में, लोग झोला में आवत हव कथो मेहमान आयल तीन 10 गोईठा दे दा और 10 गोईठा का दाम अपने हिसाब से जहाँ जो भैया दाम चलत बा 10 गोईठा में मेहमानन के खियावे बदे अहरा जगावे बदे गोईठा का जुगाड़ करत हुआ अभी आय कैसे का एक साधन हो जात बा।
2: तो वही बात कल जाला कि भाई अपने पशु पर ध्यान दे
3: हाँ।
2: पशुधन हमन के खेती किसानी में पशुओं का बहुत बड़ा उपयोग है।
3: बिल्कुल आयकर देखें दूसरा लाभ ही होला कि जब समय समय पर भैया गोबर कछा जाला फरुहा से तो गैया गुरुन के भी बिया कलवटिया लेवे में आसानी रहला, हिल्ला नहीं रहत, गंदगी नहीं फैलत, उन्हों के मजा वाला आनंदा वाला साफ चिकना देख के
2: बातचीत तो हो गल भैया। अब सरोज वर्मा के कौन ही सुनवा देते
3: सुनल जा भैया।

0: बदरा चढ़ आइल आसमानवा, घेरी घेरी चढ़े बदरवा ना।
1: ए भैया सावन आवे वाला बा, बरखा बुनने का समय चलते बा, कहल भी जाला कि भैया तपन बीता लाना, तो ओकरे बाद नाच गाना गीत गौनई मन मन सायन कुल भैया तबीयत हरियर करे वाला
0: वो तो
1: समय चालू हो जाला।
0: रमेश्वर भैया, लेकिन एक बात जानते हैं, हमन के यहाँ
1: हाँ
0: हर मौसम का हर विधा का गाना है।
1: ए भैया ऐसे में खेते में रोपनी हो था वहू का गीत गौनई होला भैया।
0: हाँ बोला ना।
1: अब भैया जो रोपनी करे वाला रोपनी हार होना तो उन भैया अपने मन में एकदम कामों करल जाना, भैया बिया गाड़त चल जाना और गुनगुनात चल जाना भैया,
0: अच्छा
1: हंसी मजाक ठिठोली करत भैया, उनका काम भी हो गला आगे।
0: अच्छा देखा, कल बिहने के बता देते ही
1: हाँ हाँ
0: 6:05 पर खेती के बात ही कार्यक्रम में दिनेश कुमार सिंह भैया जानकारी दी हैं
1: हाँ
0: सामयिक कृषि कार्य के विषय
1: अच्छा
0: में।
1: भैया
0: आ कल संध्या के बातचीत हुई
1: हाँ
0: अपने पंचायती में कृषि जगत में 6:30 पर
1: हाँ हाँ
0: कि टमाटर के खेती से अधिक आमदनी कैसे हमन किसान भाई पैदा करें।
1: हाँ हाँ
0: डॉक्टर जगेश कुमार तिवारी से दिनेश कुमार सिंह भैया बताई हैं,
1: आ साथे गीत गौनई भी हुई
0: गौनई भी हुई।
1: तई तरह काली के का बात, और आज भी बहुत से किसान भैया लोग लाभ ले ले हुए हैं, पशुअन के चारा के कैसे कैसे प्रबंधन कैल जाए, मन का सावधानी रखल जाए, आ जानकारी भेल भैया बर्मी कंपोस्ट के बारे में। निश्चित रूप से किसान भैया लोगन का मन खेती किसानी में जैविक खाद पर जरूर जमल हुई। आ देखा घड़ी का सुई सारा यह कहा था कि कार्यक्रम के समेटल जाए, लेकिन चलत चलावत दो बात बत कही यह बाबा समारू भैया
0: भैया
1: कि देखें सब बढ़ाएं
0: हाँ,
1: सब पढ़ाएं, लड़ा मत लड़ावा मत, देश के आगे बढ़ावा भैया।
0: बस
1: आ हम तो यह
0: बस
1: कहब कि दीप
0: विकास के
1: से,
0: मुख्य धारा से जुड़ल है।
1: हाँ दीप से दीप जला के चला, आ कोई पिछड़ गल बा भैया तो ओकर हाथ पकड़ के आगे बढ़ा के चला।
0: बस पंचो
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म गुमराह का गीत। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया है रवि ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म धरती से। आवाज मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की है। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार शंकर जयकिशन।

गीतकार कल्याणी मित्रा की है। गीतकार हैं गौहर कानपुरी और संगीत राज कामत का है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना लोता कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार पिंकी देवी पत्नी सर्वजीत कुमार। पिंकी देवी परजनपुर थाना लोता जनपद वाराणसी की निवासिनी है। ये 3 जून सन 2026 से लापता हैं। पिंकी देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु लगभग 32 वर्ष, लंबाई 157 सेंटीमीटर, 11 वदन है, रंग गेहुआ है, गोल चेहरा है। ये

हिंदी और भोजपुरी भाषा अच्छे से बोल लेती हैं। पिंकी देवी के बारे में यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में अगली सूचना हमें प्राप्त हुआ है सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी से। निशा पुत्री स्वर्गीय मूलचंद, निशा तारापुर थाना चितईपुर जनपद वाराणसी की निवासिनी है। ये 27 मई सन 2026 से लापता हैं। निशा के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 32 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गोरा है, सामान्य शरीर है, गोल चेहरा है। ये बादामी रंग की साड़ी पहनी हुई हैं। यदि आपको निशा के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें।

खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना है और ये सूचना हमें थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त हुई है। इनके अनुसार तिलकधारी उर्फ अन्नू पुत्र लक्ष्मण तिलकधारी हथियानी चंदौली के निवासी हैं। तिलकधारी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं, आयु 33 वर्ष, लंबाई 168 सेंटीमीटर, ये हिंदी और भोजपुरी भाषा बोल लेते हैं, रंग गेहुआ है, सामान्य शरीर है, ये 26 मई सन 2026 से लापता हैं। यदि आपको तिलकधारी उर्फ अन्नू के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन समाप्त करने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा, हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के बीच आज तीसरे दौर की वार्ता में सीजेपी ने दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में जारी प्रदर्शन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीजेपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की चर्चा में परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से संबंधित मांगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बाद में नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधि मंडल के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री नड्डा ने कहा कि बैठक के दौरान सरकार ने सीजेपी की इस मांग को मान लिया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि कोई एफआईआर दर्ज की गई है तो उसे वापस ले लिया जाएगा और एफआईआर की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: आत्महत्या करने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेजने के बाद कहा कि पिछले 10 दिनों से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में आज जालौन विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए अपनी गौरवशाली और नई पहचान को सुदृढ़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है।
2: बुंदेलखंड में कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती थी, ये क्षेत्र बीहड़ था, अंधेरा होते ही पूरे क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता था, लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीहड़ के अंधेरे को एक ओर करते हुए आज इसको विकास की रोशनी में हमारा बुंदेलखंड जगमगा रहा है और जालौन उसका प्रवेश द्वार बनकर के तैयार हो गया है। अब उसको एक नई पहचान बन गई है, देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनपद फतेहपुर में 489 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 12 वर्षों में छात्रों और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
2: आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी

0: आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर, आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के अधीन आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं वैश्विक जगत में अपनी दाग को का लोहा मना सकता है, यह व्यवस्था दी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे। उन्होंने यहां 342 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। आगरा पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है, जिनके ज्ञान, करुणा और सद्भाव के शाश्वत संदेश से विश्व प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मान्यता देश की समृद्ध सभ्यतागत और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती है। श्री मोदी ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर वाराणसी के निवासी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि ये काशी वासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
2: सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना हम सभी काशीवासियों के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। भगवान बुद्ध की प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन स्थली को मिली यह वैश्विक पहचान भारत की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान है। हम इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का विशेष आभार व्यक्त करते हैं।
1: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद कल पीलीभीत के पूरनपुर में ऐशबाग कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा बदायूं में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री वर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस सेवा के शुरू होने से बदायूं और उजानी क्षेत्र के यात्रियों को राजधानी लखनऊ के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी।
3: उस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिलेगा। हरी झंडी में अपने जो गृह नगर है, होम टाउन है उजानी, उस रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन उजानी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में सबसे पहली योजना में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था।
1: प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर वर्षा जारी है। कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में 25 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 27 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है।
4: मानसूनी प्रवाह बढ़ने के दृष्टिगत 27 जुलाई से पुनः प्रदेश में मानसूनी सक्रियता बढ़ने से प्रदेश में व्यापक वर्षा के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन समाप्त करने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास

परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और यूनेस्को ने सारनाथ की प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा, हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्वरबेला कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है विकास कुमार पांडे का काव्य पाठ।
2: मैं विकास कुमार पांडे अर्थात आपका विकास विदिप्त स्वरबेला हेतु अपनी रचनाएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरी पहली रचना का शीर्षक है सुर सरिता गंगा की सखी। मैं सुर सरिता गंगा की सखी, शिव अविनाशी की दासी हूँ। मैं अद्भुत नगरी काशी हूँ, मैं अद्भुत नगरी काशी हूँ। समस्त शास्त्र सारे पुराण मेरा गुण गान सुनाते हैं। कवि कोविद और ऋषि मुनि सब नित नूतन गाथा गाते हैं। मैं जग प्रसिद्ध प्राचीन पुरी समरसता की अभिलाषी हूँ। मैं अद्भुत नगरी काशी हूँ, मैं अद्भुत नगरी काशी हूँ। उत्तर वाहिनी गंगा जी का निर्मल जल कल कल बहता है। मेरा कण कण सत्य सनातन कथा धर्म की कहता है। शिव के त्रिशूल पर बसी हुई मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं अद्भुत नगरी काशी हूँ, मैं अद्भुत नगरी काशी हूँ। साहित्य कला और धर्म का शाश्वत संगम है पावन धरती। मोक्षदायिनी परम धाम में पतितों के पातक हरती। मंदिर मंदिर और घाट घाट सूर्योदय की आभासी हूँ। मैं अद्भुत नगरी काशी हूँ, मैं अद्भुत नगरी काशी हूँ। गुरु हैं सब राजा हैं यहाँ, कोई नहीं रंक न अज्ञानी। लोग यहाँ हैं सहज सरल सदा पराजित अभिमानी। यूं तो स्वभाव से हूँ अक्खड़ पर नर्म हृदय मृदु भाषी हूँ। मैं अद्भुत नगरी काशी हूँ, मैं अद्भुत नगरी काशी हूँ। भैरव जी हैं कुतवाल यहाँ, रक्षा का भार उठाते हैं। मानपूर्णा का दिया हुआ ही लोग यहाँ पर खाते हैं। नाथ हैं सबके विश्वनाथ, उनके पद तल की वासी हूँ। मैं अद्भुत नगरी काशी हूँ, मैं अद्भुत नगरी काशी हूँ। मैं सुर सरिता गंगा की सखी, शिव अविनाशी की दासी हूँ। मैं अद्भुत नगरी काशी हूँ, मैं अद्भुत नगरी काशी हूँ। मेरी दूसरी रचना एक गजल है। हृदय में प्रेम का लयबद्ध स्पंदन नहीं आया, हृदय में प्रेम का लयबद्ध

स्पंदन नहीं आया, तुम्हारे बाद फिर मेरा किसी पे मन नहीं आया, तुम्हारे बाद फिर मेरा किसी पे मन नहीं आया। गुजरती जा रही हैं अनगिनत ऋतुएं यहाँ लेकिन, गुजरती जा रही हैं अनगिनत ऋतुएं यहाँ लेकिन, न लौटा वह मधुर फागुन सरस सावन नहीं आया, तुम्हारे बाद फिर मेरा किसी पे मन नहीं आया। बरसते प्यार की बूंदों की रिमझिम की सुहानी धुन, बरसते प्यार की बूंदों की रिमझिम की सुहानी धुन, उसी बरसात का मौसम मेरे आंगन नहीं आया, तुम्हारे बाद फिर मेरा किसी पे मन नहीं आया। अगर मैं हाँ कहूँ तो हाँ, नहीं कह दूँ नहीं ही हो, अगर मैं हाँ कहूँ तो हाँ, नहीं कह दूँ नहीं ही हो, किसी के साथ भावों का वही बंधन नहीं आया, तुम्हारे बाद फिर मेरा किसी पे मन नहीं आया। और बनी धरती पवन उतरा हुआ था अवतरण जल का, बनी धरती पवन उतरा हुआ था अवतरण जल का, न आया प्रेम तब तक विश्व में जीवन नहीं आया, हृदय में प्रेम का लयबद्ध स्पंदन नहीं आया, तुम्हारे बाद फिर मेरा किसी पे मन नहीं आया। मेरी अगली रचना का शीर्षक है धैर्य, यह एक प्रेरणा गीत है। आज नहीं तो कल निकलेगा, यत्न करो तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, यत्न करो तो हल निकलेगा, रात्रि अमावस की बीतेगी, शुभ्र चंद्र शीतल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, यत्न करो तो हल निकलेगा। आकुलता अज्ञान का साथी, धीरज है गुणियों की थाती, आकुलता अज्ञान का साथी, धीरज है गुणियों की थाती, प्रतिदिन सींचोगे जब जल से, प्रतिदिन सींचोगे जब जल से, तभी वृक्ष से फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, यत्न करो तो हल निकलेगा। भीरु भाग्य का रोते रोना, श्रम से ही उपजेगा सोना, भीरु भाग्य का रोते रोना, श्रम से ही उपजेगा सोना, युग युग से अस्थापित मत है, युग युग से अस्थापित मत है, होकर कर्म प्रबल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, यत्न करो तो हल निकलेगा। कर देगा जो तन मन अर्पण, इच्छित के प्रति पूर्ण समर्पण, कर देगा जो तन मन अर्पण, इच्छित के प्रति पूर्ण समर्पण, वही प्रेम से होगा पूरित, जिसका उर निश्चल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, यत्न करो तो हल निकलेगा। करदम भर जाए जो तल में, पारदर्शिता कम हो जल में, करदम जब भर जाए तल में, पारदर्शिता कम हो जल में, उस पुष्कर से ऊर्जा लेकर कोमल धवल कमल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, यत्न करो तो हल निकलेगा। मरु प्रदेश हो अमिट प्यास हो, परंतु यदि भगीरथ प्रयास हो, मरु प्रदेश हो अमिट प्यास हो, परंतु यदि भगीरथ प्रयास हो, भेद सकें जो भूपत थर को, जल प्रवाह अविरल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, यत्न करो तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा,
यत्न करो तो हल निकले।

0: और मेरी अगली प्रस्तुति एक गीत है जो जिसका शीर्षक है पत्र तुम्हारे। इसको इस प्रकार सुने कि अक्षर अक्षर सुंदर मोती, वाक्य वाक्य थे मंत्र तुम्हारे। अक्षर अक्षर सुंदर मोती, वाक्य वाक्य थे मंत्र तुम्हारे। डिजिटल दुनिया की चकमक में कहीं खो गए पत्र तुम्हारे। वेब पेज पर कहाँ मिलेंगे हस्तलिखित सब अक्षर सुंदर। पन्नों पर नीलिमा समेटे अनुच्छेद संवेद समुंदर। वेब पेज पर कहाँ मिलेंगे हस्तलिखित सब अक्षर सुंदर। पन्नों पर नीलिमा समेटे अनुच्छेद संवेद समुंदर। कहाँ व्योम से लुप्त हो गए हस्तरचित नक्षत्र तुम्हारे। डिजिटल दुनिया की चकमक में कहीं खो गए पत्र तुम्हारे। साथ बिताए पल पल उद्धृत, फिर मिलने की नौ आशाएं। पढ़ते पढ़ते मन होता था हम मिलने उड़कर आ जाएं। साथ बिताए पल पल उद्धृत, फिर मिलने की नौ आशाएं। पढ़ते पढ़ते मन होता था हम मिलने उड़कर आ जाएं। पत्र नहीं थे केवल वे थे मधुर प्रेम के अस्त्र तुम्हारे। डिजिटल दुनिया की चकमक में कहीं खो गए पत्र तुम्हारे। पत्रों से ही बन जाती थी पर्व तीज की पूर्ण योजना। पत्रों में ही रच जाती थी रंग बिरंगी रुचिर अल्पना। पत्रों से ही बन जाती थी पर्व तीज की पूर्ण योजना। पत्रों में ही रच जाती थी रंग बिरंगी रुचिर अल्पना। खिल जाते थे पुष्प सुगंधित यत्र तत्र सर्वत्र तुम्हारे। डिजिटल दुनिया की चकमक में कहीं खो गए पत्र तुम्हारे। कागज के कोमल पन्नों पर दिल निकाल कर रख देते थे। पढ़ पढ़ कर हम चूम चूम कर फिर संभाल कर रख देते थे। कागज के कोमल पन्नों पर दिल निकाल कर रख देते थे। पढ़ पढ़ कर हम चूम चूम कर फिर संभाल कर रख देते थे। पत्र हृदय में ही रखते थे कहीं नहीं अन्यत्र तुम्हारे। डिजिटल दुनिया की चकमक में कहीं खो गए पत्र तुम्हारे। अक्षर अक्षर सुंदर मोती, वाक्य वाक्य थे मंत्र तुम्हारे। डिजिटल दुनिया की चकमक में कहीं खो गए पत्र तुम्हारे। कहीं खो गए पत्र तुम्हारे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: स्वरबेला कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विकास कुमार पांडे का काव्य पाठ। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में फिल्म प्यासा सावन का गीत। गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म कल की आवाज से। आवाज कुमार सानू और आशा भोसले की है। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

कार्यक्रम का गीत आइए सुनते हैं फिल्म धनवान से। आवाज़ लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की है। गीतकार हैं साहिर और संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर।

श्रोता, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलवीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज

ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्ष

मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहां चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्ह 11 बजे अध्यक्ष बिड़ला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिड़ला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने 1 ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तेन्नेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्ह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन

को बाधित करती है जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के 4थे दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है भारतीय ज्ञान परंपरा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषयक संगोष्ठी पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शब्दन फाउंडेशन,
2: अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और शब्दन फाउंडेशन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषयक एक संगोष्ठी का आयोजन आज शनिवार दिनांक 25 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे से अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र सुंदरपुर वाराणसी के लेक्चरर हॉल में हुआ। दीप प्रज्वलन और भगवती सरस्वती के साथ ही भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। आरंभ में शब्दन फाउंडेशन के निदेशक शिवेंद्र राणा ने कार्यक्रम के विषय वस्तु को बताते हुए कहा,
3: भारत की विस्तृत जो ज्ञान परंपरा है, ये वैश्विक गुरु जो इस संबोधन के लिए हम आज इतने उत्तेजित रहते हैं, उतावले रहते हैं, सगर्वित रहते हैं, उसके पीछे जो है वो भारत की ज्ञान परंपरा है। अब भारत की ज्ञान परंपरा, जैसा कि मैं नई शिक्षा नीति कहता हूँ और पीएन सिंह सर उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं, ये मेरी जानकारी का अभाव था जिसे उन्होंने ठीक किया। तो सर के सानिध्य में उन्होंने ये सुझाव दिया कि हमें नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस पर बात करनी चाहिए। और इस बातचीत का ही आधार ये व्याख्यान, ये संगोष्ठी बनी है, जिसमें मंच पे उपस्थित कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका परिचय कम से कम शिवेंद्र सिंह को कराना पड़े। फिर भी अब कार्यक्रम की अपनी एक मर्यादा है तो उसका पालन करते हुए मैं बाएं से शुरू करूंगा। बाएं प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह जी हैं, आचार्य हैं कृषि और पशुपालन विभाग बीएचयू में। उनके बगल में मैं जननायक हैं, भारतीय राजनीति के कम से कम हिंदी पट्टी में तो मैं यही मानता हूँ, माननीय सुधाकर सिंह जी, और डैशिंग पत्रकार मैं कहता हूँ, बाकी लोग तो इनको अपने व्यक्तित्व और कद के लिए जानते हैं, बट मेरे लिए हिमांशु सर हमेशा ही डैशिंग पत्रकार हैं। आदरणीय हिमांशु सर समूह संपादक हैं हरी भोले। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए डॉक्टर पीएन सिंह जी हमारे बीच हैं।
2: स्वागत भाषण करते हुए कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह ने रोजगार परक की बजाय रोजगार सृजक शिक्षा व्यवस्था के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा,
4: मंच पे आसीन आज के मुख्य अतिथि, जिनको हम सब हिंदी पट्टी का जननायक, अभी बहुत रिक्तता हो गई थी हिंदी पट्टी में नेतृत्व की, उस उम्मीद की किरण अपने सुधाकर जी में दिख रही है। हिंदी पट्टी आपके प्रति बहुत आशान्वित है। आज के सारस्वत अतिथि आदरणीय हिमांशु द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार संपादक हरिभूमि, और वास्तव में लोकतंत्र में जो चौथे स्तंभ की भूमिका है उसका छत्तीसगढ़ और उसर के क्षेत्रों में निर्वाह करते हुए, इस संस्थान के अध्यक्ष जो आज इस कार्यक्रम के भी अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई प्रोफेसर पीएन सिंह जी, इस सभागार में उपस्थित बंधुओं, आज जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति चलन में, वो नई शिक्षा नीति है, उसको लेकर के जो आज एक परिचर्चा यहां रखी गई, इसमें चूंकि कार्यपालिका के अंग हैं सुधाकर जी, तो उस शिक्षा नीति के क्या दूरगामी परिणाम होंगे, क्या उसमें परिवर्तन होने चाहिए, और समाज की नब्ज को जानने वाले हिमांशु जी, इन दोनों को आज हम सुनेंगे। वास्तव में आज हम इस बहस में उलझे हैं कि शिक्षा, मैं खुद अध्यापन के पेशे में हूं, और शिक्षा का कुल उद्देश्य क्या है आज की डेट में, रोजगार परक शिक्षा, बचपन से सुनते आए कि रोजगार परक शिक्षा। थोड़ा बौद्धिक विकास हुआ तो ये समझ में आया कि शिक्षा केवल रोजगार परक क्यों होनी चाहिए, रोजगार सृजन

जग क्यों नहीं होनी चाहिए? हम केवल नौकरी के लिए क्यों प्रयास करें? हम शिक्षा प्राप्त करके 10 लोगों को रोजगार क्यों ना उपलब्ध कराएं? इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन चीजों का समावेश है निश्चित तौर पर, लेकिन अभी भी इसको हम परिपूर्ण नहीं कह सकते, इसलिए कि यह तो शुरुआत है। हमको वैश्विक चुनौतियों का सामना करना है। पूरी दुनिया में जो पढ़ाया जाएगा, जो दुनिया में आविष्कार होंगे, उनके पैरेलल अपने को खड़ा करना है, तो अभी बहुत दूर की बात है, ये तो बस एक शुरुआत है। अब जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जिसको अभी नई शिक्षा नीति शिवेन कह रहे थे, डॉक्टर पीएन सिंह साहब ने उसको दुरुस्त किया, अब ये राष्ट्र की अवधारणा क्या है? नेशन और कंट्री, ये अंग्रेजी के दो अलग अलग शब्द हैं। कंट्री डिसाइडेड है कि उसका ओन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जनसंख्या होगी, अपनी एक भौगोलिक सीमा रेखा होगी, लेकिन जो राष्ट्र है इसकी जो परिकल्पना है ये सांस्कृतिक इकाई के रूप में है। इसके लिए भौगोलिक सीमा की जरूरत नहीं है, राष्ट्र के लिए किसी संविधान की जरूरत नहीं है। भारतीयता, राष्ट्रीयता दुनिया के किसी भी कोने में हो सकती है। अब जैसे हम कहते हैं कि किराना की दुकान, तो किराना की दुकान पे किराना नाम की कोई वस्तु बिकती है क्या? लेकिन दुकान किस चीज की है? किराने की है। आप परचून की दुकान पे जाते हैं, वहां परचून नाम की कोई वस्तु बिकती है क्या? लेकिन नाम क्या है उसका? और जब हम अपने समृद्ध ज्ञान परंपरा की तरफ बढ़ते हैं, जैसे विज्ञान में आप आइए, 14वीं शताब्दी से पहले का कोई वैज्ञानिक बता दीजिए हमको, तो ये सारे आविष्कार 14वीं शताब्दी के बाद ही क्यों होते हैं? इसके पीछे का कोई इतिहास नहीं है आपके पास? तो मैं जिस विषय का अध्यापक हूं, पशुपालन का, तो उसमें एक बीमारी पशुओं को होती है जिसको हम कहते हैं फुट एंड माउथ डिजीज, खंगवा रोग। इसका वर्णन कहां है? महाभारत में। कब है? जब विराट की गऊओं का हरण होता है, तो अर्जुन जब उसको छुड़ाता है, तो यह प्रसंग है कि कर्ण ने बाण चलाया और सारी गायें लंगड़ी हो गईं, उनके खुर और मुंह पक गया, उन्होंने श्राप दिया कि रथ का पहिया धंसेगा तो तुम मारे जाओगे, ये कथा है। अब इस खंगवा रोग की उस समय पहचान हुई और उसके इलाज के रूप में अर्जुन ने उनको रोग मुक्त किया। तो आज भी जो हमारे वनवासी भाई हैं, वो अर्जुन के 10 नाम लिख करके गौशाला के ऊपर टांग देते हैं। मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि 5000 साल पहले भी भारत में खंगवा रोग की पहचान करने की क्षमता और उसके इलाज करने की क्षमता थी। हम आयुर्वेद में केवल चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को जानते हैं। वृक्षायुर्वेद नाम की भी किताब है जिसकी पांडुलिपि दक्षिण भारत में है, हस्ती आयुर्वेद की किताब है, यहां तक कि पशुपालन में पाल काव्य संहिता, और जो पशु चिकित्सक होता था उसको प्राचीन काल में शालिहोत्र कहते थे, तो शालिहोत्र संहिता नाम की भी पुस्तक है। कृषि में कृषि पारासर एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, यानी जीवन के ये सारे जो मूल्य थे, कलाएं थी, 1000 साल पुराने मंदिर आपको भारत में मिल जाएंगे। और हम कहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग तो अंग्रेज आए तो उन्होंने हमको सिखाया, मुगल आए तो उन्होंने वास्तुकला का ज्ञान दिया। अगर इतना ही ज्ञान था तो वो जहां से आए वहां की एक पुरानी इमारत बता दीजिए ना, जो 1000 साल से खड़ी हो, 1500 साल से खड़ी हो, 700 साल से खड़ी हो। पूरे अरब कंट्री को आप देख लीजिए, खंडहर के अलावा वहां कुछ है क्या? लेकिन भारत से लगा हुआ जो दुनिया का सबसे बड़ा अंकोर वाट मंदिर था, हजारों साल के बाद भी उसका खंडहर दुनिया के किसी भी मंदिर से ज्यादा शानदार है। तो इन सारी विरासतों के साथ हम आधुनिक शिक्षा जगत में आगे बढ़े, और मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमको जो हमारा है वो बहुत खराब है, ऐसा भाव हमारे अंदर भरा।
जो भारतीय है वो

0: पिछड़ा है। हमको बंदर भालू नचाने वाले से ज्यादा सभ्य दुनिया में नहीं समझा जाता था। क्यों? क्योंकि किसी भी कौम को अगर गुलाम बनाना है तो उसको उसी उसकी भाषा से महरूम कर दीजिए।
1: मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित बक्सर से लोकसभा सांसद श्री सुधाकर सिंह ने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली से वर्तमान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तुलना करते हुए कहा कि इस पर और अधिक विमर्श की आवश्यकता है।
2: जिस जटिल सवाल पर हम आज आपके बीच में खड़ा है, आज यह राष्ट्रीय विमर्श में सबसे प्रमुख विषय है। मैं थोड़ा सा पुरातन व्यवस्था में जाना चाहता हूं, जो मैं ज्ञान इस दुनिया में ज्ञात इतिहास में शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र, और यह मैं कह सकता हूं कि शिक्षा की बुनियादी स्थान सिद्धाश्रम बक्सर से मैं सांसद हूं। ये पहला दुनिया का ज्ञात इतिहास में जहां ज्ञान का केंद्र खुलता है, और ज्ञान का केंद्र खोलने वाले कौन? विश्वामित्र। विश्वामित्र गाजीपुर, उस समय उसका नाम राज्य का दूसरा नाम था, वो गाजीपुर जिला के मूलतः जो राज था उसके वो राजा हुआ करते थे। जब एक राजा यह निर्णय लेता हो कि जो भी राज व्यवस्था है, राजशाही है, उसके जरिए समाज में व्यापक बदलाव नहीं लाया जा सकता, और उन्होंने राज को त्यागा और अयोध्या महाराज को राज को सुपुर्द किया, मतलब विलय किया। किस काम के लिए? अपने अगली पीढ़ी के लोगों को नहीं दिया राज, और एक ज्ञान केंद्र स्थापित करते हैं सिद्धाश्रम, जहां उसके छात्रों में से भगवान राम थे। राजकुमार राम भगवान राम के रूप में उसी शिक्षा स्थल से परिवर्तित होते हैं, और दुनिया के जितने महापुरुष हुए, जन्म तो राजकुमार के रूप में या सामान्य इंसान के रूप में लिए, बुद्ध हो, ईसा मसीह हो, मोहम्मद साहब हो, आपने ज्ञान के बदौलत ईश्वरत्व को प्राप्त किया, यही दुनिया का इतिहास है। जाहिर सी बात है कि उनके जन्म में, उनके वंश में ईश्वरत्व नहीं था, तो कैसे ईश्वरत्व प्राप्त किया उन्होंने? इन सभी लोगों की मैं बात कर रहा हूं, वो था ईश्वरत्व प्राप्त ज्ञान के जरिए, और जो ज्ञान से हासिल होकर के भगवान राम, तो मैं उस भूमि से आता हूं, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की तीन बातें निर्धारित की। एक, ये बहुत बुनियादी सवाल है और इसको बिना हल किए कोई ये सोचता होगा कि हम शिक्षा व्यवस्था को कायम कर देंगे, तो समझना होगा शिक्षा और कौशल दो अलग अलग विषय है, एजुकेशन और स्किल अलग अलग विषय है। अभी हम लोग जितनी बात कर रहे हैं इस देश में नई शिक्षा नीति के नाम पर, वो स्किल की बात कर रहे हैं, कौशल की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात ही नहीं कर रहे हैं इसमें। खैर, वो बाद में हम बात करेंगे। उन्होंने तीन बुनियादी सिद्धांत निर्धारित किया। एक, कि जो शिक्षा स्थल होगा वह किसी राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं होगा, मतलब किसी साम्राज्य के भूगोल का हिस्सा नहीं होगा, वह एक स्वतंत्र निकाय होगा, स्वतंत्र उसकी पहचान होगी, जो किसी स्टेट का रूल्स गवर्न नहीं करेगा।
1: उन्होंने कहा कि भारत की ताकत उसकी जनसंख्या में नहीं बल्कि यहाँ की विविधता में है, और वसुधैव कुटुंबकम यहाँ की परंपरा है।
2: भारत की ताकत उसकी जनसंख्या में नहीं है, भारत की असल ताकत उसकी विविधता में है, और विविधता जो जिसके बारे में लिखा है हमारे ग्रंथों में, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा, ये वसुधैव कुटुंबकम से हम आगे हैं। हमारे पूजा पद्धति में नौ ग्रह की पूजा करते हैं, इतना ही नहीं, हम पृथ्वी को नहीं, पूरे ग्रहों में जितने लोग हैं उसको सभी को हम मानते हैं, चराचर को, हमारे पूजा पद्धति में है। तो वसुधैव कुटुंबकम तो छोटा सा है पृथ्वी, हम तो दुनिया में जो भी ब्रह्मांड में जीव जंतु है वो सभी के हम कल्याण की बात करते हैं, ये हमारे भारतीय संस्कृति की धरोहर है।
1: संगोष्ठी के सारस्वत अतिथि हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने पौराणिक मान्यताओं और वैदिक परंपराओं के आलोक में वर्तमान शिक्षा प्रणाली की

0: तुलना करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के सूत्र साविद्याया विमुक्तये का विस्मरण कर देने से आधुनिक शिक्षा प्रणाली दिशाहीन होती जा रही है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है।
1: मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं उस नगरी में मौजूद हूँ जिसे समाज में विद्वानों की नगरी के तौर पर मान्यता प्राप्त है। यहाँ केवल गंगा की धारा नहीं बहती है, यहाँ पर ज्ञान की धारा भी बहती है। तो ऐसी धारा में डुबकी लगाने का सौभाग्य इस आयोजन के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ। मैं आयोजकों को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आयोजन का हिस्सा बनाया। जिस विषय के संदर्भ में हम यहाँ पर मौजूद हैं, भारत की ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अगर देश के सम्मुख किसी भी नीति के संदर्भ में बात होगी तो वो नीति राष्ट्रीय ही होगी। तो शुरुआत कहां से करें? भारतीय ज्ञान परंपरा से, और दूसरी तरफ है शिक्षा नीति। तो पहले तो बात यहां से ही शुरू होगी कि ज्ञान और शिक्षा ये एक ही है या ये अलग अलग है। और भारत की ज्ञान परंपरा के संदर्भ में उल्लेख करते हैं और शिक्षा नीति के संदर्भ में उल्लेख करते हैं। हमारे देश में शिक्षा नीति का उल्लेख जो होता है वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के साथ होता है कि 1835 में लॉर्ड मैकाले आए और उन्होंने बाबू बनाने का काम किया, हमारे को अंग्रेजों के लिए क्लर्क तैयार करने का काम किया, यहां से बात की शुरुआत करते हैं। पर हम 1835 को जाने देते हैं। देश जब आजाद हुआ 1947 में, वहां से अगर बात को शुरू करते हैं और वहां से लेकर 2020 की नई शिक्षा नीति तक भी आते हैं, तो दोनों ही ज्ञान परंपरा और शिक्षा नीति में जो मूलभूत अंतर है वहां से शुरू करता है। हमारी ज्ञान परंपरा क्या थी? क्या हमारी ज्ञान परंपरा के अंतर्गत यह था कि आपको रोजगार हासिल करना है, परिवार के भरण पोषण के लायक बनना है, ऊंचा पद प्राप्त करना है, समाज में उन्नत स्थान हासिल करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है? नई शिक्षा नीति में ऐसे उद्देश्य हो सकते हैं, पर भारत की ज्ञान परंपरा के अगर पन्ने पलटते हैं तो ऐसा कोई उल्लेख मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं देता। भारत की ज्ञान परंपरा के संदर्भ में अगर आप दृष्टि डालना चाहते हैं तो हमारी पौराणिक मान्यताओं के साथ में चलते हैं। हमारी पौराणिक मान्यता यह कहती है कि यह मनुष्य का जो जीवन है, यह मनुष्य की जो देह है, यह तकरीबन 84 करोड़ योनियों से गुजरने के बाद हमें प्राप्त होती है। अर्थात यह मनुष्य देह प्राप्त करने से पहले हमारी जीवन की यात्रा बड़ी लंबी रही है और उस लंबी यात्रा में हमने अलग अलग योनियों में अपना समय बिताया है, जिसमें हम गिद्ध भी रहे, चील भी रहे, कौवे भी रहे, छिपकली भी रहे, सांप भी रहे। इन सारी प्रवृत्तियों से गुजरते हुए हमें मनुष्य योनि बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, ईश्वरी कृपा से प्राप्त होती है। और दोनों में अंतर क्या है? जो ये अंतिम योनि मनुष्य योनि है और उससे पहले की जो योनि है उसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि बाकी जितनी भी योनि आप इस सृष्टि में पाएंगे, जन्म के साथ आपकी नियति और स्वभाव तय रहता है। शेर शिकार ही करेगा, पैदा होने के साथ तय है कि मछली तैरेगी ही, मछली उड़ेगी नहीं। आप जितने भी प्राणियों के संदर्भ में अपने जहन में कल्पना कीजिए, साधना से, प्रयास से, कोशिश से वह अपनी नियति को परिवर्तित नहीं कर सकता। उसका स्वभाव उसके जन्म के साथ नियत होता है। पर मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा जीवन ईश्वर ने रचकर दिया है जिसमें आप अपने प्रयास, अभ्यास, संगत से अपने आप को किसी भी स्वरूप में ढाल देते हैं। इसीलिए भारत की ज्ञान परंपरा के अंतर्गत यजुर्वेद में उल्लेख आता है मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो। मतलब आपको शरीर भले ही मनुष्य का मिल गया, लेकिन शरीर धारण होने से ही आप मनुष्य नहीं हो जाएंगे। आपको अपने जीवन में वो तमाम संस्कार चाहिए जिसके आधार पर आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी होंगे। तो भारत की ज्ञान परंपरा का अगर उल्लेख करते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा में अपेक्षा यह रही कि शिक्षा के स्थान राज्य हस्तक्षेप से दूर रहेंगे और सुयोग्य हाथों में रहेंगे। अगर ईश्वर ने भी

0: मनुष्य देह के रूप में स्थान लिया तो उसे शिक्षा के लिए गुरुकुल की ही छाओं में जाना पड़ा। चाहे आप भगवान राम को उदाहरण लीजिए, चाहे वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहे, या सुधाकर भाई को सौभाग्य मिला ऐसे क्षेत्र से जनप्रतिनिधि होने का, यहां पर गुरु विश्वामित्र के आश्रम में रहकर राम ने शिक्षा अभ्यास किया, या चाहे आप भगवान कृष्ण का उल्लेख करें जिन्होंने उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। लेकिन समझने योग्य बात क्या है? समझने योग्य बात है कि वहां पर उन्होंने क्या पाया। मैजवा एक दहेज दुर्धर बने, अच्छे राजा बने, नहीं, वह सबसे पहले बेहतर मनुष्य बने। और मनुष्य होने के संदर्भ में जरूरत क्या होती है? मनुष्य के संदर्भ में जरूरत होती है संवेदनशीलता की। और संवेदनशीलता कैसी? तो राम के जीवन के एक प्रसंग को आपके बीच में साझा करता हूं, शायद आप उससे अनुभूति ले पाए कि हमें अगर भारत की ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में सामंजस्य तलाशना है तो हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए। तो प्रसंग ये आता है कि जब राम को रामकथा के अंतर्गत वनवास प्राप्त होता है और लक्ष्मण जी के साथ, जानकी जी के साथ प्रभु श्री राम चित्रकूट पहुंचते हैं, तो वहां पर उन्हें जानकारी मिलती है कि भरत संपूर्ण कुल के साथ चित्रकूट राम से मिलने के लिए आए। वो प्रसंग आप सबकी जानकारी में होगा। उल्लेख ये भी आता है कि लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद भरत हम लोगों को यहां से चैन से नहीं जीना जाना चाहते, तो लक्ष्मण काफी उग्र होते हैं, लेकिन राम उन्हें संभालते हैं और बताते हैं कि भरत मुझसे मिलने के लिए ही आ रहा है, तो आप भरत के आने के संदर्भ में व्यवस्था करो। तो जितने वनवासी थे वो सब आकर राम से मिले कि बताइए क्या व्यवस्था करनी है। जो उस वनवासियों का प्रमुख था उसने राम से अनुरोध किया, प्रभु मुझे आदेश करें, हम क्या कर सकते हैं। तो राम ने कहा कि मैं जिस रास्ते से आया था अयोध्या से चित्रकूट के लिए, तो उसमें कांटे बहुत, झाड़ियां बहुत हैं, तो भरत को उसी रास्ते से आना है, तो मेरा आग्रह है कि आप उन कांटियों को उस रास्ते से साफ करो, उस मार्ग को साफ करो, अन्यथा उसे बड़ा कष्ट होगा। तो वन प्रमुख जो था वो थोड़ा हंसा, बोले अच्छा, अयोध्या के राजकुमार बड़े नाजुक हैं, कांटों के बीच से चलकर आएंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, मैं करवाता हूं। तो राम को वो उत्तर पसंद नहीं आया। राम ने थोड़े तीखा नज़र लगा के, किसने कहा कि भरत इतने नाजुक हैं? उसने कहा आप ही ने तो बताया ये रास्ते में कांटे बहुत हैं, मेरा भाई भरत वहां से आएगा तो उसे बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए उन्हें साफ कर दो। बोले तुम समझ नहीं पाए, और यहां से एक संवेदनशील व्यक्ति के संदर्भ में अनुभूति लीजिए। राम कहते हैं कि भरत को तकलीफ उन कांटों पर चलने से नहीं होगी, भरत के तलवे तो इंद्र के वज्र के समान मजबूत हैं, कठोर हैं, अगर वह उन कांटों से चलेगा तो वो कांटे उसके तलवों के नीचे टूट जाएंगे, पर भरत जब उन कांटों से गुजरेगा तो वो इस बात से ग्लानि से भर जाएगा कि उसका बड़ा भाई राम इन कांटे भरे रास्तों से गुजरता हुआ चित्रकूट पहुंचा। यह है हमारी ज्ञान परंपरा के अंतर्गत पाई गई संवेदनशीलता।
1: संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र वाराणसी के निदेशक प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह ने विद्या ददाति विनयम इस सूक्ति की व्याख्या करते हुए कहा कि भारतीय परंपरा शास्त्रार्थ की परंपरा है, जिसमें सुनने, समझने और तब बोलने की व्यवस्था रही है।
2: भारत की परंपरा में रोजगार परक शिक्षा क्यों, रोजगार सृजक शिक्षा क्यों नहीं, ये बहुत उम्दा सवाल है, इस पर विचार करिएगा। बाकी चीजें पक्ष विपक्ष मानना न मानना ये चलता रहेगा, लेकिन हम सभी या तो इस दौड़ में हैं या हमारे बच्चे इस दौड़ में हैं अथवा होंगे, तो रोजगार सृजक शिक्षा क्यों नहीं। भारत में कहा गया विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, तो भाई विद्या तो विनय देती है, और जब विनय देती है तो पात्रता अपने आप आती है, पात्रत्वाद धनमापनोति, लेकिन इस प्रकार की पात्रता से जो धन

0: आएगा, धन आएगा, लेकिन इस प्रकार से प्राप्त की गई योग्यता से जो धन आएगा, धनात धर्म ततो सुखम, तब धर्माचरण हो सकेगा और फिर सुखी होगे अपने भी और समाज भी। क्या हम इस व्यवस्था को पुनः प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो भविष्य उज्जवल है, नहीं तो विचारणीय है। एक बात निश्चित, भारत की परंपरा में शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, सुनने मनन करने विचार करने और निर्णय की परंपरा रही है। इसलिए हम कृपा करके किसी भी व्यवस्था को सुधार की दृष्टि से आलोचना के क्रम में कालखंडों में भले बांट दें, वो होना ही चाहिए, लेकिन हम अगर ये कहें कि 2014 के पहले ऐसा था और ऐसा नहीं था, तो मेरे जैसा आदमी एक अध्यापक है और कहा गया कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोला ही भयास, राज धर्म तन तीन जो बेग हो ही नास, ये कहा गया। इसीलिए हम जिस विचारधारा से जुड़े हैं वहां कहा जाता था कि ये तो विचारधारा में नेता विरोधी दल है, ये अक्सर कहा जाता है, लेकिन जब तक हम सामने वाले को सुनेंगे नहीं तब तक हमें अपनी कड़वी सच्चाई पता नहीं चलेगी, तो सुधार की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन दो तीन चीजें आंकड़े के साथ फिंगर टिप पर आज हर समय उपलब्ध है। जब आप भाई साहब बात कर रहे थे तो 2014 तक भारत में कुल 760 विश्वविद्यालय थे, आज 1338 हैं। कॉलेज 38498 थे, आज 52081 हैं। IIT 16 थे और आज 23 हैं। IIM 13 थे, आज 22 हैं। मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज 800 प्लस हैं। और MBBS में सीटों की संख्या 2014 के मुकाबले 3 गुना बढ़ गई है। इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि 2014 के पहले जो व्यवस्था थी उसको हम नकार दें, क्योंकि वो नींव है। और नींव को जो नकार देगा, महरुद्दीन खान एक बात कही कि नींव खोखली हुई अगर तो गिरना कब तक टालोगे, नए नए सहतीर लगाकर कब तक उसे संभालोगे। तो जो नींव है उसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन आज की परिस्थिति को भी नजरअंदाज करना बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिए तुलना इन रूपों में भी होनी चाहिए। बाकी एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे यहां मनुष्य बनने की बात कही गई, आदमी अगर बन जाएगा, और एक चीज गुरुप्रसाद भाई आपको भी याद होगा, 1986 की जब नीति आई थी तो एक आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन में एक बिंदु की शुरुआत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से हुई थी, क्योंकि उन दिनों पूरे देश में संस्कृत का एकमात्र प्रतिस्थापित विश्वविद्यालय था, बाकी भी संस्थाएं थीं। किस लिए वो आंदोलन हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत की उपेक्षा पर। और जब 1992 में इसका संशोधन आया तो उसमें क्लाज 5.13.D जोड़ा गया संस्कृत के बारे में, 5.13.D 1992 में जोड़ा गया। वर्तमान शिक्षा नीति क्या कहती है? अपने प्रस्तावना में ही कहती है कि यह भारत के सनातन मूल्यों के आलोक में तैयार की गई शिक्षा नीति है, जो मातृभाषा में शिक्षण की बात करती है।
1: कार्यक्रम का संचालन शिवेंद्र राणा और धन्यवाद ज्ञापन अश्विनी जी ने किया। अभी आप सुन रहे थे अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और शब्दन फाउंडेशन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारतीय ज्ञान परंपरा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषयक संगोष्ठी पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर आशुतोष, प्रस्तुति चंदन सिंह, संयोजन प्रफुल्ल कुमार सिन्हा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे शब्दन फाउंडेशन।
3: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: बापू ने कहा था,
1: सत्य ईश्वर के समान है और सच्चाई का मार्ग सदैव सबके लिए कल्याणकारी है।
0: आइए सत्याग्रह को बनाएं राष्ट्र निर्माण और विकास का

0: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
4: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
3: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
5: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा।

0: जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है, उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
0: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
2: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
1: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
3: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर, रिसर्चर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है।

0: है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वेश स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया।

समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सौंपा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब प्रधान ने कहा कि तलबा के एहतजाज के बाद गुज़िश्ता 10 दिन से जारी सूरत हाल से उन्हें दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये अना का मामला नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने नई दिल्ली जंतर मंतर और पूरे मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की खिदमत उनकी जिंदगी की अव्वलीन तरजीह रही है और वो हमेशा इस बात पर अहद बस्ता रहेंगे। जनाब प्रधान ने कहा कि 16 जुलाई को ऐलान किए गए नीट यूजी नतायज इत्मीनान बख्श थे। इनमें कमजोर तबकों से वाबस्ता कई तलबा ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। जनाब प्रधान ने कहा कि अलबत्ता ऐसे वक्त में भी जिम्मेदार ओहदों पर फायज अफराद ने रुकावटें पैदा करने की कोशिश की और तलबा को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि इन बातों से उन्हें गहरी तकलीफ पहुंची है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी नए वजीर तालीम होंगे। जनाब जोशी को उनके मौजूदा कलमदान के साथ साथ वजारत तालीम का चार्ज सौंपा गया है। जनाब जोशी इस वक्त सारेफीन के उमूर, खुराक और अवामी निजाम तकसीम नेज नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वुजरा की मरकजी कौंसिल से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सीजेपी ने हुकूमत के जरिए अपने मुतालबात पूरे किए जाने के बाद अपना एहतजाज खत्म कर दिया है। मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सीजेपी के वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत की, जिसमें इम्तहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक को रोकने के इकदामात के लिए उसके मुतालबात पर तवज्जो मरकूज की गई। बाद में नई दिल्ली में सीजेपी के वफद के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग के दौरान हुकूमत ने सीजेपी के मुतालबात से इत्तेफाक किया है कि एहतजाज करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई और ना ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन एफआईआर ना हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: सीजेपी के चीफ तर्जुमान सौरभ दास ने इस उम्मीद का इजहार करते हुए एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया कि जिन उमूर पर इत्तेफाक हुआ है उन पर मुतफक्का वक्त की मुद्दत में अमल दरामद किया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वालों के कुनबों को मुआवजे देने के मामले पर जनाब नड्डा ने कहा कि इस जिम्न में हुकूमत को पूरी हमदर्दी है और वो उसूलों जवाबित के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मुआवजा फराहम करने को यकीनी बनाएगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: इस दौरान सीजेपी के कौमी तर्जुमान आशुतोष रांका ने तमाम एहतजाज करने वालों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर एहतजाज खत्म करें और पुरअमन तरीके से अपने घरों को वापस लौट जाएं।
2: तमाम मांगें जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: लोकसभा में हज़्ब इख्तलाफ के लीडर और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुल्क के तालीमी निजाम में इस्लाहात के लिए ठोस इकदामात करें। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तालिब इल्मों की जीत करार दिया। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के तमाम स्टेशन अब मुसाफिरों की खिदमात के लिए खुल गए हैं। इससे कबल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने सिक्योरिटी वजूहात के 22 18 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया था। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है और तकरीबन 1,15,000 लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ली हुई है। शिवसागर चराइदियो और जोरहाट सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। सैलाब से मजीद 14 लोगों की अमवात

0: की खबर है, जिससे रियासत में हलाक होने वालों की कुल तादाद 61 हो गई है। मुतासर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आसाम में सैलाब से इंसानी जानों के नुकसान और उससे होने वाली तबाही पर दुख का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा से टेलीफोन पर बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का रोमानिया का सरकारी दौरा मुकम्मल हो गया है और वो आज तीसरे पहर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। इससे कबल दिन में सदर जमहूरिया मुर्मू ने भारतीय बिरादरी के अरागीन के साथ बातचीत की। बुखारेस्ट में भारतीय बिरादरी के लिए मुनाकिदा एक इस्तकबालिया से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय बिरादरी के तआवुन की ये कहते हुए सताइश की कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकत दारी के अहम सुतून हैं।
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर, रिसर्चर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया ने रोमानिया के अपने हम मनसब के साथ वसी मुजाकरात किए। उनका मकसद तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तालीम, काबिल तजदीद तवानाई और सकाफत के शोबों में बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करना था। सदर जमहूरिया मुर्मू ने रोमानिया के वजीर आजम और पार्लियामानी लीडरों से भी मुलाकात की। नीज भारत रोमानिया कारोबारी फोरम से खिताब किया। उन्होंने अननोन सोल्जर के मकबरे पर खराज अकीदत पेश किया। उन्हें इक्तिसादी मुतालियात की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी के जरिए डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। यह एजाज उन्हें अवामी खिदमत और भारत रोमानिया ताल्लुकात में उनके खिदमत के मद्देनजर दिया गया है। रोमानिया सदर जमहूरिया मुर्मू के 3 रोजा सरकारी दौरे का आखिरी मरहला था। 3 मुल्कों के इस दौरे में मोल्डोवा और शिमाली मकदूनिया का दौरा भी शामिल था। उत्तर प्रदेश का कदीमी बौद्ध मजहबी मकाम सारनाथ यूनेस्को की आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल हो गया है। आज जनूबी कोरिया के बुसान में आलमी मीरास से मुतालिक कमेटी के 48वें इजलास के दौरान इसे बाजाब्ता शामिल किया गया। आलमी मीरास की सरकर्दा फहरिस्त में भारत की ये 45वीं इमलाक है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सारनाथ को आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर मसर्रत का इजहार किया है और इसे हर भारतीय के लिए फख्र का एक लम्हा करार दिया है। नायब सदर ने कहा कि सारनाथ अमन, दानिशमंदी और हमदर्दी की एक लाजवाल अलामत रहा है, जिससे भारत के रूहानी और फलसफियाना दायमी विरसे की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसे फहरिस्त में शामिल किया जाना मुल्क की तहजीबी और रूहानी विरासत का जश्न है। सकाफत और सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारतीय सकाफती विरासत के लिए एक अहम लम्हा करार दिया है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा सोना बेशा यानी सोने से तैयार मलबूसात के साथ रथ पर सवार देखे जा सकते हैं। रिवायती खूबसूरत जेवरास्ते आरास्ता इन देवी देवताओं के दर्शन के लिए पूरे मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज सोनावेशा में निहायत शान शौकत के साथ रथ पर सवार हैं, जो खूबसूरत ताज, हार, बाजूबंद, बालियां और दीगर रिवायती जेवरात से आरास्ता हैं और ये तकरीबन 208 किलोग्राम सोने और दीगर कीमती जवाहरात से तैयार किए गए हैं। ये पवित्र सुनहरे

0: पास जो सालाना रथ यात्रा की अहम तरीन रसूमात में से एक है, अकीदतमंदों के दर्शन के लिए आधी रात तक जारी रहेगा। पूरा शहर अकीदत के जज्बे से सरशार है। इस तकरीब के पुरम इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के खातिरखा इंतजाम किए गए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमन अली खान।
1: मुल्क शाम की राजधानी दमिश्क को मशरकी सूबे देर एल ज़ोर से मरबूत करने वाली कौमी शाहरा पर दो बसों के आज आपस में टकराने के बाद कम अज कम 35 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मकामी मीडिया ने खबर दी है कि सहराई शाहरा पर शहरियों की एक बस और दाखिली उमूर की वजारत की एक बस के दरमियान टक्कर में तकरीबन 30 अफराद जख्मी हुए हैं। इस हादसे की वजह अभी मालूम नहीं हुई है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कल इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइंदा दो रोज के दौरान छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। आईएमडी ने इस माह की 27 तारीख तक अंडमान और निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। मर्दों की क्रिकेट में हरारे में तीन मैचों की सीरीज के दूसरे T20 बैन अलाक्वामी मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया। भारत ने जिम्बाब्वे को 220 रन का बड़ा निशाना दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 18वें ओवर में महज 129 रन पर आउट हो गई। भारत के बल्लेबाज ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए 3 विकेट हासिल किए। अपना पहला मैच खेल रहे यश ठाकुर और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट लिए। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए थे। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है। भारत ने T20 के नए कप्तान सुरेश अय्यर की कप्तानी में पहली सीरीज जीती है। आज कनाडा के ओंटारियो में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनहत सिंह ने मिस्र की बार्ब समे को 3-1 से हराने के बाद आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। इसी मकाम पर अब उनका सामना खिताबी मुकाबले में मिस्र की रुकैया सलेम से होगा। इस मैच के भारतीय वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 10:30 बजे शुरू होने का इम्कान है। अनहित सिंह तारीख में महज दूसरी खिलाड़ी हैं जो जोशना चिनप्पा के बाद इस सरकर्दा खिताबी मुकाबले में पहुंची हैं। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी ने एहतजाज खत्म कर दिया है क्योंकि नई दिल्ली में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मुजाकरात के बाद उनके मुतालबात को हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया का 3 मुल्कों का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के कदीम बौद्ध मजहबी मकाम को यूनेस्को की आलमी सकाफती फहरिस्त में शामिल किया गया है। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में दूसरे T20 बैन अलाक्वामी मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आज सुनते हैं कारगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
4: नमस्कार, एक ऐसे योद्धा की कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं जिनके जीवन में 15 जुलाई 1999 का दिन पुनर्जन्म दिवस या अमृत दिवस के रूप में आता है। करगिल की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर जब मौत मोर्टार बनकर गिरी, शरीर पर दर्जनों चोटें लगी, लेकिन उसके बावजूद हौसला नहीं टूटा। लगभग मुर्दा घर से वापस लौटकर भारत के पहले ब्लेड रनर बने, करगिल और लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में मैराथन दौड़ी, कई पदक जीते और आसमान से छलांग लगाकर पहले सोलो स्काई

0: सफाई ड्राइवर होने का गौरव भी हासिल किया। हजारों दिव्यांगों के प्रेरणा स्रोत भी बने। स्वागत कीजिए करगिल वॉर के हीरो, भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह जी का। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जय हिंद, सबको नमस्कार, राम राम।
0: कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपका बचपन था, जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे या फिर उससे आगे बढ़कर जब आप कॉलेज में गए, तो पहली बार कब एहसास हुआ या कब विचार आया कि आपको सेना में जाना चाहिए? क्या परिवार के किसी लोग ने आपको प्रेरित किया या दोस्तों के बीच ऐसा माहौल था कि दोस्त कह रहे थे कि आपको सेना में जाना चाहिए? वो कहानी थोड़ी सी बताइए।
1: मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, जगाधरी के पास, और मेरी सारी स्कूलिंग जो हुई है वो अब जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, रुड़की, जो IIT रुड़की के लिए मशहूर है, वहां पे हुई है। कॉलेज में प्राइवेट किया है। और रही बात प्रेरणा स्रोत, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, मेरे जो दादाजी थे वो वहां पर आर्मी का एक सेंटर है उसमें सेवा करते थे, वो अकाउंट्स में थे CDA में, उनके साथ मैंने बचपन बिताया अपना, क्योंकि मेरे पिताजी दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे, वो बॉर्डर रोड्स में सेवा कर रहे थे। तो दादा दादी के पास रहते हुए जो एक जीवन था वो बड़ा डिसिप्लिन वाला और सख्त था, लेकिन नाना नानी के पास जब हम छुट्टियों में जाया करते थे तो बड़ी मस्ती होती थी। तो वो जो बच्चा दूसरी क्लास में उनके पास रहता था उसको थोड़ा सा अटपटा लगता था, और डिसिप्लिन में किसको रहना पसंद है। तो एक दिन मैं ये सोच के कि यार नानी के पास ज्यादा मस्ती होती है, घर से भाग गया। और जब मैं घर से भागा तो रुड़की की सीमा से बाहर पहुंचा ही था कि किसी जानने वाले ने मुझे पकड़ा, साइकिल पे बिठाया और वापस अपने घर के बाहर छोड़ दी। तो जिंदगी का मेरा वो पहला यूटर्न था, और उस पहले यूटर्न में मैंने सबक लिया था कि भाई डीपी सिंह, जिंदगी में आप अपनी सच्चाइयों से भाग नहीं सकते। जहां हो, जैसे हो, वहां पर आपको अपने परिश्रम से, अपने बल से ऊपर उठ के जीना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये जो पहला यूटर्न था, इसने मुझे बाद में जब मैं युद्ध में घायल हुआ, जीने के लिए जो एक फाउंडेशन थी वो ऑलरेडी बना दी थी, सेट कर दी थी। तो जब मैं वापस आया घर तो मैंने सोचा कि यहीं पे रहना है, ठीक है, अब डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन वाले एंगल से ही चलेंगे। और मेरे दादा दादी ने मुझे जोड़ दिया था गुरुद्वारे से, वहां से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने फौज में ऑफिसर बनने की 8वीं क्लास में ही ठान लिया था, जब मैं भाग के गया था और घर में जब वापस जाके छोड़ दिया गया था, तो एक क्लैरिटी आ गई थी तभी कि भैया जिंदगी जीनी है तो फौज में अफसर बनकर जीना है।
0: मेजर साहब, कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। 7 डोगरा रेजिमेंट में कमीशन होना और भारतीय सेना की वर्दी पहनना, कितना गर्व का पल था, क्या इमोशंस आपके जहन में चल रहे थे उस समय?
1: बिल्कुल, बहुत गर्व का पल था, क्योंकि आप ये सोचिए कि जिस बच्चे ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा हो और उस सपने को पाने तक उसको बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू गुजरना पड़ा हो, पहले NDA में फेल हुए, उससे पहले 11वीं में फेल हुए, NDA में 3 बार अटेम्प्ट किया फेल हो गए, फिर ग्रेजुएशन प्राइवेट किया तो उसमें भी एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी शारीरिक रूप से, और घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो लग रहा था कि अब बस जीवन डार्क हो गया। लेकिन वहां पर भी हौसला अफजाई माता जी ने करी कि तुम पढ़ते रहो, और क्योंकि उन दिनों में सिचुएशन ऐसी थी घर की फाइनेंशियल की, मैंने बैंक में एक प्राइवेट नौकरी कर ली थी कि मैं पढ़ सकूं और साथ में CDS की तैयारी कर सकूं, क्योंकि जाना तो अल्टीमेट फौज में ही है। फिर CDS में फेल हुए 2-3 बार, फिर इंटरव्यू में फेल हुए, तो कम से कम 5-6 फेलियर देखने के बाद जब आप कमीशन होते हो, अपने ड्रीम को पाते हो, तो एक अलग ही तरीके का जुनून जो सिर में होता है वो मतलब देखने को मिलता है, वो खुशी जाहिर होती है। और उससे भी बड़ी खुशी थी कि कुछ ही दिनों में उसके बाद युद्ध आ गया था, तो बैप्टाइजिंग बाय फायर वाली जो बात, हर सोल्जर जो एक तरीके से तैयार रहता है कि फौज में आए इसलिए कि भारत माँ के लिए कुछ करके दिखाएं।
0: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 1999 में जब करगिल युद्ध शुरू हुआ और आपको पहली बार पता चला कि आपको करगिल में युद्ध के लिए जाना है, उस समय क्या आपके जहन में चल रहा था और आपको वो सौभाग्य मिला, गौरव मिला, क्या परिवार से थोड़ी बातचीत हुई, परिवार के लोगों का क्या कहना था या फिर सेना के अंदर का क्या माहौल था, थोड़ा बताएं उसके बारे में।
1: देखिए, उन दिनों इंटरनेट या फोन की सुविधा नहीं हुआ करती थी कि हम कनेक्टेड रहे, सिर्फ चिट्ठी लिखा करते थे कभी कभार। और जैसे मैंने बताया 97 दिसंबर में मैं कमीशन हुआ था और साल भर के अंदर ही लड़ाई लग गई थी, तो वो जो एक साल बीता था वो कोर्सेज, यंग ऑफिसर्स कोर्स, फिर कमांडो कोर्स करने में बीत गया था, और सिर्फ 2 महीने की छुट्टी

0: तब तक मेरी पलटन ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय हो चुकी थी। तो आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से कि आप हमेशा कनेक्टेड हो और पता चल रहा है कि परिवार वाला क्या सोच रहा है, भाई बहन क्या सोच रहे हैं, तो ये वो उस समय सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो हमें मालूम नहीं था कि कौन क्या सोच रहा है। और हमें खुद भी सिर्फ रेडियो से पता चलता था कि लड़ाई लग रही है, या टीवी भी नहीं होते थे, और क्योंकि हम दुर्गम क्षेत्रों में लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थे, तो वहां पे समाचार पत्र भी जो 3-4 दिन के बाद आया करता था, जैसे राशन आता था 3-4 दिन के बाद। तो ये जीवन उस प्रकार का था जो आज आप शायद यंगस्टर खासकर इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलग मजे थे। और हम जो थे वो यंगस्टर थे बिल्कुल ही, उन दिनों 24 साल की मेरी उम्र थी और युद्ध शुरू हो चुका था, तो जुनून था कि अब कुछ करके दिखाने का वक्त आ गया है, हम तो तैयार थे सबके सब।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जहां पर आपको डिप्लॉय किया गया, कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, -20 डिग्री का तापमान, रणनीतिक चुनौतियां थीं, और आपको अपने बटालियन के साथ मुंहतोड़ जवाब देना था। थोड़ी आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए विस्तार से आप वो ग्राउंड बैटल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकें कि वहां की क्या स्थिति थी, आप लोग जब वहां पहुंचे तो कैसे बंकर बने हुए थे, या आप लोगों ने क्या व्यवस्था की कि दुश्मनों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे।
0: जो क्षेत्र बुरी तरीके से युद्ध में था वो था कारगिल द्रास मशको। उस क्षेत्र में आगे उन्होंने अपने सैनिकों को बिठाया हुआ था सर्दियों में, वो बहुत दुर्गम क्षेत्र था। उनकी तरफ से जो चढ़ाई थी वो चढ़ाई आसान थी, तो सर्दियों के दिनों में जब हम वो पोस्ट छोड़ देते थे अक्सर, उन दिनों में वो आराम से आके धीरे धीरे वहां पे उन्होंने अपना राशन पानी जमा करके बैठ चुके थे। हमारी तरफ से जो चढ़ाई थी वो बड़ी दुर्गम थी, लेकिन मैं एक नूर वाले इलाके में पोस्टेड था, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल थी, और वहां पर जो दुर्गम क्षेत्र था वो था पानी और पहाड़ के मिलाप के कारण, नदी के बीच में हमारा पोस्ट थी। और जैसे आजकल आपने देखा यही वाला टाइम था, तो बारिशों के दिनों में नदी नाले सब भर जाते हैं, बाढ़ तक की सिचुएशन आ जाती है, तो हमारी पोस्ट भी जो थी वो काफी इस तरीके से कट ऑफ हो रखी थी, पीछे सप्लाई बड़ा मुश्किल से मिलता था। लेकिन फिर भी सामने जो दुश्मन था वो कोई 80 मीटर पे पोस्ट पे बैठा था, कोई 100 मीटर की पोस्ट पे बैठा था, तो फायरिंग और इन्फिल्ट्रेशन तो चलती रहती थी। तो दोनों क्षेत्रों का मिलाप नहीं कर सकते, उस क्षेत्र में हैंड टू हैंड बैटल बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि कबायलियों के साथ, टेररिस्ट के साथ, उनके जो रेगुलर फौजी थे वो भी घुसे थे। हमारे वाले क्षेत्र में रेगुलर फौजी ज्यादा थे, टेररिस्ट कभी कभार इन्फिल्ट्रेट करते थे, लेकिन दुर्गम था जरूर, क्योंकि सरकंडों के बीच में से हमारे वाले क्षेत्र में घुसना बड़ा आसान था। और खासकर हमारे साथ साथ जो सीमा से लगते गांव थे और जो सिविलियन थे उनकी उनका जीना बड़ा आराम हो रखा था, क्योंकि सबके घरों पे लगातार फायरिंग की दुर्घटनाएं होती रहती थी। और उन दिनों में मैंने देखा कि सिविलियन जो गांव छोड़ के बाकी पीछे चले गए थे, जम्मू की तरफ आ चुके थे, तो जीवन जो था वो सबका क्षतिग्रस्त था, सबका हिला हुआ था, भले ही वो सैनिक हो भले वो सिविलियन हो, लेकिन हम डटे हुए थे क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, यही सिखलाई फौज ने हमें दी है, उसी सिखलाई पे हम चल रहे थे।
1: मेजर साहब, जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आपको दिशा निर्देश दिए गए थे उसी स्थिति से चल रहे थे, 15 जुलाई 1999 का जिक्र बरबस ही आपके साथ बातचीत में आएगा, उसकी सुबह कैसे हुई थी, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वो 1.5 मीटर दूर जब मोर्टार गिरा, उस समय आपके जहन में पहला रिएक्शन क्या आया था?
0: मेरी जो पोस्ट थी उसमें मेरे साथ एक जेसू साहेब और 29 जवान डिप्लॉयड थे, और हमारी पोस्ट से तकरीबन 80 मीटर दूर जो थी वो दुश्मन की पोस्ट थी। तो क्योंकि हमारी लगातार फायरिंग होती रहती थी, और मैं क्योंकि यंगस्टर था और हम भी तैयार रहते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते जिसके कारण जो हमारा पड़ोसी है वो परेशान रहता था। तो उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए उसने 15 जुलाई से 2 दिन पहले एकदम फायरिंग बंद कर दी। तो शुरू में तो मुझे लगा 13 तारीख को कि यार फायरिंग बंद हुई है, चलो थोड़ा सा आराम मिलेगा हमारे सैनिकों को भी, लेकिन जब वो लगातार बंद रही 13 की पूरा दिन और 14 को भी मैंने देखा बंद हो रही, तो चिंतित हुआ मैं। और इसका जैसा मुझे डर था वही हुआ कि वो लल बिफोर द स्टॉर्म था, बिकॉज बाद में पता चला शायद वो मेरे से परेशान होकर मेरी पोस्ट की ही रेकी कर रहे थे 13-14 को, मेरे उठने में बैठने पर नजर रख रहे थे कि क्या करता है सारा दिन, कहाँ कहाँ जाता है। 15 जुलाई को जब दिन शुरू हुआ, तो दिन शुरू हुआ शुरुआत ही दिन की गोले से हुई, दिन के पौ फटने से पहले गोला फट चुका था, और मुझे पता चला वो गोला पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि उस जो गोला नजदीक गिर

0: है, उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जो गोला ऊपर से निकल जाता है उसको आप युद्ध क्षेत्र में पहचान जाते हो कि ये पीछे गिरेगा, आगे गिरेगा, कहाँ गिरेगा। तो पहला गोला तो बहुत पीछे गिरा, दूसरा गोला इससे पहले कि कुछ रिएक्शन होते हैं उनका दूसरा गोला आ चुका था और उसकी आवाज नहीं आई। वो मेरे बगल में गिरा 1.5 मीटर दूर, 1.5 मीटर दूर जो था वो किलिंग जोन था उस गोले का, क्योंकि सिखलाई के हिसाब से 8 मीटर का दायरा किलिंग जोन होता है। तो उन्होंने तो पूरी अपनी तरीके से प्रिपरेशन के साथ मुझे मारने का पूरा हिसाब किताब फिट किया हुआ था, तो मारने की तो पूरी कोशिश करी, लहू लुहान किया भी, गंभीर भी हुआ मैं बहुत बुरी तरीके से। फिर मेरे सिपाहियों ने उठा के अपनी जान पे खेल के जब मुझे पीछे पहुंचाया 7 डोगरा के सिपाहियों ने, तो रास्ते में खून के साथ साथ हार्ट अटैक भी हुआ, लेकिन फिर भी हम बच गए। बचना था क्योंकि बहुत सारे कीर्तिमान ऐसे भगवान ने शायद मेरी जिंदगी में लिखे हुए थे जो उसके बाद करने जरूरी थे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि युद्ध क्षेत्र में घायल होना मेरा बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे शायद भगवान ने ऑलरेडी मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट में लिख के भेजी थी, उसके लिए टांग कटना, एक बार मृत घोषित करना, लहू लुहान होना बहुत जरूरी था। क्योंकि वहां से जब फिर कहानी शुरू हुई तो हमने उन दुश्मनों को फेस किया जो सोच से घायल थे। तो वो जो युद्ध लड़ा उसके बाद आज तक जो लड़ रहा हूं, उसमें जो झंडे गाड़ने को मिले, उसमें जो तिरंगा लहराने को मिला, उसमें सेना की जो सिखलाई है वो बहुत काम आई, आज भी आ रही है।
1: इस बातचीत को आगे बढ़ाएं मेजर साहब, बीच की एक छोटी सी कहानी और भी है। जब आप घायल हुए और उसके बाद आपके जो साथी सैनिक थे आपको रेस्क्यू करके अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे थे, बगल में एक नदी भी बहती थी और आपके जो साथी थे उसमें एक को तैरना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में आपका साथ दिया, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं।
0: बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं शायद ना सिर्फ उन 4 सैनिकों का, 7 डोगरा पलटन का, और उसके बाद अनगिनत फौजी और सिविलियन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सेना के अस्पताल से जुड़े हुए थे, उनका हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं भी अगर सारी उम्र, तब भी वो कम रहेगा। क्योंकि तो सैनिकों में वो 4 जो मेरे स्ट्रेचर को उठा के ला रहे थे, एक जो था वो नॉन स्विमर था, उसको मतलब तैरना अच्छे तरीके से नहीं आता था, लेकिन अपनी जान पे खेलते हुए उसने फिर भी अपनी सेना की,
1: फिर भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में आपका साथ दिया, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं।
0: बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं शायद ना सिर्फ उन 4 सैनिकों का, 7 डोगरा पलटन का, और उसके बाद अनगिनत फौजी और सिविलियन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सेना के अस्पताल से जुड़े हुए थे, उनका हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं भी अगर सारी उम्र, तब भी वो कम रहेगा। क्योंकि तो सैनिकों में वो 4 जो मेरे स्ट्रेचर को उठा के ला रहे थे, एक जो था वो नॉन स्विमर था, उसको मतलब तैरना अच्छे तरीके से नहीं आता था, लेकिन अपनी जान पे खेलते हुए उसने फिर भी अपनी सेना की सिखलाई को सर्वोपरि रखते हुए कि अपने सिपाही को, साथी को, भले ही मैं उनका ऑफिसर था लेकिन एक तरीके से मैं उनका साथी था, उसको युद्ध क्षेत्र से निकालना बहुत जरूरी है, उसका हमेशा साथ अंतिम पल तक देते हैं। तो अपने प्राणों पे खेलते हुए उसने मुझे वहां से बचाया, रास्ते में वो स्लिप भी हुआ लेकिन फिर भी उसने मेरे स्ट्रेचर को नहीं छोड़ा। और इसी प्रकार से जब मैं एम्बुलेंस में आया तो डॉक्टर साहिबान जो थे हमारे RMO, उन्होंने फर्स्ट एड देने के बाद 2.5 घंटे जो मुझे लगे हॉस्पिटल तक पहुंचने में, जो बातें मुझसे करने की कोशिश करी ताकि वो मुझे जगा के रखे, वो आज तो मुझको वो बड़ी अच्छी लगती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन उस समय मुझे वो इरिटेट कर रही थी कि मेरी तो हालत बहुत खराब है और ये पूछ रहा है कि भाई तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा पोस्टल एड्रेस क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो मुझे बेहोश होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो बात और है कि उसके बावजूद भी मैं कार्डिक अरेस्ट हुआ, बेहोश हुआ, और जब पहुंचा तो एक बार कि भैया इसकी फोटो पे तुम माला टंगे के ले जाने से बोला गया, लेकिन भारतीय सेना के सिपाही हैं, मरने वालों में से नहीं थे, बचे, आज भी जिंदा है।
1: 15 जुलाई 1999 की कहानी आप बयां कर रहे हैं। आप अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में डॉक्टर आपको मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फरिश्ते के रूप में आते हैं कर्नल राजिंदर सिंह जो डॉक्टर थे। वो कैसे आपको मिले? क्या उस समय आप होश में थे मेजर साहब? क्या जब वो विजिट कर रहे थे और वो आपके स्ट्रेचर तक आए तब आपको कुछ अंदाजा था?
0: मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि मैं तो बेहोश था, सर्जन ने तो बोल दिया था कि डेड बॉडी है लेकर

0: और थ्री में, लेकिन वो एमएच में, एमएच अखनूर में उस समय उस दिन थे, ये बाद में मुझे पता चला वो थे। तभी उन्होंने इंटरवीन किया, मेरी सिचुएशन को समझा और मुझे कहाँ से वो कैसे बचा के ले आए वापिस, क्योंकि वो स्पेशलाइज थे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, उनको बेहोश करना और होश में लाना आता था। तो उन्होंने मुझे बचाया और बचा के तीसरे दिन जब मुझे होश आया, ये जो पांव कटा है वो गैंग्रीन के कारण बाद में कटा है, उस समय नहीं कटा था, क्योंकि चोटें बहुत हैं, 73 छर्रे अगर ऑलरेडी मौजूद हैं, उससे ज्यादा मेरे को काटते हुए चले गए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी चोटें लगी होंगी। तो बच तो गया था। वो कर्नल रजिंदर सिंह उसके बाद मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए बहुत सालों तक। 2019 में फेसबुक के कारण मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ, तब तक मेरी जो किताब थी ग्रिट द मेजर स्टोरी वो छप चुकी थी, मैंने वो किताब उनको उन तक पहुंचाई। वो कैलिफोर्निया में एज ए वेटरन, एज ए रिटायर्ड पर्सन अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और फिर जब 2023 में मैं यूएस में हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए जाने का मुझे मौका मिला, तो स्पेशली मैं उनसे जाके वहां पे मिला और जाके मैंने उनके पांव छुए, गले मिला, और तब मैं इतने सालों के बाद इन पर्सन उनको थैंक यू कर पाया मुझे बचाने के लिए। ये है एक सैनिक का सैनिक से मिलाप।
1: अभी अभी आपने बातचीत के दौरान एक बात कही कि 70 से ज्यादा छर्रे आज भी आपके शरीर में मौजूद हैं, परेशान करते होंगे आज भी।
0: मेड इन पाकिस्तान वाले छर्रे अंदर अभी भी बम के टुकड़े पड़े हुए हैं, 73 ऐसे टुकड़े हैं। उसमें कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं जहां पे तंकरना आसान है, जैसे जो ज्वाइंट्स हैं, हिप ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, या चेस्ट हो गया, या दो तीन और ऐसे जगह है, और एक लिवर में भी है। डॉक्टर बोलते हैं कि लिवर में वो चुपचाप लेटा हुआ है किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो मिलीमीटर से कम भी कहीं हिल गया और कोई अंदर से नस फट गई तो पता भी नहीं चलेगा कि थैंक यू कब हुआ। लेकिन वो तंग करने में काफी देर तक तो उन्होंने मेरे को तंग करते रहने के लिए, मतलब उनको उसमें सक्सेस मिलती रही, मगर वो सक्सेस मिली तब उन्हें बंद हुई जब मैंने उन वो तो तंग करने से नहीं हटे, लेकिन मैं तंग होने से हट गया। मैंने कहा ठीक है भैया, जो मैंने लेसन 8वीं में सीखा था कि आप अपनी परिस्थितियों से नहीं भाग सकते, तो उन्हीं परिस्थितियों में रह के आपको अव्वल उठना पड़ेगा मेहनत करके, अपने अंदर उन्हीं शक्ति को बढ़ा के। वो लेसन फिर से यहाँ काम आया कि अगर आप छर्रों को निकाल नहीं सकते तो उनको अपना लीजिए, उस दर्द को अपना लीजिए, वो दर्द जिस दिन आप अपना लोगे तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा, और रोने के बजाय उस दर्द पे हंसना शुरू कर दीजिए। उस दिन के बाद आज तक वो तंग तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तंग होता नहीं हूं।
1: तंग तो आप उस दिन भी नहीं हुए जब डॉक्टर ने कहा था कि आपका पैर काटना पड़ेगा। 24-25 साल का एक युवा देश के लिए युद्ध लड़ रहा था, पूरा भविष्य सामने खड़ा था, और आपने 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाया जब डॉक्टर ने कहा कि गैंग्रीन के कारण आपका पैर काटना पड़ेगा। उस समय क्या चला था आपके जहन में? भविष्य नजर आ रहा था कि बहुत मुश्किल होने वाला है, या फिर उस समय कुछ चीजें ऐसी ट्रिगर कर रही थी कि नहीं, सब कुछ बेहतर कर सकता हूं?
0: ये बहुत अहम सवाल है और मैं कहूंगा कि ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था मेरी जिंदगी का, क्योंकि जब डॉक्टर साहबान कर्नल अशोक, जो बाद में ब्रिगेडियर अशोक, आर्टिफिशियल इंफ सेंटर के कमांडेंट बनने के बाद रिटायर हुए हैं, वो मेरे बिस्तर के चारों तरफ पट्टी खोलने के बाद डिसीजन लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं इस बच्चे को कैसे बताऊं कि तुम्हारी टांग काट दी जाएगी, उनके बोलने से पहले ही मुझे ये पता चल गया था पट्टी खोलने के बाद टांग को देख के कि ये कटेगी। तो मेरे दिमाग में दो विचार आए थे, उन विचारों को मैं आपसे शेयर करता हूं कि पहला जो विचार था उसकी मैं उसकी ओनरशिप मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि वो बड़ा ही स्पिरिचुअल और बहुत ही एक तरीके का पॉयस विचार था, क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक आया कि अब देखते हैं कि एम्पुटी की लाइफ, डिसेबल वाली लाइफ कैसे होती है, ये एक चैलेंज है, शायद एक दिन मैं इस जिंदगी में इस चैलेंज को इस प्रकार से निभा पाऊंगा कि ना सिर्फ मैं बल्कि लोग भी प्रेरित होंगे। और दूसरा जो विचार था वो विचार था कि मैंने अपनी जिंदगी से खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी उसके क्वालिटी और स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं जीऊंगा तो खुल के जीऊंगा। अब इस दूसरे विचार को तो मैं मानता हूं कि मेरा था, लेकिन पहला विचार, 24 साल का जो व्यक्ति इतना स्पिरिचुअल थॉट कैसे सोच सकता है, ये मुझे अभी भी हैरानी होती है। तो शायद भगवान की दी हुई सोच थी और उस सोच को भगवान ने एक्चुअल में रियलाइज भी कराया, वो पूरी तरीके से खरी उतरी भी, क्योंकि जो दूसरा विचार था उस विचार ने उस सोच को खरी उतरने में बड़ा हेल्प करी। हर मौके पे जहां पे मैं कुछ अचीव कर पाया।

0: हूँ डिसेबल होने के बाद, उसके पीछे वो मेरी प्रॉमिस थी मेरे साथ कि मैं अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड, लाइफ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कॉम्प्रोमाइज ना करने का मतलब है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अंदरूनी तरीके से मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने आज के लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठने के लिए आज के लेवल से अपने आप को अगर उठाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। और भगवान की दया से बार बार वो कंफर्ट जोन मैंने तोड़ा है, चाहे वो नकली टांग से भागना हो, चाहे वो ब्लेड से भागना हो, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाना हो, चाहे वो हवाई जहाज से कूदना हो, वो कंफर्ट जोन टूटा है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड रखा है।
1: पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में चलते हैं मेजर साहब। जब आप 1 साल से ज्यादा समय तक अस्पताल में रहे, कई सर्जरियां हुई, उसके बाद घर वापस आए, जब व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, आपने एक टांग गंवा दी, आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन रहा? आप देश के लिए लड़े।
0: तकरीबन 1 साल मैं हॉस्पिटल में रहा, और हॉस्पिटल में मैं अकेला नहीं था, हॉस्पिटल में मेरे जैसे 5 जने थे। किसी की टांग नहीं थी, किसी का आंख नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख और हाथ दोनों नहीं थे, लेकिन सब में जुनून था और सबके सब युद्ध क्षेत्र में घायल वाले थे। और उस जुनून ने, उस कमरेडरी ने, एक दूसरे का सहारा बन के कभी भी हमारे को ये नहीं फील होने दिया कि हम किसी चीज में कम है। इनफैक्ट हमने वो करके दिखाया जो शायद उस समय लोग सोच भी नहीं पाते। कभी हम एक ही टांग पे क्लब में नाचते हुए नजर आते थे, कभी एक ही टांग में हम सड़कों पे स्लिप होके गिर रहे हैं, फिर भी उठ के चल पड़े हैं क्रच के साथ। तो जिंदगी खुल के जी रहे थे और खुद का देखभाल भी करने की पूरी कोशिश रख पा रहे। लेकिन जब दोबारा से जीवन में वापसी आई, जब दुनिया में वापसी आई और आम जीवन दोबारा शुरुआत करने का वक्त आया, तब हमें पता चला कि लोगों का जो नजरिया है वो डिसेबल की तरफ थोड़ा नकारात्मक है। और मेरे लिए खासकर वो एक चैलेंज था, क्योंकि मेरा जो पास था, मैं कमांडो ट्रेंड हाईली सुपरफिट टाइप का बंदा हुआ करता था, लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं 4 कदम भी बगैर किसी सहारे के आज की डेट में चल नहीं पा रहा था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था दिमाग में, इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण इरिटेशन होती थी, इरिटेशन के कारण गुस्सा आता था, गुस्से के कारण लोगों को लगता था कि ये तो पागल हो गया है। लेटर ऑन आज भी मैं स्टेज पे जाता हूं तो मेंटल हेल्थ और PTSD के बारे में जरूर बात करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसके पता ना होने के कारण मुझे बहुत कुछ सफर करना पड़ा। इन माई केस मेरे को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी जो बचपन में गुरुद्वारे जाने से जो मिली थी, उसके कारण मैं रिवाइव कर पाया और उसी के कारण मैं अचीव भी कर पाया चीजों को। तो वो मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशन थी और जो वो इरिटेशन थी, जो अपना द्वंद था मेरा, मेरे पास की रियलिटी का और आज की रियलिटी का, उसको ओवरकम करने में जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने मेरा सहारा दिया, उस सहारे के साथ आगे बढ़ते बढ़ते और उन अनअचीवेबल अनथिंकेबल चीजों को, चाहे वो पहला व्यक्ति हो भारत का जिसने नकली टांग से मैराथन भागी, इसके बावजूद कि मैं जब पूरा कंप्लीट था तो मुझे लंबी दौड़ लगाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद ना टांग कटने के बाद किस पर मिनट भाग गया है। तो ये सब ये पता चलता है कि दिमागी सोच अगर आपकी सही है तो आप एक एबल इंसान हो।
1: जी
0: ये जो एग्जाम्पल फिर मेरे को सेना की सिखलाई और अपने हिस्ट्री की मजबूती, सिखिज्म की मजबूती के कारण जो मैं एग्जाम्पल ऑन ग्राउंड सेट कर पाया अपने एज ए डिसेबल सोल्जर होने के बावजूद अचीवमेंट्स के साथ, उस एग्जाम्पल ने लोगों के नजरिए में बदलाव लाया। और आज की डेट में जो मेरा ग्रुप है, NGO है, द चैलेंजिंग वन, जिसको 2011 में मैंने शुरू किया था, जिसमें तकरीबन आज की डेट में 3,500 एम्पुटीज कनेक्टेड है,
1: जी
0: उसमें उस नकारात्मक सोच से तोड़ के उन एम्पुटीज ने जीना सीखा, जीना सीखने के साथ साथ अचीवमेंट करनी सीखी। आज उनमें बहुत सारे जो है कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, ना सिर्फ खेलों में बल्कि एडवेंचर में। और एक नाम मैं खास कर लेना चाहूंगा, उस लड़की का आप लोग जानते भी होंगे, मानसी जोशी,
1: जी
0: जो कि वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड तक अचीव कर लिया है। तो ये विचारों का जो तो बदलाव आया, और जिसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना, उसमें उस पाकिस्तानी का बम फेंकने की रिक्वायरमेंट उतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट थी। ना वो बम फेंकता चोटिल होता, ना मेरी टांग कटती, ना ये हिस्ट्री लिखी जाती।

0: बहुत ज्यादा समय नहीं है कार्यक्रम में, दो छोटे छोटे सवाल आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे। पहला कि मैराथन आपने दौड़ना शुरू कर दिया था, ब्लेड रनर, भारत का पहला ब्लेड रनर बनने की क्या कहानी थी, और फिर सोलो स्काई डाइविंग भी आपने शुरू की, बहुत संक्षेप में उसके बारे में भी थोड़ा बताइए।
1: 3 बार जब मैं नकली टांग से हाफ मैराथन भाग चुका था, तो जो एडजुटेंट जनरल हुआ करते थे उस समय, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश अग्रवाल, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को काफी शाबाशी दी और पूछा कि बताओ डीपी, तुम एक सेवानिवृत्त सिपाही हो, तुम्हारे को मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर अगर ब्लेड मिल जाए तो शायद भागना और नॉर्मल हो जाए। तो मेरे को 2011 में एजी ने भारत का पहला ब्लेड इंपोर्ट करके 2011 में मेजर डीपी सिंह सेवानिवृत्त को दिया गया, और वहां से मेरे को ब्लेड रनर का नाम, फर्स्ट ब्लेड रनर ऑफ इंडिया का नाम मिला। उसके बाद 2018 में जनरल बिपिन रावत जब चीफ थे, तो 2018 को सेना ने एयर ऑफ डिसेबल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी उस सोल्जर को डेडिकेट किया था, और जनरल बिपिन रावत मेरा एग्जाम्पल जहाँ जगह जगह पे जाके दिया करते थे अबाउट एबिलिटी ऑफ दिस सोल्जर, जो कि 100% डिसेबल है उसके बावजूद उसकी एबिलिटी।

0: के साथ फिर जो आर्मी एडवेंचर विंग है उन्होंने मुझे एक महीने की सिखलाई करी दी 2019 में मार्च नासिक में, और 29 मार्च को 2019 को पहला स्काई डाइवर एशिया का डिसेबल्ड होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ।
1: अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, देश के करोड़ों युवाओं के नाम आपका क्या संदेश होगा जो कई बार हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि भविष्य काफी अंधकारमय है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और उन युवाओं को भी आप क्या कहना चाहेंगे जो देश की सेवा के लिए सेना में आने के बारे में सोच रहे हैं?
0: देखिए, मैं भी युवा था और मैं आज भी अपने आप को युवा समझता हूँ, समझने में तो कोई गलत नहीं है, चाहे भले बूढ़े हो गए। तो मेरा ये कहना है कि बैठना या रुकना में कोई दिक्कत नहीं है, थकते सभी हैं, लेकिन उसके बाद फिर उठो और चलते रहो। चलना तब खत्म करना है जब तुम्हारे को तुम्हारा एम, तुम्हारा मकसद मिल रहा है, उससे पहले नहीं। उससे पहले सिर्फ ब्रेक ले सकते हो।
1: कहते हैं मुश्किलों में मुस्कुराना और हौसले को आजमाना चाहिए। जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, संभावनाओं को संभव नहीं बना पा रहे हैं आप, तो हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेजर डीपी सिंह की कहानी अपने आप में सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक संस्थान बन चुके हैं और वो बताने के लिए काफी हैं कि कितनी विकट परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने की चाह हमेशा बनी रहती है। जरूरत होती है कदम बढ़ाने की, जरूरत होती है अपने लक्ष्य को और बड़ा करने की। थोड़ा सा हौसला रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार, अपने जीवन के बारे में, करगिल युद्ध के बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ विस्तार से बात करने के लिए मेजर डीपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद। जय हिंद। सबको राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी की एक ग्रेड गायिका श्रीमती अदिति बैनर्जी का सुमधुर उपशास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल अवर लिसनर्स ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टूडेज ब्रॉडकास्ट वी ब्रिंग टू यू अ डिलाइटफुल सेमी क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय आकाशवाणी से ए ग्रेड आर्टिस्ट श्रीमती अदिति बैनर्जी।
0: श्रीमती अदिति बैनर्जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा स्वर्गीय श्री नीलमाधव सिन्हा जी से प्राप्त की। तत्पश्चात ग्वालियर घराने के प्रख्यात गायक पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी से उन्होंने ख्याल और टप्पा गायकी का गहन अभ्यास किया। उन्होंने पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू जी के सान्निध्य में लगभग 14 वर्ष तक ठुमरी, दादरा, होरी और कजरी की पूरब अंग गायकी का विशुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके साथ अनेक मंचों पर प्रस्तुतियां भी दी। दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में एमए एवं एमफिल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के साथ साथ श्रीमती अदिति बैनर्जी को पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी द्वारा पूरब अंग गायकी उत्सव में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है।
1: श्रीमती अदिति बैनर्जी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक फ्रॉम लेट श्री नील माधव सिन्हा। सब्सिक्वेंटली शी अंडरवेंट रिगरस ट्रेनिंग इन खयाल एंड टप्पा सिंगिंग अंडर द एमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ द ग्वालियर घराना पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित अंडर द गाइडेंस ऑफ पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू। फॉर नियरली 14 ईयर्स शी मास्टर्ड द ऑथेंटिक पूरब अंग गायकी परफॉर्मिंग

0: Thumri, Dadra, Hori and Kajri, and also accompanied her guru on numerous prestigious occasions. In addition to topping her MA and MPhil degrees in music from Delhi University with gold medals, Srimati Aditi Banerjee was specially honored by Padma Vibhushan Girija Devi during the Purabang Gayaki Utsav.
1: आइए सुनते हैं श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति. उन्हें तबले पर संगत कर रहे हैं श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री सौमित्र क्षीरसागर. कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं राग मिश्र तिलक कामोद में निबद्ध ठुमरी जो दीपचंदी ताल में बद्ध है. इसके बोल है बैरन रतिया कैसे आऊ.
0: Let's listen to this recital of semi-classical music by Srimati Aditi Banerjee. She's accompanied on tabla by Shri Bharat Kamat and on harmonium by Shri Saumitra Kshirsagar. She begins her recital with Thumri composed in Rag Mishra Tilak Kamud, set to Deep Chandital. Bairan Ratiya Kaise Aao.

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक कामो ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: दैट वॉज ठुमरी इन मिश्र तिलक कामोद। नाउ श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र शिवरंजनी सेट टू कहरवा ताल। छाई घटा घनगोर।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा।
1: दैट वॉज दादरा सेट इन मिश्र भैरवी।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीरसागर। इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे and broadcast came to you from Akashvani Delhi.
2: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस।

0: और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
0: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर सीजीपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: pace. This also marks the first series win under the captaincy of new T20 skipper Shreyas Iyer. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलो हर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हो चुके हैं। संपन्न होती है हमारी ये सभा कल प्रातः 5:53 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।